आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुंदर सुबह का पहला फ्लैश न्यूज आपसे अदिति, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतूषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा स्वीकृत नई फाइनेंसिंग में भारी गिरावट आई है। एडीबी की 2025 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल पारित किए गए वित्त पोषण में मॉरिशस को मात्र 12 मिलियन रुपए से थोड़ा ज़्यादा ही प्राप्त हुआ है। ये पिछले कुछ सालों की तुलना में बहुत कम है, जब ये राशि कई बिलियन रुपये तक पहुँची थी। लेकिन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार इस कदम का अर्थ ये नहीं है कि ये संस्था मॉरिशस को छोड़ रही है, बल्कि बैंक का कहना है कि कई बड़ी परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। एडीबी इस कदम के लिए कुछ परियोजनाओं में देरी और उच्च सार्वजनिकरण का भी कारण बताता है। गन्ने की कटनी की शुरुआत के संदर्भ में कल पंजाब के अमातू के कोविल में आयोजित वार्षिक प्रार्थनाओं में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भावी राष्ट्रीय बजट की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो उनके अनुसार मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बीच जिम्मेदारी, सॉलिडारिटी और आर्थिक दक्षता पर आधारित रहेगा। उन्होंने कहा कि ये दूसरा बजट एक कठिन आर्थिक दौर के बीच तैयार किया गया है और देश को यथार्थवाद तथा दृढ़ संकल्प के साथ सही राह पर वापस लाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने मौजूदा चुनौतियों के मद्देनज़र सभी से एकजुट होकर और जिम्मेदार तरीके से राष्ट्रीय हित में काम करने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज तड़के सुबह दक्षिणी फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.8 अंकों और गहराई 35 किलोमीटर की मापी गई। सुनामी की चेतावनियां जारी की गई हैं और वहां के राष्ट्रपति फेडिनांड मार्कोस ने लोगों के लिए जल्द से जल्द ऊंचाई वाले इलाकों में पनाह लेने के आदेश जारी किए हैं। मिंडानाओ द्वीप में स्कूल बंद किए गए हैं और आपातकालीन कदम उठाए जा रहे हैं। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आमहालत मास्करिंस के दक्षिण में पाए जाने वाले जोरदार आंटी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य से ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। आमतौर पर दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, रात के दौरान भी ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा, 2.50 मीटर तक की

0: लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है, जबकि दोपहर बाद दक्षिणी लगूनों में स्थिति बेहतर हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:40 पर सूर्योदय, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा। तो ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओ, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। 6:04 हुए हैं और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। और जी हाँ, आज सोमवार 8 जून 2026। कहते हैं ना, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर खूबसूरत दिन हमें जीना सिखा जाता है। और खूबसूरत दिन वही होता है जहाँ दिल हल्का और मुस्कान सच्ची। तो चलिए, सुबह का नजराना प्रोग्राम आप लोगों के लिए प्रस्तुत है और सबसे पहले हम सुनेंगे जागृति।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

शम सभी आदरणीय श्रोताओं को पंडिता पार्वती सुभग का सादर सप्रेम अभिवादन। आज के इस प्रातःकालीन शुभ बेला में जागृति कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है सत्यार्थ प्रकाश, एक अद्वितीय ज्ञान कोश। सत्यार्थ प्रकाश इस वर्तमान तथा आधुनिक युग के वैदिक ज्ञान के सूर्य महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की लिखी हुई रचना है। इस वर्तमान युग में कोई ऐसा अपक्षपात, महाज्ञानी, सत्य के पुजारी, सत्य सोचने, बोलने और लिखने में निडर मानव महर्षि दयानंद जैसे नहीं हुए। सत्यार्थ प्रकाश महाग्रंथ का अर्थ सत्यार्थ दो शब्दों के समूह से बना है। पहला शब्द सत्य है और दूसरा शब्द अर्थ है। सत्य का अर्थ सच्चाई है। अर्थ उसे कहते हैं जिसे हम सहजता और सुगमता के साथ समझते हैं। प्रकाश का अर्थ है ज्योति, उजाला, रोशनी, जो अंधकार और अंधेरा शब्दों का विलोम या विपरीत शब्द है। सत्यार्थ प्रकाश महाग्रंथ का प्रकाश किसी भौतिक रोशनी या ज्योति संबंधित नहीं है और न ही किसी भौतिक या काल्पनिक रोशनी की ओर कोई संकेत है। वास्तव में यह ज्ञान का प्रकाश है जो हमारी मानव बुद्धि को प्रकाशित करता है, जो हमारी बुद्धि की अज्ञानता के अंधेरे को ज्ञान की रोशनी से, ज्ञान के प्रकाश से मिटाता है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ भ्रम, मिथ्या और मन ग्रहंत विचारों या बातों पर आधारित नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ सभी पाठकों को भ्रम की दुनिया से निकालकर उन्हें सत्य की प्रकाशित दुनिया में प्रवेश कर

ने का कार्य करता है। सत्यार्थ प्रकाश के विषय वस्तु या विषय सामग्री कंटेंट्स को सत्य के आवरण से ही प्रकाशित किया गया है। महर्षि जी ने इस ग्रंथ में कहीं भी सत्य को छोड़कर भ्रमात्मक या असत्य विचारों को सम्मिलित नहीं किया है। महर्षि दयानंद जी ने जीवन भर असत्य से समझौता नहीं किया। सत्यार्थ प्रकाश जैसा दूसरा ग्रंथ आज तक किसी ने नहीं लिख पाया है। सत्य, प्रेम, न्याय और ज्ञान उनके अस्त्र थे। शिक्षा मानव निर्माण का सबसे बढ़कर और सबसे ऊपर का साधन है, जो हर प्रकार के बोझ या दबाव से मुक्त होता है। सत्यार्थ प्रकाश में धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक धर्म के वास्तविक स्वरूप को ही प्रकाशित किया गया है। जिस तरह हृदय शरीर के हर एक अंग में लहू का संचार करता है, उसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ सत्य से भरी वेद विद्या का संचार मानव समाज में करता आया है और सदा करता रहेगा। इसलिए जीवन पथ पर धर्म के अनुशासन के साथ चलाने का सामर्थ्य यदि किसी ग्रंथ में संजोया गया हो, एकत्र किया गया हो, तो वह केवल और केवल सत्यार्थ प्रकाश ही है। सत्यार्थ प्रकाश वह वैदिक विश्व ज्ञान कोश है, जो हर दृष्टिकोण से मानवों को सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सैद्धांतिक, दार्शनिक और नैतिक रूप से मानवता के ढांचे में ढालता है। अपनी प्रार्थना में हम तमसो मां ज्योतिर्गमय का उच्चारण करते हैं। अर्थ है, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले चलो। इस दृष्टिकोण से सत्यार्थ प्रकाश से अधिक प्रकाश देने वाला दूसरा ग्रंथ है ही नहीं। सत्यार्थ प्रकाश को मान्यता देते हुए स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने कहा, इसी पवित्रतम ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से मैं पवित्र बना। यह मेरे जीवन का ज्योति स्तंभ है। गुरुदत्त विद्यार्थी के शब्दों में, मैंने सत्यार्थ प्रकाश को कम से कम 14 बार पढ़ा है। यदि सत्यार्थ प्रकाश की एक प्रति का मूल्य 1,000 रुपया होता तो भी मैं सारी संपत्ति बेचकर खरीदता। केशरी लाला लाजपत राय का कथन है, गुरुदेव रचित सत्यार्थ प्रकाश मेरे जीवन में प्रकाश देने वाले सूर्य के समान है। आज सभी सुयोग्य विद्वानों के लिए भी सत्यार्थ प्रकाश उनके जीवन का ज्योति स्तंभ सिद्ध हो रहा है। सत्यार्थ प्रकाश ने भारत देश के अलावा संसार के अनेक देशों में धर्म की एक नई विचारधारा की क्रांति रिफॉर्म को जन्म दिया। महर्षि जी ने अंधश्रद्धा ब्लाइंड फेस और अंधविश्वास ब्लाइंड बिलीफ के स्थान पर बुद्धिवाद प्रिंसिपल्स ऑफ विजडम और तर्क लॉजिक को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने स्वतंत्र बुद्धि से सोचने और विचारने की परंपरा चलाई। वेद विद्या के सिद्धांत और आदर्श को प्रचलित किया। वेद शिक्षा की ओर मुड़ने का आत्मविश्वास दिलाया। महर्षि जी सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा जनता में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान और गौरव उत्पन्न किया। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किसी देश विशेष की प्रजा के कल्याण के लिए ही नहीं, परंतु विश्व भर के लोगों के कल्याण के लिए भी है। इस ग्रंथ में दिव्य मानव सभ्यता का दिग्दर्शन गाइडेंस कराया गया है। यह ग्रंथ सभी विषयों और समस्त मतों का विश्व कोश है। ज्ञान का अमूल्य रत्न है। भ्रम में फंसे अल्प बुद्धियों के लिए उनके इलाज के लिए उत्तम औषधि है। आज 20 से अधिक भाषाओं में सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का अनुवाद हो चुका है।
इस

तन की रचना करते हुए महर्षि जी ने व्यक्त किया, मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्यासत्य का प्रकाश करना है। अपने ग्रंथ के मंगलाचरण में महर्षि जी ने लिखा है, मेरा कोई नवीन कल्पना व मत मतांतर चलाने का लेश मात्र भी अभी

0: वेदांत के विभागों को महर्षि जी ने अध्याय के बदले में समुलासपद दिग्निति का प्रयोग किया है। इस ग्रंथ में 14 समुलास हैं। समुलास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और उलास। सम अर्थात बराबर, उलास जिससे पढ़कर आनंद की अनुभूति होती है। निर्माता के रूप में महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भरपूर उचित तथा विश्वसनीय उदाहरण दिए हैं, जो वेद मंत्रों, श्लोकों, उपनिषदों, सत्य की नींव पर लिखे गए ग्रंथों, ऋषियों के कथन, शतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ आदि स्रोत से लिए गए हैं, जो ज्ञानवर्धक सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ विजडम रहे हैं। अपने ग्रंथ में महर्षि जी ने इन विषयों पर सत्य का प्रकाश डाला है। ईश्वर, वेद, वैदिक धर्म, ईश्वर, जीव और प्रकृति, बच्चों की शिक्षा, आश्रम, धर्म, जगत उत्पत्ति, मुक्ति का साधन, वर्णाश्रम, राजा प्रजा का धर्म, राजनीति, आचार विचार, आचार अनाचार, वेद विरुद्ध मत आदि। सत्यार्थ प्रकाश ज्ञान का वह सूर्य है जिसे समय की ऋतुएं नहीं बदल सकती। सूर्य ऋतुओं को बदलता है, ऋतुएं सूर्य को नहीं। सत्यार्थ प्रकाश ने सिद्ध किया कि सत्य से संबंधित मूल्यों पर विश्वास करना हमारे वैदिक ज्ञान की जड़ों को उखाड़ने में कोई भी असत्य, भ्रम तथा हानिकारक प्रभाव सक्षम नहीं होंगे। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनिए सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति। जी हाँ, कॉन्फुको के आसपास के इलाके टोको रोड, रिजर्वर रोड, इंपास नंदलोल, आयरिश लेन नंबर 1, नंबर 2, मोसलमा एंग्रे काटन, दोहा प्राइमरी स्कूल के पास, प्री प्राइमरी स्कूल, बीआई गंगा दिन मेटल इंडस्ट्री, वेनन लेन, बाजार लेन, मोसलमा रामाना और कॉन्फुको रोड के कुछ इलाके और बिस्नाट लेन के कुछ इलाके और गालिया रोड, कॉन्स्टेंटिन लेन के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि रविवार 14 जून 2026 सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। 6:20 हुए हैं, भूलिएगा नहीं 6:30 बजे समाचार। अभी के लिए चलिए सुनते हैं सत्यार्थ प्रकाश पर विशेष कार्यक्रम।
2: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

बृहस्पते शन्नो विष्णुरुक्रमः ओम शम। आदरणीय श्रोतागण, सत्यार्थ प्रकाश मास के संदर्भ में आर्य सभा मॉरिशस की ओर से आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज आपके समक्ष महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुलास पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। माता पिता एवं आचार्य का संतानों के प्रति कर्तव्य, शतपथ ब्राह्मण की निम्न उक्ति सत्यार्थ प्रकाश में उद्धृत किया है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः, अर्थात ये तीन शिक्षक माँ बाप और गुरु उत्तम हों, धार्मिक हों, तो बालक ज्ञानवान होता है। धन्य है वह बालक जिसको ऐसे उत्तम शिक्षक प्राप्त हुए। बालक के भावी जीवन के निर्माण में माता पिता व गुरु तीनों ही का भारी योगदान होता है। गुरु से अधिक प्रभाव माता का बालक पर पड़ता है। तभी तो कहा गया है माता निर्माता भवती। प्रथम गुरु के नाते माता ही सच्ची निर्माता है। माता के द्वारा बालक का निर्माण गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। यदि माँ अपनी संतान की भलाई चाहती है तो उसे सात्विक पदार्थों का सेवन करना चाहिए ताकि गर्भ में पल रही संतान हृष्ट पुष्ट हों। चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या तो अभिमन्यु ने गर्भ में ही सीखी थी। जैसे एक कुम्हार मिट्टी से मनचाहा आकार देकर बर्तन आदि बनाता है, ठीक वैसे ही माता बालक को जैसा चाहे बना सकती है। बच्चे को अच्छे संस्कार देकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम व योगीराज श्री कृष्ण जैसा बना दे या झांसी की

रानी लक्ष्मीबाई बना दे। बाल अवस्था में माता पिता जो कुछ सिखाते हैं वे उसके हृदय पटल पर अंकित हो जाते हैं, जो जीवन भर याद रहती है। कहा गया है ना, माँ संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। जब बालक कुछ कुछ बोलने और समझने लगे तब सुंदर वाणी में बड़े छोटे माता पिता गुरु और अन्य संबंधियों से कैसे बोलना है सिखाना चाहिए। श्रोताओं, माता के द्वारा तो आंतरिक विकास होता है किंतु पिता के द्वारा सामाजिक विकास होता है। वेदों में कहा गया है, सभ्येयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम, अर्थात इस पिता का पुत्र सभ्य हो, सभा समाज में बैठने व यथा योग्य व्यवहार करने वाले हों। बाहरी व्यस्तता के बावजूद पिता अपनी संतान की देखभाल अच्छी तरह करता है, जिससे उसकी संतान चरित्रवान हो, गलत संग न करे, आदर्श नागरिक बने। पिता परिश्रम करता है और अपने बच्चे की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। पिता हमेशा यही चाहता है कि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। माता पिता अपनी संतान को लाड़ प्यार तो करते हैं, पर यदि बच्चा गलत कार्य या गलत व्यवहार करता है तो कभी कभी ताड़न की भी आवश्यकता होती है, यानी बच्चे को दंड भी देना चाहिए जिससे वह सही दिशा को अपना सके। बालकों की अनुकरण करने की प्रवृत्ति और ग्रहणशीलता बड़ों से कहीं अधिक होती है, इसलिए माता पिता को हर समय सचेत रहना पड़ता है। बालकों के सामने आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। बालक वही सीखता है जो बड़े उसके सामने करते हैं। बहुत से माता पिता बालक को लाड़ प्यार में बुद्धू, गधा, बदमाश आदि शब्दों से संबोधित करते हैं, जिसका छाप बड़े होने तक रह जाते हैं। श्रोताओं, माता पिता के द्वारा बालक का आंतरिक व सामाजिक निर्माण होता है, पर आचार्य व गुरु के द्वारा बौद्धिक निर्माण होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में बालक 5 वर्ष की आयु में स्कूल में भर्ती हो जाता है। गुरु का कर्तव्य होता है कि केवल किताबी पढ़ाई ही नहीं बल्कि सर्वगुण संपन्न बालक का निर्माण करना, तभी बालक अनुशासित व चरित्रवान बन सकता है। बालक को उत्तम शिक्षा, गुण, स्वभाव आदि का पाठ पढ़ावे। चोरी, आलस्य, प्रमाद, नशीली द्रव्य का सेवन, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों को छोड़ने और सद्व्यवहार के ग्रहण करने की शिक्षा देवे। शांत और मधुर वचन ही बोलने को प्रेरित करें। बड़ों का सम्मान करते हुए नमस्ते करना सिखावे। सज्जनों का संग और दुष्टों से दूर अपने माता पिता और आचार्य की तन, मन, धन आदि से प्रेम पूर्वक सेवा करें। ऐसी शिक्षा देना गुरु का परम कर्तव्य बनता है। आजकल कितने ऐसे भी गुरु हैं जिनमें स्वार्थ भावना होती है और विद्यादान पैसे कमाने का जरिया समझते हैं, लेकिन गुरु आदर्श होना चाहिए। श्रोताओं, द्वितीय समुलास में एक श्लोक आया है, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा, अर्थात वे माता पिता अपनी संतानों के दुश्मन हैं जिन्होंने इनको शिक्षा न दिलाई। वे विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत और अशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। स्वामी जी लिखते हैं, बालकों को देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें और अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी ज्ञान करावें जब वे 5 साल के हो जावें। आज स्कूलों में कई माता पिता पत्र लिखकर
अपने बच्चों को

0: अपनी भाषा न पढ़ने की मांग करते हैं, जबकि हिंदी भाषा सीखकर अपनी संस्कृति, सभ्यता, धर्म पर आस्था रखने का महत्व समझते हैं। मैंने माता पिता और गुरु के कुछ कर्तव्यों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। श्रोताओं, सत्यार्थ प्रकाश जयंती की सभी को मंगल कामनाएं। अब पंडित सत्यानंद फाकू को आज्ञा दीजिए ध्यान से सुनने के लिए। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाइए, सुबह के ठीक 6:30 बज रहे हैं।

0: नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। एकता ही मौजूदा चुनौतियां पार करने और देश को प्रगति की राह पर अग्रसर करने का एकमात्र साधन है, ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल गन्ने की कटनी के सीजन की शुरुआत के संदर्भ में लगी प्रार्थनाओं के दौरान कही। हीरामन जवाहिर फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। वे आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा स्वीकृत नई फाइनेंसिंग में भारी गिरावट आई, इसके पीछे कई परियोजनाओं में देरी और उच्च सार्वजनिक ऋण का कारण बताया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज तड़के सुबह दक्षिणी फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। गन्ने की कटनी की शुरुआत के संदर्भ में कल कौजाब के अम्मातू के कोवल में आयोजित वार्षिक प्रार्थनाओं में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भावी राष्ट्रीय बजट की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो उनके अनुसार मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बीच जिम्मेदारी, सॉलिडारिटी और आर्थिक दक्षता पर आधारित रहेगा। उन्होंने कहा कि ये दूसरा बजट एक कठिन आर्थिक दौर के बीच तैयार किया गया है और देश को यथार्थवाद तथा दृढ़ संकल्प के साथ सही राह पर वापस लाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने मौजूदा चुनौतियों के मद्देनज़र सभी से एकजुट होकर और जिम्मेदार तरीके से राष्ट्रीय हित में काम करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि मकसद अर्थव्यवस्था पर दबाव डाले बिना और ज़रूरतमंदों की रक्षा करते हुए देश में आर्थिक वृद्धि मजबूत करना है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात पर बल दिया कि एकता ही मौजूदा चुनौतियां पार करने और देश को प्रगति की राह पर अग्रसर करने का एकमात्र साधन है। माधवी जागोनाथ, रजनीकर।
1: हर साल जून महीने के पहले सप्ताह के दौरान गन्ने की कटनी के आरंभ होने से पूर्व कौजाबली स्थित अम्मा तुके कोविल में एक विशेष पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी भी वहाँ उपस्थित अच्छी फसल के लिए अम्मा का आशीष प्राप्त करने गए। इस तरह अम्मा तुके के प्रति भक्ति और साथ में उन्हें आभार प्रकट करने के लिए एक का पहला गन्ना अर्पित किया गया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने नौजवानों को कृषि में संलग्न होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के वास्ते खेतिहरों को दी जा रही सुविधाएं की याद दिलाई। इसके अलावा उन्होंने बागास से रिन्यूएबल एनर्जी विकसित करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
2: D'ici 2032, à partir de bagasse et bande déchets, ça pour représente à peu près 20% de nos réseaux électriques. Plus nous produisons d'électricité par le même, moins nous avons besoin de produits pétroliers, moins ça pour nous. Ce qui fait l'initiative, et me saluer, c'est l'initiative Bolches Biomass, qui peut encourager nous à produire l'électricité à partir de la coupe de bois, ce que nous appelons Good Chips. Et aussi des autres sources d'énergie renouvelable qui peuvent développer l'énergie solaire.

0: Là aussi, il lui a donné beaucoup incentive, ce qui m'a gagné la prison, je vous pardonnez. Et prenez en cours, là, vous trouvez. Vous créez Maurice Durable. L'une récit arrive 23,4% énergie renouvelable dans Maurice. 23,4%, ça veut dire presque encore, presque 25%. Mais en 2014 et 2024 qu'il a mis, Maurice Durable, alors, au lieu de progresser, nous régler, disons nous régler là. J'ose dire, pourcentage énergie renouvelable, les moins que 17%.
1: प्रधानमंत्री ने भावी बजट संबंधी प्रमुख पहलुओं को उजागर किया।
0: Assurer qu'il nous continue à gagner croissance et pour que nous réussissions seulement. Et dans des conditions, nous devons rester unis et nous devons solidaires.
1: हर साल सावन तमिल बेनेवोलेंट सोसाइटी और ओमनिकेम की ओर से इस तरह की प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। इस तरह इस समारोह से गन्ने की कटनी के सीजन का शुभारंभ हुआ।
2: इस साल के लिए गन्ने की कटनी का सीजन आने वाले कुछ दिनों में शुरू होगा। 22 जून से अल्तियो और तेरा कंपनियों से पेराई का काम शुरू होगा। विशेषज्ञों के अनुसार भले ही इस कटनी का सीजन एक सामान्य से ज़्यादा सूखे मौसम के बाद आया है, फिर भी गन्ना पैदावार की कुल वृद्धि संतोषजनक है। कृषि सदन की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार सर्दियों के आगमन के साथ वृद्धि में धीरे धीरे कमी आने के कारण कटनी मध्य दिसंबर तक चलने की उम्मीद है। आशी बाचू, टीना बुदना।
3: मॉरीशस में 2026 की गन्ना कटाई और चीनी उत्पादन अभियान 22 जून से शुरू होगा। इस दिन अल्तियो की यूनियन फ्लैक और तेरा की उत्तर क्षेत्र की फैक्ट्रियां काम शुरू करेंगी। दक्षिण में स्थित ओमनिकेन की फैक्ट्री 14 जुलाई से सक्रिय होगी। फसल कटाई और चीनी उत्पादन का काम मध्य दिसंबर तक चलने की संभावना है। अक्टूबर 2025 से मई 2026 तक गन्ना की वृद्धि का दौर सामान्य से अधिक सूखा रहा। इस अवधि में हुई वर्षा सामान्य स्तर का केवल 63% रही। तापमान भी औसत से थोड़ा अधिक रहा, जबकि धूप का स्तर लगभग सामान्य बना रहा। इन परिस्थितियों के बावजूद गन्ना की वृद्धि संतोषजनक रही और मई के अंत तक उसकी लंबाई लगभग सामान्य स्तर के करीब पहुंच गई। हालांकि गन्ना में चीनी जमा होने की प्रक्रिया की शुरुआत कुछ धीमी रही। अब सर्दियों के आने के साथ गन्ना की वृद्धि की गति कम होगी, जिससे उसमें चीनी की मात्रा बढ़ने में मदद मिलेगी। किसानों की बात करें तो 29 मई 2026 तक 6,149 छोटे गन्ना उत्पादकों ने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया था, जो कुल 7,920 हेक्टेयर बीमाकृत भूमि का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं बड़े उत्पादकों ने 24,415 हेक्टेयर भूमि की घोषणा की है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो 2025 में छोटे उत्पादकों के लिए 8,569 हेक्टेयर और बड़े उत्पादकों के लिए 24,746 हेक्टेयर भूमि बीमाकृत थी। पंजीकरण प्रक्रिया अभी भी जारी है, हालांकि 2 जून से देर से पंजीकरण करने वालों पर विलंब शुल्क लागू कर दिया गया है।
2: हीरामन जवाहिर फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के नए चीफ ऑपरेटिंग अफसर नियुक्त किए गए हैं। वे आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। एफएससी के अनुसार उनका वित्तीय रेगुलेशंस क्षेत्र में 20 सालों से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर अनुभव रहा है। उन्होंने मॉरिशस सहित अमेरिका, यूके, भारत और कैमन द्वीपों में काम किया है। पिछले 29 मई को डेज़िरे वेंकटाचलम के इस्तीफे के बाद एफएससी में किसी महानिदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है। मॉरीशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा स्वीकृत नई वित्त फाइनेंसिंग में भारी गिरावट आई है। एडीबी की 2025 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल पारित किए गए नए वित्त पोषण में मॉरीशस को मात्र 12 मिलियन रुपये से थोड़ा ज़्यादा ही प्राप्त हुआ।

0: ये पिछले कुछ सालों की तुलना में बहुत ही कम है, जब ये राशि कई बिलियन रुपए तक पहुंच गई थी। लेकिन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार इस कदम का अर्थ ये नहीं है कि ये संस्था मॉरिशस को छोड़ रही है, बल्कि बैंक का कहना है कि कई बड़ी परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। ADB का कहना है कि किसी की के लिए इस कदम के लिए कुछ परियोजनाओं में देरी और उच्च सार्वजनिकरण का कारण बताया जाता है। अदयवाले की रिपोर्ट।
1: अफ्रीकी विकास बैंक ने अपनी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। पूरे महाद्वीप में ADB ने विभिन्न परियोजनाओं की फाइनेंसिंग के लिए 8 बिलियन से ज्यादा खाता इकाइयों को मंजूरी दी है। हालांकि मॉरिशस के लिए 2025 में ये राशि बहुत कम है, केवल 12 मिलियन रुपए से थोड़ा ज्यादा नया वित्त पोषण स्वीकृत किया गया है। तुलनात्मक रूप से मॉरिशस को 2023 और 2024 में कई बिलियन रुपए प्राप्त हुए थे, इसलिए ये कमी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसका ये अर्थ नहीं कि अफ्रीकी विकास बैंक मॉरिशस से पीछे हट रहा है, बल्कि वास्तव में पिछले सालों में कई बड़ी वित्त पोषण परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि ADB कुछ समस्याओं को भी नोट करता है, परियोजनाओं का निर्धारित समय से पीछे होना, प्रशासनिक देरी, बदलती प्राथमिकताएं और सबसे बढ़कर उच्च सार्वजनिक ऋण। ये ऋण देश की नए ऋण लेने की क्षमता को सीमित करता है। अफ्रीकी विकास बैंक ने अपनी 2026 की आर्थिक रिपोर्ट में मॉरिशस के सार्वजनिक ऋण का अनुमान जून 2025 में सकल घरेलू उत्पाद GDP के 88.6% पर लगाया है। साथ ही इसने 2026 में 3% और 2027 में 3.8% की वृद्धि का पूर्वानुमान भी लगाया है। इस गिरावट के बावजूद मॉरिशस ADB की रणनीति के अनुरूप बना हुआ है। प्राथमिकताएं अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, परिवहन, बंदरगाह, सतत अवसंरचना और ब्लू इकोनॉमी बनी हुई है। संक्षेप में ADB मॉरिशस को अपना समर्थन जारी रखे हुए है। हालांकि 2025 में देश के लिए स्वीकृत नई फाइनेंसिंग में काफी कमी आई है।
0: इस साल की शुरुआत में 201 बिलियन रुपए का रिकॉर्ड पार करने के बाद अप्रैल 2026 तक हाउस होल्ड ऋण बढ़कर 207.46 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है। बैंक ऑफ मॉरिशस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें वार्षिक 12.2% की वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस बढ़ोतरी के कारण के कई कारण हैं। परंपरागत रूप से मॉरिशन लोग घर खरीदने या बनवाने के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन हाल ही में अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट की कीमतों में लगभग 30% की वृद्धि ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है। एक और कारण है आम जीवन चलाने और खरीदारियों के लिए क्रेडिट सुविधाओं का सहारा लेना। इसके परिणामों में से एक है परिवारों की खरीद शक्ति और बचत में कमी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार कर्ज चुकाने में अब मॉरिशन परिवारों की आय का लगभग 18% खर्च होता है। मॉरिशस में सभी के लिए सामान्य नागरिक विवाह यानी सिविल मैरिज की मांग वाली पेटिशन को एक हफ्ते से भी कम समय में 13,000 से ज्यादा हस्ताक्षर मिल चुके हैं। आउट मोरिस की निदेशिका सौंद्रीन जुलियन के अनुसार अधिकांश लोग इस मांग का समर्थन करते हैं। इस अभियान का उद्देश्य है देश में ज्यादा समावेशी समाज को बढ़ावा देना और समान अधिकारों की रक्षा करना। ये याचिका 1 जून को प्राइड मंथ के संदर्भ में शुरू की गई थी। ये पेटिशन आउट मोइस के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं और जून के आखिर तक जनता के लिए खुला है। प्राप्त परिणामों को एक नागरिक घोषणा पत्र में संकलित किया जाएगा और सार्वजनिक किए जाने के बाद इसे अधिकारियों के सुपुर्द किया जाएगा। राजमिला सीतामणि, टीना बुदना।
2: Nous pour laisser cette pétition-là ouverte pendant tout le mois de juin, pendant le mois des fiertés, et tout bon résultat pour compiler dans un manifeste citoyen.
3: ये अर्जी पूरे जून महीने भर खुली रहेगी, खासकर इस गौरव और पहचान के महीने के दौरान। इस दौरान मिलने वाले सभी सुझाव, अनुभव और गवाहियों को जोड़कर एक नागरिक घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, जिसे हम सार्वजनिक रूप से जारी भी करेंगे। इसके साथ ही इसे सरकारी अधिकारियों, राजनैतिक निर्णय लेने वालों और संबंधित संस्थाओं तक भी पहुँचाया जाएगा। हमारा

0: उद्देश्य किसी तरह का टकराव पैदा करना नहीं है। हम सिर्फ तथ्य, अनुभव और नागरिकों की आवाज को एक महत्वपूर्ण सामाजिक चर्चा तक पहुंचाना चाहते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर खुले और रचनात्मक संवाद की जरूरत है। दुनिया के कई देशों में इसी तरह की नागरिक पहल से महत्वपूर्ण बदलाव आई है। उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड में सबके लिए विवाह का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में जो कानूनी सुधार हुआ था उसे जन समर्थन के बल पर संसद के सामने रखा गया था और उस अभियान को लगभग 8,000 लोगों का समर्थन मिला था।
1: पिछले कुछ समय से देश में फूट एंड माउथ डिजीज के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके संकेतों में हाथों, पैरों और मुंह में छाले और फोड़े शामिल हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ये वायरल इन्फेक्शन ज्यादा सर्दियों के दौरान होता है और इससे सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। भले ही पिछले कुछ हफ्तों के दौरान इसके काफी मामले सामने आए हैं, फिर भी अभी के लिए स्थिति चिंताजनक नहीं बताई जाती। बच्चों में इसके प्रथम संकेत दिखने पर ही डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी जाती है। शैलिनिया बर्न ने डॉक्टर फाजिल को दबाकर के साथ बात की। यशना मिश्रा।
2: फुट हैंड्स और माउथ बीमारी कोक्साकी वायरस के कारण होता है। स्वच्छता का पालन किया जाना चाहिए, पानी और साबुन से हाथ धोना चाहिए। बच्चा यदि नर्सरी या स्कूल जाता हो तो माता पिता को उसे सबसे पहले पीडियाट्रिशियन के पास ले जाना चाहिए। 2-3 दिनों तक उसे स्कूल न भेजें क्योंकि संक्रमण का खतरा है। कई बच्चों को ये सर्दी के मौसम में होता है। ये खतरनाक नहीं लेकिन सावधानी जरूरी है। इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए जो उचित इलाज बताएंगे।
1: दक्षिणी फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.8 अंकों और गहराई 35 किलोमीटर की मापी गई। सुनामी की चेतावनियां जारी की गई हैं और वहां के राष्ट्रपति फेजिनो मकोस ने लोगों के लिए जल्द से जल्द ऊंचाई वाले इलाकों में पनाह लेने के आदेश जारी किए हैं। मिंदानाओ द्वीप में स्कूल बंद किए गए हैं और आपातकालीन कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले अप्रैल महीने से पहली बार के लिए ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले किए हैं, जिसका इसराइल ने भयानक जवाब देने की चेतावनी दी है। अधिकांश मिसाइलों को मार गिराया गया है और इसराइली सरकार ने लोगों को शेल्टर से निकलने की अनुमति दी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से जवाबी हमले न करने और ईरान से ऐसी भड़काने वाली हरकतें न करने की मांग की। आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मस्कारिंस के दक्षिण में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य से ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है। आमतौर पर दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, रात के दौरान भी ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर और दक्षिणी तथा पूर्वी लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है, जबकि दिन के दौरान दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में स्थिति बेहतर हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:40 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा।

0: समाचारों के आखिर में सुर्खियां, एक बार फिर एकता की ही मौजूदा चुनौतियां पार करने और देश को प्रगति की राह पर अग्रसर करने का एक मात्र साधन है। ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल गठनी की कटनी के सीजन की शुरुआत के संदर्भ में आयोजित प्रार्थनाओं के दौरान कही। हीरामन जवाहिर फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के नए चीफ ऑपरेटिंग अफसर नियुक्त किए गए हैं। वे आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा स्वीकृत नई फाइनेंसिंग में भारी गिरावट आई, इसके पीछे कुछ परियोजनाओं में देरी और उच्च सार्वजनिक ऋण का कारण बताया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज तड़के सुबह दक्षिणी फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, सुनामी की चेतावनी जारी की गई। देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुँचाने में कादे हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में, ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 72 साल के 72 years old श्री सुभाष चंद चौधरी, जो धर्म नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे के मकान ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुरशाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। सोल्फेरिनो नंबर तीन वाकवा में 85 साल की 85 years old की श्रद्धावती तपसी पिताशी नाम बंधन, जो श्रद्धावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके बेटे श्री देवेंद्र तपसी के मकान सोल्फेरिनो नंबर 3 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालों सोल्फेरिनो नंबर 5 की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टू दिया 2 PM। जिबेर रोड रोजवेल में 68 साल की 68 years old श्रीमती बेदवेती सिंह सीबजन, पिताशी नाम तोताराम, जो राजनी नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के एक बजे इनके पति श्री बलराम सिंह सीबजन के मकान जिबेर रोड रोजवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागीशानी रोजवेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:01 PM। नंबर 91 सीते गारीबू वाले दे पथ में 69 साल के 69 years old श्री परदुमन सुखुआ, जो तो राम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके मकान नंबर 91 सीते गारीबू वालदे पद से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वामोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। न्यू रोड कच्चे मिलिटिया में 81 साल के 81 years old श्री चंद्रशेखर भीम सिंह, जो प्रेम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे के मकान न्यू रोड कौचे मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्टांस सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डे 11 AM। मामजेल जान गुडलैंड्स में 69 साल के 69 years old श्री धर्मराज हरिराम, जो सूरज पेशया नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनकी पत्नी श्रीमती अमृता हरिराम के मकान मामसलजान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डे 1 PM। भरत सिंह स्ट्रीट लाफ्लोगा में 53 साल के 53 years old श्री मनोज सिंह भरत, जो रणधीर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह दस बजे की माँ श्रीमती बिंदु भरत के मकान भरत सिंह स्ट्रीट लाफलोहा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बाकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडिया 10 AM। जिबेर रोड रोजबेल में

0: साल की 65 ईयर्स ओल्ड श्रीमती माला वीरापेन, श्रीमती माला वीरापेन, पिताश्री नाम कनाई जो माला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे, इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे इनके बेटे श्री प्रीतम वीरापेन के मकान शिबेर रोड रोजवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजवेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 10 AM। शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
3: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस सोमवार 8 जून सूरीनाम आर्य समाज में शाम के 4 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।
1: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस। स्पोर्ट्स न्यूज।
4: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में अब केवल 3 दिन बाकी हैं। इसके लिए टीमों की तैयारियां जारी हैं। फ्रेंडलीज में आज सुबह कोलंबिया ने 2-0 से जॉर्डन को हराया। कल के मैचों में कल सुबह अर्जेंटीना की जीत हुई थी ऑन्जुरास पर 2-0 से, केन्या 4 लेसोथो 0, डेनमार्क 2 यूक्रेन 1, इसमें डोगु का 1 गोल रहा। इस मैच में एरिक्सन कोलैप्स हो गया पर अब ठीक है, होश आ गया है। क्रोएशिया 2 स्लोवेनिया 1, वेतरन खिलाड़ी मोड्रिच 1 गोल स्कोर कर पाया, दूसरा गोल पासालिच का था। ग्रीस 0 इटली 1, एस्पोजिटो का गोल इटली के लिए। मोरक्को और नॉर्वे के बीच मैच ड्रो गया 1-1, जियाज ने मोरक्को का गोल स्कोर किया, नॉर्वे का गोल ओडेगार्ड का रहा। फिर इक्वाडोर 3 ग्वाटेमाला 0, काइसेडो अंगुलो और एस्टुपिनियन का गोल इक्वाडोर के लिए। यूएफए अंडर 17 चैंपियनशिप की चैंपियन टीम बनी इटली। फाइनल में इटली के लड़कों ने पेनाल्टी पर बेल्जियम को हराया, स्कोर 1-1 रहा, फिर पेनाल्टी पर 4-3। आज के फ्रेंडलीज में फ्रांस का मुकाबला नॉर्दर्न आयरलैंड से होगा नेदरलैंड्स उज़्बेकिस्तान। फ्रांस का ये आखिरी फ्रेंडली मैच है, इसके बाद सीधे यूएसए की ओर। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का वाइस कैप्टन डेक्लन राइस होगा। राइस के साथ बुकायो साका, नोनी माडुएके और एबेरिची एजे इंग्लैंड के यूएस ट्रेनिंग कैंप में पहुंचे। परसों एक आखिरी मैच होगा कोस्टारिका के खिलाफ। एथलेटिक्स, स्टॉकहोल्म डायमंड लीग के 800 मीटर में ओड्रे वेरो की जीत। इस रेस में मॉरिशस की राशेल क्लोफेंस्टाइन ने भी भाग लिया। रेस का क्रोनो वुमेन 800 मीटर में थर्ड बेस्ट रहा। इन दिनों कोद्दू में साउथर्न अफ्रीकन चैंपियनशिप अंडर 18 अंडर 20 चल रहे हैं। कल दूसरे दिन मॉरिशस के नाम और 3 गोल्ड मेडल। अंडर 18 जावलिन में नेहमी क्लेयर, 400 मीटर हर्डल्स में हाजेल सिडू और अंडर 18 मेडले रेस में भी गोल्ड मेडल। टोटल 8 गोल्ड मेडल हमारे एथलीटों के नाम। बोत्सवाना पहले आया 10 गोल्ड मेडल के साथ। फॉर्मूला 1 रेसिंग में मोनाको ग्रैंड प्री में किमी अंतोनेली की जीत हुई। 19 साल का अंतोनेली ने अपनी 5वीं रेस जीती, 5th in a row, लगातार 5वीं जीत। चैंपियनशिप में अंतोनेली अब हैमिल्टन से 66 पॉइंट्स आगे हैं। हैमिल्टन कल दूसरा स्थान ले पाया। टेनिस, फ्रेंच ओपन का चैंपियन बना अलेक्जेंडर वेरेव, ये उसकी पहली लॉन्ग अवेटेड ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी है। फाइनल में वेरेव को जमीन आसमान एक करना पड़ा फ्लावियो कोबोली को हराने में। 5-set thriller, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1। लड़कियों में अंद्रीवा चैंपियन बनी थी। क्रिकेट, भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच के दूसरे दिन कल टीम इंडिया ने 564 रन बनाकर डिक्लेयर किया। केएल राहुल और शुभमन गिल के सेंचुरी रहे। साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, ये लोग हाफ सेंचुरी पूरा कर पाए। अभी अफगानिस्तान की टीम की इनिंग्स चल रही है, 5 विकेट डाउन 113

run 113 run. Manav Sutar 3 विकेट ले पाया. प्रसिद्ध कृष्णा 2. आज तीसरे दिन का खेल होगा. याद दिला दें आज है 8 जून यानी जीमैट 3 और 3 दिनों में थर्सडे 11th फुटबॉल का महामेला शुरू होगा मेक्सिको यूएसए और कनाडा में. रोड टू वर्ल्ड कप 2026 जरूर सुनिएगा. ये 8:30 बजे लेकर आएंगे RM2 पर. आज लेटेस्ट न्यूज के साथ साथ इस वर्ल्ड कप के एक डार्क हॉर्स पर चर्चा करेंगे. नॉर्वे की टीम पर फोकस होगी, जरूर सुनिएगा. नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन.

0: चार मिनट हुए हैं दोस्तों। नमस्कार आप सबको, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। सुबह का नजराना प्रोग्राम लेकर आए हैं एक बार फिर से, और मैं उषा का और यहाँ पर साथ निभाने के लिए, और ये कार्यक्रम अभी के लिए आप सुनेंगे 8 बजे तक, और 8 बजे के बाद भोजपुरी समाचार। कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी सिर्फ 4 दिन की मेहमान है, फिर भी इंसान ना जाने कितनी नफरतें, कितने गम और कितने शिकायतें दिल में संभाल कर जीता है। हर सुबह जब सूरज नई रोशनी लेकर आता है ना, तो वो छुपके से हमें याद दिलाता है कि वक्त रुकता नहीं, इसलिए जो पल मिला है उसे मोहब्बत, सुकून और शुक्राना के साथ जी लो। तो चलिए दोस्तों, हम ऐसे खूबसूरत विचार आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बांटेंगे, और भूलिएगा नहीं हमारे जो प्लेलिस्ट है, एकदम मज़ेदार, एकदम लाजवाब, और आप जहां पर भी हैं इस वक्त गुनगुनाइए हमारे साथ। लेकिन इससे पहले सुनते हैं चिंतन डॉक्टर शांति मोहब्री जी से।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: जहां आदर नहीं चाहे वहां सोना बरसे, वहां जाइए मत। जो पचता नहीं चाहे कितना स्वादिष्ट हो, उसे खाइए मत। और जो सच्चाई स्वीकारने की हिम्मत न रखे, उसे मनाइए मत।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: यही है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

यह दोस्तों 7:14 हुए हैं, कभी रफ़ी साहब कभी किशोरदा। चलिए बस आशा करते हैं कि ये जो प्लेलिस्ट है आपको पसंद आ रहे हैं।

दोस्तों कहते हैं हर सुबह एक पैगाम लेकर आती है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है उन लोगों के लिए जो सिर्फ गम गिन कर जीते हैं, जो हर नई सुबह में एक नई उम्मीद देख लेते हैं। उनके लिए ज़िंदगी चार दिन नहीं एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। 7:21 हुए हैं, चलिए अब सुनते हैं रेडियो सुर्खियां। साथ दीजिए। जी हाँ, अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम और 8 बजे भूलिएगा नहीं भोजपुरी समाचार, और समाचारों के बाद आपकी राशि, और आपकी राशि के बाद हमारी धरोहर कार्यक्रम 8:50 पर किरण जानकी के साथ। 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद आज की चर्चा नितुषा प्रस्तुत करेगी, और 10 बजे संक्षिप्त समाचार, और इसके बाद भक्ति धारा प्रोग्राम आप सुनेंगे 11 बजे तक। और इस कार्यक्रम के दौरान आप सुन पाएंगे मानस मंथन कार्यक्रम, 11 बजे संक्षिप्त समाचार, और समाचारों के बाद सायदा सुबह की प्रस्तुति में शाम में फरोजन प्रोग्राम, और मिसेस दरमिया प्रस्तुत करेगी मराठी प्रोग्राम दिन के 12 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, और 1 बजे से 1:45 रंगारंग प्रोग्राम गुजराती प्रोग्राम रत्ना के साथ, हंग हंग द्वारा चाइनीज़ प्रोग्राम 2 से 2:30 बजे तक, और 2:30 बजे आपकी पसंद प्रोग्राम रत्ना प्रस्तुत करेगी 4 बजे तक, और 4 बजे जी हाँ आप सुनेंगे प्रकाश कार्यक्रम, और 4 बजे के बाद 4:15 तेलुगु प्रोग्राम राजेंद्र प्रस्तुत करेगा 5:30 बजे तक, और रत्ना प्रस्तुत करेगी शाम के 5:30 बजे बच्चों का कार्यक्रम, जी हाँ भूलिएगा नहीं 6 बजे तक, और शाम के 6 बजे आप सुनेंगे समाचार 4:30 चाइनीज़ प्रोग्राम जिनके साथ, युवारा सेन द्वारा 7 से 7:30 बजे तक तमिल प्रोग्राम, और 7:30 वंदना के साथ स्वराला वेदिका प्रोग्राम आप सुनेंगे तेलुगु प्रोग्राम, 7:50 पर नितिन बापू प्रस्तुत करेगा गीत गंगा प्रोग्राम, और 8:10 पर रोशनी द्वारा भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम आप सुनेंगे, महफिल शब प्रोग्राम उर्दू प्रोग्राम सायदा सुबाय द्वारा रात के 8:40 पर भोजपुरी तर्क का प्रोग्राम प्रताप सिंह प्रस्तुत करेगा रात के 9 बजे से रात के 11 बजे तक, और रात के 11 बजे से 12 बजे तक सुनहरे पल प्रोग्राम गिनिशा के साथ, और रात के 12 बजे से कल सुबह के 6 बजे तक आप सुन पाएंगे हमारा ओवरनाइट प्लेलिस्ट। तो ये थे आप लोगों के लिए

7:30 होने को है दोस्तों, और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। और यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चलने के लिए एक पुरानी लकड़ी का सहारा लेता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा सुकून रहता था। रोज़ सुबह वो नदी के किनारे जाकर बैठता और सूरज को उगते हुए देखता। गांव के लोग अक्सर उसे पूछते, बाबा आप रोज़ यहाँ आकर क्या देखते हो? वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहते, मैं अपनी उम्र को गुजरते हुए देखता हूँ और ज़िंदगी को समझने की कोशिश करता हूँ। एक दिन एक जवान लड़का उनके पास आया। उसकी आँखों में बहुत परेशानी थी। उसने पूछा, बाबा क्या उम्र बढ़ने से इंसान कमज़ोर हो जाता है? बुजुर्ग आदमी कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपने कांपते हाथों से नदी का पानी छुआ और बोले, बेटा उम्र इंसान को कमज़ोर नहीं करती, उम्र तो बस सच दिखाती है। जवानी में इंसान दुनिया के पीछे भागता है, पैसा, शोहरत, लोगों की तारीफ, मगर वक्त धीरे धीरे ये समझा देता है कि सुकून सबसे बड़ी दौलत है। चले किशोरदा की आवाज़ में ये गाना। बस उम्मीद है कि आपको इस छोटी कहानी पसंद आया।

जी दोस्तों, थोड़ी देर में 7:40 होने को है और चलिए तरत में मुझ साहब और लता जी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गाना। छाया फिल्म से लिया गया है, लेकिन तलत महमूद साहब के बारे में लोग उनकी आवाज़ तो जानते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी की कई अनकहीं बातें बहुत कम लोगों को पता है। तलत साहब की आवाज़ में जो दर्द और नरमी थी, वो सिर्फ गायकी नहीं थी, वो उसकी असली शख्सियत का हिस्सा थी। और कहते हैं ना, जब फिल्मों में तेज़ और बुलंद आवाज़ों का दौर आया, तब भी तलत साहब ने अपनी मीठी और नाजुक गायकी को कभी नहीं बदला। उन्होंने कहा था, गाना दिल से निकलना चाहिए, जोर से नहीं। और बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें एक्टिंग भी ऑफर हुई और उन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया, लेकिन उसका असली प्यार हमेशा सुर और गज़ल ही रही। वो तो ये रहा और उसकी आवाज़ में एक हल्का सा कंपन है जिसे पहले कुछ लोग कमज़ोरी समझते थे, लेकिन वही कंपन बाद में उनकी पहचान बन गया और लोग उसी दर्द भरी अदा के दीवाने हो गए।

यस श्रोताओ, अभी गत सप्ताह हमने एक महान कलाकार को खोया है और वो है सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर के बारे में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उनकी मधुर आवाज़ के पीछे छुप गई। उनकी ज़िंदगी सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं थी बल्कि खामोशी, सादगी और असली कला की मिसाल थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुमन जी का असली नाम सुमन हेमडी है और शादी के बाद वो सुमन कल्याणपुर बनी। उनका बचपन कला और पेंटिंग के बहुत करीब था और पहले वो सिंगर नहीं पेंटर बनना चाहती थी और उनकी आवाज़ जो है अक्सर लता जी से कंपेयर किया गया और उनकी आवाज़ में एक अजीब सी मासूमियत और दर्द था। वो ज़ोर से नहीं दिल से गाती थी, शायद इसीलिए उनके गाने आज भी पुरानी यादों की तरह दिल को छू जाते हैं।

और कहते हैं ना, जब रफ़ी साहब और लता जी के बीच रॉयल्टी के को लेकर दूरियां हुई थी, तब कई यादगार डुएट सुमन जी ने रफ़ी साहब के साथ गाए और उन गानों ने उन्होंने अलग पहचान दी। आज भी जब उनका कोई गाना, पुराना गीत धीरे से बजता है, तो लगता है जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए रुक गया और एक पुरानी खूबसूरत याद फिर से सांस लेने लगी। फिल्म का नाम है राजकुमार, रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घर ही मिला जा फजर के 8 बजे तक। नमस्ते, पेश में भोजपुरी के समाचार। गन्ना की कटनी के शुरू के संदर्भ में काल कौंजाब के अमातू के कोविल में आयोजित वार्षिक प्रार्थना में भाग लेवे बखत प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन गुलाम भावी राष्ट्रीय बजट की रूपरेखा प्रस्तुत करलन, जे उनकर अनुसार मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थिति के बीच जिम्मेदारी सॉलिडारिटी और आर्थिक दक्षता पर ही आधारित रही। उबोलन की ई दूसर का बजट एगो कठिन आर्थिक दौर के बीच तैयार करल गल है और देश के यथार्थवाद तथा दृढ़ संकल्प के संगे सही राह पर ही वापस आने के आवश्यकता बाटे। प्रधानमंत्री मौजूदा चुनौती के मद्देनजर सब कोई के एकजुट होके आज जिम्मेदार तरीका से राष्ट्रीय हित में काम करे के मांग करलन। एक संगे ही उबोलन की मकसद है अर्थव्यवस्था पर ही दबाव डाले के बिना और जरूरतमंद लोग की रक्षा करके देश में आर्थिक वृद्धि मजबूत करेगी। डॉक्टर नवीन गुलाम एक बात पर ही बल दिले हवन कि एकता ही मौजूदा चुनौती पार करे के और देश की प्रगति के राह पर ही अग्रसर करे के एगो खाली एगो मात्र साधन है। इबरिस के गन्ना की कटनी के सीजन आवत एक आध दिन में शुरू हो जाए। 22 जून से आलतेयो आरते कारखाना से पेड़ाई के काम शुरू हुई। विशेषज्ञ लोग के अनुसार भले ही ई कटनी के सीजन एगो सामान्य से जस्ती सूखा मौसम के बाद आयल बाटे, फिर भी गन्ना पैदावार के कुल वृद्धि संतोषजनक है। हीरामन जवाहिर फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के नवा चीफ ऑपरेटिंग अफसर नियुक्त करल गेल हवन। उ आधिकारिक तौर पर ही 1 जुलाई से अपन कार्यभार संभालियन। FSC के अनुसार उनकर वित्तीय क्षेत्र में 20 बरिस से जस्ती के अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर अनुभव बाटे। मॉरिशस सहित अमेरिका, UK, भारत और कैमन द्वीप पर काम कर ले हवन। मॉरिशस खातिर अफ्रीकी विकास बैंक देने से स्वीकृत नवा फ्रांसिंग में भारी गिरावट आयल बाटे। ADB के 2025 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार गल बरिस के पारित करल गल वित्त पोषण में मॉरिशस के खाली 12 मिलियन रुपया से थोड़ा जस्ती ले प्राप्त होल बाटे। ई गल एक आध बरिस की तुलना में बहुत ही कम है, जब ई राशि कलहला कईगो बिलियन रुपया ले पहुंचल बाटे। बकीर अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार ई कदम के ई अर्थ नहीं है कि ई संस्था मॉरिशस की छोड़ दे बाटे। बकीर बैंक के ई मानना है कि कईगो बड़ा परियोजना के पहले से ही मंजूरी मिल गल बाटे। ADB के ई कदम खातिर एकादगो आर परियोजना में देरी और उच्च सार्वजनिक ऋण के कारण बतावल जाता। गल थोड़ा बखत से देश में फूट एंड माउथ डिजीज के मामला दर्ज करल गल बाटे। कर संकेत में हाथ में, गोड़ में और मुंह में छाला और फोड़ा शामिल बाटे। स्वास्थ्य अधिकारी लोग के अनुसार ई वायरल इन्फेक्शन जस्ती सर्दी के दौरान पड़ेला और एक से जस्ती लेकर लोग प्रभावित हो लंजा। भले ही गल एक आध हफ्ता के दौरान एकर कई गो मामला सामने आल बाटे, फिर भी हबी खातिर एकर स्थिति चिंताजनक नहीं बतावल जाता। लेकर लोग में प्रथम संकेत पर ही डॉक्टर के दिखावे के चाहेला। दूसरा देश की खबर में आज फजर के दक्षिणी फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटका महसूस करल गल। रिक्टर पैमाना पर एकर तीव्रता 7.8 अंक और गहराई 35 किलोमीटर के मापल गल है। सुनामी के चेतावनी जारी करल गल बाटे। तय रहल भोजपुरी के समाचार, तो हर ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते।
2: Your news on NBC Play.

MBCRadio.tv. MBCRadio.tv. मणि की खबर सुना जा। ऋषि दयानंद ले इन मौला शो में 72 बरिस के स्वसंधु जोंके श्री सुभाष चंद चौधरी जे धर्म नाम से जसी जाथरलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर घरे ऋषि दयानंद ले इन मौला शो से उठा के अंतिम संस्कार खातिर वो शौके श्मशान भूमि ले जाल जाए। सोलफेरिनो नंबर 3 वाकवा में 85 बरिस के कथवें सैकों के श्रीमती श्रद्धावती तपसी जे पैदाशी नाम बंधन जे श्रद्धावती नाम से जस्ती जान जाथरलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर बेटा श्री देवेन तपसी के घरे सोलफेरिनो नंबर 3 वाकवा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बैलेंस सोलफेरिनो नंबर 5 के श्मशान भूमि ले जाल जाए। जेबेर रोड रोजबेल में 68 बरिस के 68 के श्रीमती बेदवीती सिंह सिबजन पैदाशी नाम तोताराम जे राजनी नाम से जस्ती जान जाथरलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर पति श्री बलराम सिंह सिबजन के घरे जेबेर रोड रोजबेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मांगी जानी रोजबेल के श्मशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 91 सीते गारीबू वाले देपोत में 69 बरिस की 69 के श्री पर्दुमन सुखोआ जीतो राम नाम से जस्ती जाल जाथरलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर घरे नंबर 91 सीते गारीबू वाले देपोत से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बामो शौके श्मशान भूमि ले जाल जाए। न्यू रोड कच्चे मिलिते में 81 बरिस के कथवायनों के श्री चंद्रशेखर भीम सिंह जे प्रेम नाम से जस्ती जान जातरलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर खरे न्यू रोड कच्चे मिलिते से उठा के अंतिम संस्कार खते सर्कमस्टांस सैंपियर के श्मशान भूमि ले जाल जाए। मामजलजान गुडलैंड में 69 बरिस की 69 के श्री धर्मराज हरिराम जे सुरुज पेशोया नाम से जस्ती जान जाथरलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर पत्नी श्रीमती अमृता हरिराम के घरे मामजर जान गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड के श्मशान भूमि ले जाल जाए। भरत सिंह स्ट्रीट लाफलोगा में 53 बरिस के 53 के श्री मनोज सिंह भरत जे रंधीर नाम से जस्ती जाल जाथरलन गुजर कल हवन उनकर माटी आज फजर के 10 बजे उनकर माँ श्रीमती बिंदु भरत के घरे भरत सिंह स्ट्रीट लाफलोहा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांव बाकी श्मशान भूमि ले जाल जाए। रिबेर रोड रोजबेल में 65 बरिस के 67 के श्रीमती माला वीरापेन पैदाशी नाम कनाई जे माला नाम से जस्ती जान जाथरलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज फजर के 10 बजे उनकर बेटा सुप्रीतम वीरापन के घरे रिबेर रोड रोजबेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मांगी जानी रोजबेल के श्मशान भूमि ले जाल जाए। शोक में डूबल सब परिवारों के संगी हमनी के संवेदना है।

0: आठ बजकर 25 मिनट हुए हैं दोस्तों, तो चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और अभी मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभा रही हूँ। जी हाँ, आपने सुना 8 बजे भोजपुरी समाचार और चंद खूबसूरत गाने। अब बारी आई है सुनने के लिए आपका साप्ताहिक राशिफल।
1: आपकी राशि रेडियो मॉरिशस। एरीज, मेष राशि।
0: मेष राशि ये सप्ताह आपके लिए ऊर्जा और नए अवसर लेकर आ रहा है। काम के क्षेत्र में पुरानी मेहनत का फल धीरे धीरे मिलने लगेगा। घर परिवार में किसी पुराने मुद्दे का समाधान संभव है। अपने क्रोध और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, वरना बात बिगड़ सकती है। आर्थिक स्थिति मध्यम से उत्तम की ओर बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। लकी नंबर है 1, लकी कलर है लाल रंग।
1: टॉरस, वृषभ राशि।
0: इस सप्ताह धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति रहेगी। कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपकी प्रगति से प्रभावित होंगे। व्यापार में छोटा लाभ बड़ा मार्ग खोल सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर नींद और भोजन पर। प्रेम जीवन में पुरानी यादें मन को कोमल बना सकती हैं। लकी नंबर है 2, लकी कलर है सफेद रंग।
1: जेमिनी, मिथुन राशि।
0: ये सप्ताह विचारों और नए निर्णय का समय है। आपके शब्दों में आकर्षण रहेगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। यात्रा के योग बन सकते हैं। किसी मित्र से अचानक सहायता मिल सकती है। दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा रंग।
1: कैंसर, कर्क राशि।
0: भावनाओं से भरा है ये सप्ताह। आपको अपनों के और करीब लाएगा। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। आर्थिक रूप से संभल कर चलना उचित रहेगा। किसी पुराने सपने को दोबारा जीने का अवसर मिल सकता है। आध्यात्मिकता की ओर मन आकर्षित होगा। लकी नंबर है 2, लकी कलर है सफेद रंग।
1: लेव, सिंह राशि।
0: आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लोग आपकी नेतृत्व शक्ति को सराहेंगे। काम में बड़ा निर्णय लेने का समय आ सकता है। अहंकार से दूर रहकर काम करेंगे तो सफलता और अधिक मिलेगी। प्रेम संबंधों में किसी खास व्यक्ति से गहरी बात हो सकती है। लकी नंबर है 1, लकी कलर है सुनहरा रंग।
1: वर्गो, कन्या राशि।
0: इस सप्ताह आपका विवेक और समझदारी आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालेगी। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से ये समय स्थिर रहेगा। स्वास्थ्य में हल्का थकान महसूस हो सकता है, इसीलिए आराम भी जरूरी है। लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा रंग।
1: लिब्रा, तुला राशि।
0: संतुलन और शांति इस सप्ताह का मूल मंत्र रहेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। किसी पुराने विवाद का अंत संभव है। व्यापार और नौकरी में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। कला और संगीत से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकते हैं। लकी नंबर है 6, लकी कलर है गुलाबी रंग।
1: स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि।
0: ये सप्ताह गहरी सोच और अंतर्दृष्टि का है। कुछ

0: सच्चाइयाँ सामने आ सकती हैं जो जीवन की दिशा बदल दें। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, किसी अपने व्यक्ति का सहयोग मन को शांति देगा, आध्यात्मिकता और ध्यान से लाभ मिलेगा। लकी नंबर है काला रंग, लकी कलर है काला रंग और लकी नंबर है 9।
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: यात्रा सीखने और नए लोगों से मिलने का योग बन रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन मेहनत कम ना करें। घर में खुशी का वातावरण रहेगा, प्रेम संबंधों में ईमानदारी और स्पष्टता जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। लकी नंबर है पीला रंग, लकी कलर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: मकर राशि अनुशासन और धैर्य आपको सफलता की ओर ले जाएगा। काम में धीरे धीरे प्रगति होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत बन सकती है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति का मार्गदर्शन जीवन में रोशनी लाएगा। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। लकी नंबर है 17, लकी कलर है नीला रंग।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: नए विचार और रचनात्मक आपको अलग पहचान देंगे। मित्रों और सामाजिक जीवन में चहल पहल बनी रहेगी। आर्थिक रूप से अचानक लाभ मिल सकता है। किसी पुरानी चिंता का समाधान मिलेगा। प्रेम में धैर्य और संवेदनशीलता जरूर होगी। लकी नंबर है 4 और लकी कलर है नीला रंग।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: ये सप्ताह भावनाओं और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहेगा। मन किसी गहरी बात को महसूस करेगा। काम में रचनात्मक सोच सफलता दिलाएगी। परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। भगवान पर विश्वास और सकारात्मक सोच आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। लकी कलर है सफेद रंग और लकी नंबर है 3।
1: ये थी आपकी राशि रेडियो मशीन पर।
0: आठ बजकर 32 मिनट हुए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे थे आपका साप्ताहिक राशिफल, और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। चलिए चंद 80s के खूबसूरत गाने आप लोगों के नाम किशोरा की आवाज में।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: जी हाँ दोस्तों, जुर्म का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे लता जी और हरिहरन की आवाज़ों में। जी नहीं, गाना आप सुन रहे थे आशा जी और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में, और फिल्म का नाम है जुर्म। तो चलिए यहाँ पर लता जी और हरिहरन को सुनते हैं और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे आगे 8:50 पर। भूलिएगा नहीं हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में तोहर स्वागत बा। हर 8 जून के वर्ल्ड ओशन डे यानी कि विश्व महासागर दिवस मनावल जाला। साथ ही हमनी के जीवन में समुंदर के जन भूमिका बा ओकर पर ध्यान देवल जाला और समुंदर और महासागर के सुरक्षा और समुद्री संसाधन के उचित प्रयोग पर विचार करल जाला। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ ओकर जन प्रवाल रेखा है, वो अपन हजारन किस्म के कोरल खातिर विश्व विरासत के सूची में अंकित है। वैसे ही मॉरिशस के लुमोन ब्राबॉ लगून लुमोन वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बफर जोन में गिनल जाला और एकर सुरक्षा खातिर सरकार प्रतिबद्ध है। 1992 में ई दिन सब देश में मनावे के शुरू हो रहा, जब से रियो डी जेनेरो के हुआ पर जो मीटिंग लगल पर्यावरण और विकास पर, तब से ये दिन मनावे के प्रथा शुरू हो जिके वर्ल्ड ओशंस डे नाम से घोषित करा गल। संयुक्त राष्ट्र संघ ई मौका पर दुनिया भर के जनता के जागरूक करेला और वो चाहेला कि सब समुद्री संसाधन मैरिन रिसोर्सेस के सही इस्तेमाल करा जाए ताकि आवे होला पीढ़ी सकी एकर से लाभ उठावे। काहे कि समुद्री संसाधन के आज जे आप दुरुपयोग करबा, हद से ज़्यादा उपयोग करबा, एक्सप्लॉयटे करबा जैसे बोली राजा, तब सब कुछ खत्म हो जाए और फिर ओवर कमर्शलाइजेशन के वजह से दिक्कत है जाके अब कोरल भी तबाह हो ले जाता। अभी ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते रही ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर ओवर कमर्शलाइजेशन के वजह से काफ़ी समस्या उत्पन्न हो गल बा यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर। तो इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ सब जो सिविल सोसाइटी बा, साइंस सेंटर्स, शोध संस्था, गैर सरकारी संगठन, निजी और फाइनेंशियल सेक्टर के जो बिजनेस बा, सब जन समुदाय और दुनिया भर के सरकार के संगे जागरूकता अभियान चलावता। ये जान के तोहरा ताजुब होई कि कोरल रीफ हमनी के प्लैनेट के इकोसिस्टम के सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी है और एकर से ये पृथ्वी के 500 मिलियन जना के आजीविका सीधा रूप से जुड़ल बा। लेकिन बुरा खबर ई बा कि अगर अभी सही कदम नहीं उठावल गल तो इस शताब्दी के अंत तक सब कोरल रीफ बर्बाद हो जाए। ई खातिर समुद्री जीव के साथ साथ कोरल रीफ के बचैला बहुत जरूरी बा। विश्व महासागर दिवस पर हर बरिस कोनो ना कोनो गतिविधि चलेला हर देश में और ई बरिस भी चली और आपके भी ई बात पर चाहिए ध्यान देवे के कहे कि मॉरिशस एगो टापू है और हमने चारों ओर समुंदर से घिरा रही सा और हमने के ई जिम्मेदारी बनेला कि हमने भी ई

8:55 हुए हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। आपने सुना हमारे धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ 9 बजे संक्षिप्त समाचार और समाचारों के बाद भूलिएगा नहीं नीतू शाह की प्रस्तुति में आप सुनेंगे आज की चर्चा कार्यक्रम।

0: किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 9 बजे हैं। संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति, नमस्कार आपको।
2: नमस्कार नीतुषा। गन्ने की कटनी की शुरुआत के संदर्भ में कल पंजाब के माथू के कोविल में आयोजित वार्षिक प्रार्थनाओं में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राव गुलाम ने भावी राष्ट्रीय बजट की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो उनके अनुसार मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बीच जिम्मेदारी, सॉलिडारिटी और आर्थिक दक्षता पर आधारित रहेगा। उन्होंने कहा कि ये दूसरा बजट एक कठिन आर्थिक दौर के बीच तैयार किया गया है और देश को यथार्थवाद तथा दृढ़ संकल्प के साथ सही राह पर वापस लाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने मौजूदा चुनौतियों के मद्देनज़र सभी से एकजुट होकर और जिम्मेदार तरीके से राष्ट्रीय हित में काम करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि मकसद अर्थव्यवस्था पर दबाव डाले बिना और ज़रूरतमंदों की रक्षा करते हुए देश में आर्थिक वृद्धि मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि एकता ही मौजूदा चुनौतियां पार करने और देश को प्रगति की राह पर अग्रसर करने का एकमात्र साधन है। मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा स्वीकृत नई फिनांसिंग में भारी गिरावट आई है। एडीबी की 2025 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल पारित किए गए वित्त पोषण में मॉरिशस को मात्र 12 मिलियन रुपये से थोड़ा ज़्यादा ही प्राप्त हुआ है। ये पिछले कुछ सालों की तुलना में बहुत कम है, जब ये राशि कई बिलियन रुपए तक पहुंच पाती थी। लेकिन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार इस कदम का अर्थ ये नहीं है कि इस संस्था ने मॉरिशस को छोड़ दिया है, बल्कि बैंक का कहना है कि कई बड़ी बड़ी योजनाओं को पहले से ही मंजूरी मिल चुकी है। एडीबी इस कदम के लिए कुछ परियोजनाओं में देरी और उच्च सार्वजनिक ऋण का कारण बताता है। पिछले कुछ समय के दौरान देश में फुट एंड माउथ डिजीज के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके संकेतों में हाथों, पैरों और मुंह में छाले और फोड़े शामिल हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ये वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा सर्दियों के दौरान होता है और इससे सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। भले ही पिछले कुछ हफ्तों के दौरान इसके काफ़ी मामले सामने आए हैं, फिर भी अभी के लिए स्थिति चिंताजनक नहीं बताई जाती। बच्चों में इसके प्रथम संकेत दिखने पर ही डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज तड़के सुबह दक्षिणी फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.8 अंकों और गहराई 35 किलोमीटर की मापी गई। सुनामी की चेतावनियाँ जारी की गई हैं और वहाँ के राष्ट्रपति ने लोगों के लिए जल्द से जल्द ऊँचाई वाले इलाकों में पनाह लेने के आदेश जारी किए हैं। मिंदानाओ द्वीप में स्कूल बंद किए गए हैं और आपातकालीन कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग NBC Radio.

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको एक स्वागत बाटी। जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम हम हर लेंदी के हमने पेश करी लाजा और हमने के जितना जना देखत हो अंजा सुनत हो अंजा सबके हार्दिक स्वागत। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है कृषि वन। जी हाँ, कृषि वन, जिसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे फार्मिंग सिस्टम के बारे में जो हमारे जो ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न सस्टेनेबिलिटी को आपस में जोड़ता है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं एक अधिकारी, आप है फागे, यानी कि फूड एंड रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट के सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट श्रीमान विशाल भिखारी जी, जो फूड प्रोडक्शन के सिस्टम पर रोशनी डालेंगे और जिसे हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अगर कोई प्रश्न पूछना है तो अभी से ही आपको नंबर बता देते हैं, 4028085-402-8085। तो एग्रो फॉरेस्ट्री की जो हम बात करते हैं, जैसे कि पांच अलग हिस्से होते हैं इनके, क्या है हम आपको बताते हैं और बारी बारी से इस विषय पर, इन विषयों पर जो अलग अलग पांच होते हैं हिस्से जो होते हैं, इन पर हम खुलासा करेंगे। पहले तो है कृषि वन की बेसिक्स, इनको हम समझेंगे। फिर कैसे फार्मिंग कम्युनिटी के लिए डायरेक्ट लाभ होता है, आर्थिक विविधीकरण और रोज़ाना का काम, प्रैक्टिकल मुश्किलों को सॉल्व कैसे करना होता है और क्लाइमेट चेंज जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं, इससे लड़ना और आने वाले फ्यूचर के बारे में हम बात करेंगे। तो विशाल भिखारी जी, आप आज हमारे खास मेहमान हैं, आपका स्वागत है आज की चर्चा कार्यक्रम में। तो सबसे पहले जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, एग्जैक्टली क्या है?
2: सभी सुनने वालों को मेरा हार्दिक नमस्कार।

0: और शुक्रिया मुझको यहाँ एमबीसी के मंच पर इनवाइट करने के लिए। तो ये आग्रो फॉरेस्ट्री जवाब देने के पहले
1: जी
0: मैं सभी सुनने वालों को ये बताना है कि 2000 से 2025 तक ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लाइन 2.5% हो गए हैं।
1: जी

0: इसी पीरियड के दौरान मॉरिशस में 4% 4% यानी कि 3,100 हेक्टर्स की घट गई है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जितने जल्दी हो सके वृक्षों की संख्या को बढ़ाना चाहिए।
1: जी।
0: तो अब आपके उत्तर पर आते हैं, प्राचीन काल से लोग वन में ही कृषि करते थे।
1: जी।
0: और उस समय में कोई हेल्थ की समस्या नहीं थी, कोई कीड़े मकोड़े नहीं थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जैसे आज का, या पौधे में बीमारी नहीं थी और कोई रासायनिक पदार्थ केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं थे। जब कृषि वन में करते थे तो ये प्रैक्टिस कृषि वन की बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इंग्लिश में एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि कृषि और वन का मिक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फूड प्रोडक्शन का ये सिस्टम नया नहीं है, बल्कि बढ़ती हुई वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ये चक्कर में केमिकल की एंट्री की वजह से लोग इसे भूल गए थे।
1: अच्छा।
0: तो एग्रोफॉरेस्ट्री एक ऐसा फूड प्रोडक्शन सिस्टम है जहाँ एक ही ज़मीन पर वृक्ष, फसलें या पशु लाइफ स्टॉक एक बैलेंस और नेचर फ्रेंडली तरीके से मौजूद होते हैं, ताकि एक इंटरैक्टिव और हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम बना सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसके कौन कौन से और भी फायदे हैं?
0: एग्रोफॉरेस्ट्री का बहुत फायदे हैं, तो मैं आज की प्रोग्राम में 5 ऐसे फायदे बताता हूँ। पहले मिट्टी का स्वास्थ्य का की सुधार यानी कि इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। तो एग्रोफॉरेस्ट्री में वृक्ष की पत्तियाँ जो लीव्स हैं जब मिट्टी पर गिरते हैं तो डिकम्पोज होते हैं, एक तरह की नेचुरल कंपोस्ट बन जाती है। इसी मिट्टी को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उसकी उपजाऊ शक्ति यानी कि फर्टिलिटी बढ़ती है।
1: अच्छा।
0: दूसरा, किसानों की कमाई में इजाफा यानी कि डाइवर्सिफाइड इनकम एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इस सिस्टम में किसान सिर्फ एक फसल पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि मिक्स फार्मिंग है ना, तो उन्हें फसल के साथ साथ लकड़ी, फल और चारा यानी कि फोडर भी मिलते हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़ जाती है। तो एक ही जमीन पर सेवरल क्या बोलते हैं हार्वेस्ट होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं। तीसरी, मिट्टी और पानी का बचाव यानी कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। पैरों की जड़ें जो रूट्स हैं मिट्टी को मजबूती से पकड़ करते हैं, जिसे मिट्टी का बहाव रुक जाते हैं। साथ ही साथ ये जमीन के अंदर का पानी जो पकड़ करते हैं और मदद करते हैं कि सॉइल इरोजन नहीं होते हैं और ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाते हैं।
1: अच्छा।
0: चौथा, बायोडाइवर्सिटी का बढ़ावा यानी कि बायोडाइवर्सिटी एनहेंसमेंट। खेती के साथ पेड़ पौधे लगाने से छोटी मोटी वाइल्ड लाइफ और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जैसे मधुमक्खी आते हैं पोलिनेशन के लिए, वो आते हैं जब मिक्स क्रॉपिंग होते हैं, जब पेड़ पौधे होते हैं, जब फूल होते हैं, सब आते हैं और एक इकोसिस्टम के एक इकोसिस्टम बनाते हैं, जैसे फॉरेस्ट में जैसे वन में मिमिक करते हैं, तो ऐसे ही माहौल पैदा करते हैं। और पांचवा, न्यूट्रिएंट साइकिल।
1: अच्छा।
0: यानी कि वृक्ष एक तरह से न्यूट्रिएंट को पंप और जड़ों से पकड़ने का काम करते हैं। ये जमीन के काफी गहरे हिस्से से उन न्यूट्रिएंट्स को ऊपर खींचते हैं जो नीचे गए थे, ताकि ऊपर की फसलें को मिल सके। मिट्टी के अंदर मौजूद हेल्पफुल ऑर्गेनिज्म जो है को खाने देते हैं और मिट्टी को मजबूती से पकड़ करते, ताकि वो पानी के साथ नहीं बह जाते हैं।
1: तो इतने सारे फायदे हम देख रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग, जब हम लोग बात कर रहे हैं एग्रोफॉरेस्ट्री के, और हम लोग पहले के ज़माने की जब इतने सारे फायदे की बात कर रहे हैं तो पहले के ज़माने याद आ जाते हैं। आज तो हम लोग इतने डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन। तो आप हमें बताएं कि एक ट्रेडिशनल जो खेतीहर है, जो खेती बाड़ी करने वाला होता है, उसको एग्रोफॉरेस्ट्री क्यों अडॉप्ट करना चाहिए?

0: ट्रेडिशनल जो मोनोकल्चर करते हैं, जैसे एक ही जमीन पर पोटैटो उगाने का या टोमेटो या कुछ तो भी उगाने का, ये इसको बोलते हैं मोनोकल्चर। जब एक ही जमीन पर सिर्फ एक टाइप की कल्चर होते हैं तो धीरे धीरे से वो कीटू बीमारी जो है, जो सब आते फास्ट से आते हैं,
1: अच्छा अटैक करने लगते हैं,
0: करने से। और जमीन पर सिर्फ एक ही क्रॉप फार्मर को मार्केट क्रश या पेस्ट या क्लाइमेट शॉक के प्रति वल्नरेबल बन जाते हैं। तो एग्रोफोरेस्ट्री इसलिए अडॉप्ट करनी है चाहिए क्योंकि ये फार्म को डाइवर्सिफाई करते हैं।
1: अच्छा,
0: अगर आपकी प्राइमरी क्रॉप का सीजन खराब भी चल रहे हैं तो आप वृक्ष प्रोडक्ट के ऊपर या सेकेंडरी क्रॉप्स एक रिलायबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। ये आपकी जमीन पर रेजिलियंस बिल्ड करते हैं ताकि आपका जो इनकम होते हैं वो रुक नहीं जाते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: तो अगर एक बंद हो गए तो पांच
1: दूसरा रास्ता भी खुल जाता है,
0: हो जाते
1: ये
0: है।
1: बहुत ही सही बात है। तो एक बार फिर आप सभी को हम याद दिला देते हैं कि अगर कोई प्रश्न पूछना है, आज हमारे विशेष मेहमान है श्रीमान विशाल भिकारी जी फागे से है, तो 402-8-4-02-8-0-8-5 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, लाइन खुली है। आप हमें बताएं विशाल जी कि एग्रोफोरेस्ट्री जो है, रेगुलर फॉरेस्ट्री या फिर ऑर्चर्ड फार्मिंग, ये कैसे अलग है?
0: जो फॉरेस्ट्री का बोलते हैं
1: जी,
0: अगर जब वन का ये फॉरेस्ट बोलते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ पेड़ है, वृक्ष है, तो सिर्फ लकड़ी यानी कि टिम्बर के लिए पेड़ उगाते हैं। और ऑर्चर्ड का पूरा फोकस सिर्फ फ्रूट्स पर होते हैं।
1: अच्छा।
0: यानी कि लीची या मैंगोज या कुछ तो भी
1: जी।
0: तो दोनों तरफ सिर्फ एक ही फोकस होते हैं, यानी कि टिम्बर या फ्रूट्स
1: जी।
0: वही एग्रोफॉरेस्ट्री में वृक्ष और फसलें या पशु, अगर बकरी या बैल या गाय कुछ तो भी अंदर करने का, तो एक एग्रोफॉरेस्ट्री है जहाँ पे क्या बोलते हैं, पोल्ट्री डालते हैं।
1: ओके।
0: तो उन सब के बीच का एक डायनामिक और डिलिबरेट पार्टनरशिप है।
1: अच्छा।
0: जिसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि एक साथ मल्टीपल बेनिफिट्स मिल सके
1: जी।
0: तो इसका हर एक एलिमेंट एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट और एनहेंस करते हैं। क्योंकि जब एनिमल्स डालते हैं तो उसकी खाद प्लांट्स को जाती है
1: जी।
0: तो प्लांट्स उसको खींच के
1: उसके अब्सॉर्ब
0: करके और फ्रूट्स देते हैं
1: जी।
0: तो एक बड़ा सा डायनामिक बैलेंस हो जाती है।
1: ओह दैट्स, जैसे कहते हैं यानी कि हर किसी एक ऑर्चर्ड हो, फॉरेस्ट्री हो, हर किसी की अपनी खासियत होती है और जब सब एक साथ मिल जाते हैं तो सबका फायदा होता है।
0: एग्जैक्टली।
1: तो अपने आप को आप हमें बताएं कि एग्रोफॉरेस्ट्री में जो मेन टाइप्स या फिर सिस्टम्स हैं कौन से हैं जिन्हें फार्मर्स जो हैं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं?
0: सबसे कॉमन और सिंपल तरीके कृषि वन की, पहले जो है वो आले क्रॉपिंग
1: मतलब
0: बोलते हैं। आले क्रॉपिंग का मतलब है जैसे आप ऐसे लाइन में डालते हैं क्रॉप्स को, वृक्ष को, क्योंकि हर वृक्ष का साइज जब बड़े होते हैं अलग होते हैं
1: जी।
0: वो जो ऊपर का हिस्सा है उसको कैनोपी बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: राइट। मैंगो का कैनोपी 5 या 6 मीटर का होते हैं, तो जब प्लांट कर रहे हैं तो मिडिल का पार्ट और उन दूसरे का लाइन एक 10 या 12 मीटर छोड़ना पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: क्योंकि जब बड़े हो जाएगा तो पूरा
1: स्पेस तो चाहिए,
0: स्पेस तो चाहिए। तो लेकिन वो स्लो ग्रोथ होते हैं
1: जी।
0: राइट। तो आले क्रॉपिंग एक तरफ की सिस्टम है। दूसरे हैं सिल्वो पास्चर, जब वृक्ष के साथ जानवर यानी कि बकरी या गाय या कुछ तो भी कंबाइन करते हैं। तीसरी जो है विंड ब्रेक्स, अगर एक जगह है जहाँ पे हैवी विंड होते हैं तो विंड ब्रेक्स या शेल्टर बेड क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वृक्षों की लाइन में लगाते हैं
1: जी,
0: ताकि छोटे फसलें जो उसके बाद जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं
1: जी।
0: तीसरी होम गार्डन, जहाँ पे पलहर पेड़ों यानी कि फ्रूट ट्रीज और सब्जियों का एक हाईली डाइवर्सिफाई और मल्टी लेयर्ड मिक्सचर में उगाते हैं। मल्टी लेयर्ड यानी कि ट्रीज जो ऊपर है और इसके नीचे शॉप आते हैं और इसके नीचे

0: आज की चर्चा।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज की चर्चा कार्यक्रम। आज आप हम सब बात कर रहे हैं, खास तौर हमारे जो खास मेहमान आए हुए हैं फागे से, श्रीमान विशाल भिकारी जी, और हम बात कर रहे हैं अबाउट एग्रो फॉरेस्ट्री। जब एग्रो फॉरेस्ट्री की बात हो रही है, औषध की बात हो रही है, तो इतने सारे फायदे के बारे में हम लोग जान पा रहे हैं। और जहाँ जानवर होते हैं, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे फॉरेस्ट्री, हमारे जो जंगल जैसे हम कहते हैं वन, हमारी जो एनवायरनमेंट में पर्यावरण को एकदम सुरक्षित बनाते हैं। जब भी बात करते हैं अबाउट वन या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री विशाल जी, तो हम अपनी मिट्टी को भूल नहीं सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए मिट्टी की बात करते हैं। वृक्ष जो है, वन जो है, उनके बिल्कुल पास उगने वाली फसल को कैसे इनको बेनिफिट्स मिलते हैं?
2: नेचुरली मिट्टी को बेहतर बनाने

0: वाले का काम करते हैं। जब जैसे पहले बताया था कि गहरी जड़ों वाले वृक्ष जमीन के अंदर से उन न्यूट्रिएंट्स को ऊपर लेकर आते हैं जहां शालो रूटेड क्रॉप्स, जहां पे सिर्फ इतना इतना इतना चाहिए छोटा वाला, वो नहीं पहुंचते हैं, वो उसके ऊपर खींच के आते हैं।
1: अच्छा,
0: राइट। तो जब वृक्षों की पत्तियां गिरते हैं, जैसे पहले बताया, वो तो डिकम्पोज होते हैं, तो धीरे धीरे जैसे वन में किसी किसी आदमी को जाते हुए देखा वन में, जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर अप्लाई करने के लिए नहीं देखा, नहीं। कोई पेस्टिसाइड लगाने का नहीं देखा, लेकिन वन एकदम
1: नेचुरल
0: स्वच्छ है, एकदम स्वच्छ है।
1: जी।
0: क्यों नेचुरल है? क्योंकि वो पत्तियां का काम करते हैं और वहां पे जो नीचे का पत्ते हैं वो ह्यूमस बनते हैं और ह्यूमस फार्म यार्ड मैन्यूर से बहुत ज्यादा बेहतर है।
1: जी।
0: तो ऊपर वाले जो हिस्से हैं वो रिच ऑर्गेनिक लेयर बनती है।
1: जी।
0: तो जब रिच ऑर्गेनिक लेयर बनती है तो नीचे धीरे धीरे जाते हैं और सबका भलाई करते हैं, जो आसपास की फसलें के लिए और फ्री नेचुरल फर्टिलाइजर मिलते हैं।
1: जी। तो यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं सेल्फ केयर,
0: सेल्फ केयर
1: होता है। तो अब हम आप हमें बताएं कि लोकल फार्मर्स के लिए पानी की जो अवेबिलिटी है वो एक बिल्कुल एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, हम सबको पता है। तो ये जो सिस्टम है उसमें कैसे मदद करता है?
0: वृक्षों मिट्टी में पानी को पकड़ करते हैं क्योंकि वो जड़े हैं, सिर्फ बड़ी जड़े नहीं है, छोटे वाले भी हैं, और सॉइल पार्टिकल्स को एकदम ऐसे नेटवर्क में बन जाते हैं जहाँ पे जो थिन मॉइस्चर, जो फिल्म मॉइस्चर है वो पकड़ जाते हैं और इम्प्रूव करते हैं जड़ों के माध्यम से, जो जायंट स्पंज के काम करते हैं।
1: अच्छा।
0: इसी तरह काम करते हैं जो वाटर रन ऑफ को स्लो करते हैं और बारिश का पानी जो जमीन के अंदर पेनेट्रेट करने में मदद करते हैं। तो जब ऊपर का कैनोपी, जब बारिश होते हैं एक एक वृक्ष के ऊपर, वो क्या बोलते हैं, इसके इसके अलावा पेड़ों की छाव जो शेड है, मिट्टी की सरफेस से एवापोरेशन को कम करते हैं।
1: जी।
0: जब ढल जाते हैं तो सूरज का प्रकाश जो है, जो हीट है, वो नहीं पहुंचते हैं डायरेक्टली सॉइल के ऊपर, तो मदद करते हैं, जिसका मतलब है कि खेत ज्यादा समय तक हाइड्रेटेड रहते हैं और कीमती पानी की बचाव होती है।
1: अच्छा।
0: तो बर्फ वृक्ष डालना पड़ना पड़ेगा जब भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं।
1: जी, इट्स अ मस्ट। एक श्रोता है, आपसे बात करना चाहेंगे, प्रश्न पूछना चाहेंगे। हेलो जी,
2: नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
2: आम की गांछे कैसे प्लांटिंग करते हैं?
1: आम के गांची यानी कि आम के जो पेड़ है उसको कैसे उगाया जाता है, कैसे रोपा जाता है?
0: जब भी फ्रूट्स के वृक्ष जो डालना है, आपका कहाँ पे डालना है अगर मालूम नहीं, अगर घर के
1: घर
0: पास
1: पर, घर के आंगन में, किसी बगीचे में, कहाँ?
2: आंगन में।
0: ओके। अगर आंगन है तो ज्यादा स्पेस है, अगर 10 मीटर बाय 10 मीटर का स्पेस है तो लगा देना, क्योंकि आम का जड़ी आपका बेसमेंट, घर का बेसमेंट को बाद में नुकसान पड़ सकते हैं, तो देखना पहले कहाँ पे प्लांट करने का।
1: ठीक है।
0: नहीं, आप ये प्लांट कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्टेंस चाहिए, अगर कोई
1: अगर अगर पहले से ही कोई कोनो गौची बाचाची तधरला तू आम के गौची रोपे के मन बात हो रहा ना, त तोहर आंगन में कोनो और गौची बाटे कि नहीं?
2: नहीं खोला, कुको की गौची नहीं बात।
1: अच्छा, कुछ नहीं बाती अभी आंगन में, कुछ नहीं बाती?
2: बाते एक मजे है, एक दूसरे से गौची बाते।
1: अच्छा, छोटा के बड़ा? आप कहाँ रहे?
0: अगर पेचिगाफे में रहे हैं तो फारे का एक ऑफिस है मापू में, अगर आप जा सकते हैं पूछने के लिए, वहाँ पे एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, आपके जगह आपके साइट विजिट कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं

0: क्या कहाँ पे उगाना है।
1: अच्छा
2: ठीक बा, बहुत धन्यवाद। तो चला जे कुछ हो पूछे के बातें हमने के लाइन खुलल बातें 402-4-02-8-0-8-5। विशाल जी हमने के आप बताइए ज़रूर कि कृषि जब एग्रोफॉरेस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो किसान का जो केमिकल खाद जैसे हम बात करते हैं पेस्टिसाइड, तो जैसे जो इनपुट्स हैं उन पर खर्चा कैसे बचाया जा सकता है?
0: वो जो खाद है वो फर्टिलाइजर का है।
2: जी जी
0: बिल्कुल, क्यों कुछ स्पेसिफिक ट्री स्पीसीज चुनकर, जैसे लेग्यूमिनस ट्रीज, यानी कि जो हवा के नेचुरली नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं, मिट्टी में पंप करते हैं, किसान लोग महंगी पदार्थों पर अपनी डिपेंडेंसी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं।
2: अच्छा,
0: वो जो नेचुरल लीफ, क्योंकि एक टाइम लगता है एक आज से
2: है।
0: आज से कल तक नहीं हो सकेगा
2: जी।
0: तो टाइम लगेगा, और वो नेचुरल लीफ मल्च की वजह से सिंथेटिक पदार्थों बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि जब ये बात कर रहा हूँ वो मैं 10 साल का ये एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम का बोल रहा हूँ। अगर नया है तो कृषि वन की खेत में अगर अभी अभी शुरू किया है
2: जी,
0: तो इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पानी डालना है, वो छोटा पैर है, पानी डालना है, और आपका जो इंटरलाइन जो क्रॉप्स होते हैं उनको भी पानी का ज़रूरत होते हैं। अगर पहले से ही एक एस्टाब्लिश एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम है तो सूखे के पूरी तरह अफेक्ट नहीं होते हैं। जब भी सूखे का सीजन आते हैं, क्योंकि बड़े वृक्ष के जड़ पहले से ही मिट्टी का पानी को मजबूती से पकड़ रखते हैं और ये ऊपर वाले फसलें को जीवित रखते हैं।
2: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो रही है। तो हम जब बात कर रहे हैं एग्रोफॉरेस्ट्री खेत की बारी में कर रहे हैं, और बहुत जना हमने की अभी सुना थवन देखा थवन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें बताएं कि खेत पर लगे वृक्ष कीड़े जो मकोड़े और बीमारियां हैं उनके मैनेजमेंट में कैसे मदद करते हैं?
0: मोनोकल्चर फील्ड्स, यानी कि जहाँ पे एक ज़मीन है सिर्फ एक ही कल्चर के हैं, उसको बोलते हैं मोनोकल्चर।
2: जी
0: बिल्कुल, एक जैसे ऑल यू कैन ईट बुफेट जो है, जहाँ पे एक टेबल है सिर्फ एक ही चीज़ है खाने के लिए, यानी कि एक टेबल है जहाँ पे सिर्फ चावल है, या एक टेबल है जहाँ पे सिर्फ चिप्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, ये इनवाइट करते हैं कीड़े मकोड़ों को, दावत देते हैं खाने के लिए, तो सब आते हैं। लेकिन जब आप खेत में वृक्ष और अलग अलग तरह की फसलें लगाते हैं तो आप उस बुफेट को, उस खाने की चीज़ को पूरी तरह से तोड़ कर देते हैं। इसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। तो जैसे अगर हम आप एमबीसी में आ गए हैं अभी, तो आगे से पीछे तक सिर्फ एक ही जन का फेस दिख रहे हैं, तो ये उसको मोनोकल्चर। लगर जब मैं आऊँ तो आगे मैं वॉचमैन
2: अलग लोग दिख रहे हैं,
0: एक हो गए, तो अलग अलग है, ये तो मिक्स क्रॉपिंग है। तो प्रकृति ने ऐसे ही बनाए हैं
2: जी।
0: तो लेकिन ह्यूमन जो है वो मोनोकल्चर करते हैं सिर्फ पैसे के लिए
2: जी।
0: तो वृक्ष लगाने से फायदेमंद कीड़े यानी कि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स और पक्षियों को एक अच्छा घर, अच्छा हैबिटेट मिल जाते हैं, जो नेचुरल प्रीडेटर्स का काम करते हैं। ये पक्षियों उन कीड़े का खा जाते हैं जिसे बिना हैवी पेस्टिसाइड स्प्रेइंग के ही गंदे कीड़े की संख्या घट जाती है
2: जी।
0: तो प्राकृतिक रूप से और कंट्रोल में रह जाती है। तो सब अगर एक ही साथ में रहते हैं तो बायोडाइवर्सिटी होते हैं ना, तो एकदम आसानी से ग्रो कर सकते हैं।
2: हम यही आशा करते हैं कि आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम लोग एग्रोफॉरेस्ट्री, जहाँ पर सिर्फ मोनोकल्चर नहीं है बल्कि सब कुछ एक साथ हम लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, अभी तो हम विंटर सीजन में हैं, सर्दी का मौसम आता है या फिर साइक्लोनिक वेदर आता है, बारिश, जब भारी बारिश आती है उसके दौरान सॉइल इरोजन की भी बात हो रही है, ये आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया।

0: है सॉइल इरोजन एंड ऑफ कोर्स, तो एक ही रात में किसानों की जो फसल है वो बर्बाद भी हो सकती है. तो ऐसे में जो वृक्ष होती है, जो वन होती है, जो इको जो एग्रोफोरेस्ट्री है, इससे कैसे बचाया जा सके?
1: पैरों की जरी जब पहले बात कर रहे थे, वो रूट्स खेत के लिए एक लिविंग एंकर का काम करते हैं, सब पकड़ करते हैं
0: जी.
1: वो मिट्टी को पकड़ते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स को मजबूती से बांध कर रखते हैं. जब बड़ी बारिश होते हैं तो वृक्ष की कानोपी जो ऊपर का है
0: जी.
1: वो बारिश के बूंदे की जोर को तोड़ कर सकते हैं, तो इतना जो ऊपर का प्रेशर आते हैं ना, तो उसको धीमिक से करते हैं, तो धीरे धीरे अंदर आते हैं. तो वृक्ष के कानोपी बारिश के बूंदे के ये जोर तोड़ करके और जरे ऊपर के मिट्टी को जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं नदी या ड्रेन्स में नहीं बह जाते हैं.
0: अच्छा.
1: तो सब कैप्चर कर देते हैं
0: जी.
1: तो मरे हुए पत्ते जो मल्चिंग का काम करते हैं वो भी बारिश को धीरे से मिट्टी में क्या बोलते हैं वो पर्कुलेट करते हैं.
0: अच्छा.
1: वो डायरेक्ट सॉइल पे इम्पैक्ट नहीं करते
0: जी,
1: हैं
0: जी.
1: तो जब भी जैसे कम्मल का काम करते हैं
0: ग्लेयर जैसे, हाँ,
1: तो सॉइल इरोजन नहीं होते हैं
0: जी.
1: पानी से नहीं और हवा से भी नहीं.
0: अच्छी बात है ये. तो चलिए अब आगे हम बात करने वाले हैं आर्थिक विविधीकरण और रोजाना का काम, मतलब कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड डेली ऑपरेशंस. साथ देते रहिएगा बस थोड़ी देर में.

0: आज की चर्चा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, जिसको आप फेसबुक लाइव देख रहे हैं, और शाम को 3 से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन और 4 से 5 के बीच एमबीसी टीवी पर भी वापस देख पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको नंबर दे देते हैं 402-4-0-2-8-0-8-5। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं श्रीमान विशाल भिखारी जी, फागे के अधिकारी हैं, और आज हम बात कर रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, इनके जो फायदे हैं हम देख रहे हैं, और इनके फायदे के साथ सबका फायदा है इसमें, क्योंकि हम सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। वन हो, वृक्ष हो, पेड़ पौधे हो, हमारी मिट्टी हो, हम सब इसके साथ जुड़े रहते हैं। अच्छा विशाल जी, आप हमें बताएं कि जो किसान होते हैं, किसानों को हमेशा अपने फायदे अपने नुकसान देखना होता है, इट्स अ मस्ट जैसे कहते हैं, और ये जो सिस्टम है, यानी कि हम बात कर रहे हैं अबाउट इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड टेली ऑपरेशंस, जो आर्थिक विविधकरण है और रोजाना के जो काम होते है, ये जो सिस्टम है किसान की कमाई को कैसे इंप्रूव करता है और क्या इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है?
2: एग्रोफॉरेस्ट्री एक सिस्टम है जहां पे एक ही खेत से इनकम के मल्टीपल स्ट्रीम्स क्रिएट करता है।
1: अच्छा,
2: तो जब तक एक ही जमीन पर शॉर्ट साइकिल सीजनल क्रॉप्स जैसे मिर्ची, अलग अलग सब्जी, फूल, सलाद, बैगन आदि आदि, और मीडियम और लॉन्ग साइकिल वाली क्रॉप्स जैसे हल्दी, सुरन, अदरक, केले एक ही साथ उगाई जा रहे हैं, तब तक किसान का डेली, वीकली या ईयरली हार्वेस्ट
1: चलता रहता है,
2: कर सकते हैं। तो एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में इनकम हमेशा एक कंस्टेंट बेसिस पे होती है
1: जी।
2: लेकिन एग्रोफॉरेस्ट्री स्टार्ट करने के लिए लगभग मिनिमम 1 एकड़ जमीन या 1/2 एकड़ जमीन पे भी ओके चलेगा
1: चलेगा।
2: तो ये इम्पोर्टेंस है साइज का, क्योंकि वृक्ष का साइज बड़ा है, क्योंकि ये गार्डन नहीं है जहाँ पे सब्जी उगाते हैं, तो वृक्ष जब डालते हैं तो स्पेस लगाना पड़ेगा
1: जी।
2: तो प्लॉट है, प्लॉट जो है जहाँ पे एग्रोफॉरेस्ट्री जा रहे हैं करने के लिए, वो फेंस होना चाहिए और प्रॉपर पानी का आवश्यकता या और रोड एक्सेस अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं और पानी नहीं है और जो रोड का एक्सेस अच्छा नहीं है, तो आपका मुसीबत हो जाएगा।
1: अच्छा,
2: प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर प्लॉट बड़ा है तो ज्यादा मैन पावर और ज्यादा मशीनरी की जरूरत होती है, छोटी मशीनरी है, बड़ी मशीनरी नहीं। इसका मतलब है ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट
1: जी।
2: हम फिगर्स पे नहीं जा रहे हैं आज, क्योंकि ये इकोनॉमिक एनालिसिस है और इट्स अ केस टू केस बेसिस। और किसान जो को जानना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, लक्ष्य क्या है
1: जी,
2: इसके आधार पर एग्रोफॉरेस्ट्री का प्रोजेक्ट बनाना है और एक अच्छे से प्लान करके हम फारे में साइंटिस्ट हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, मदद कर सकते हैं
1: जी। और यहाँ पर फिर से आपको याद दिला देते हैं 402-4-0-2-8-5, अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमें बताएं कि क्या एग्रोफॉरेस्ट्री और पशुपालन माने कि लाइफ स्टॉक जो है करने वाले किसान, उनको भी साधन माने कि रिसोर्सेज प्रदान किए जाते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, क्योंकि पशुपालन एक वन की वातावरण में क्या बोलते हैं, वो सिल्वोपास्चर सिस्टम बोलते हैं। अगर पशुपालन और वन की एक ही सिस्टम में करते हैं तो सिल्वोपास्चर करते हैं। फरी में एक है, एक सिल्वोपास्चर है जहाँ पे शुरू किया है, तो देखना पड़ेगा बाद में कैसे होते हैं, वो पेची मेलो में है
1: जी।
2: और इसमें कुछ स्पेसिफिक ट्रीज या घास की पत्तियां

0: जानवरों के लिए ज़्यादा प्रोटीन वाले चारा यानी कि फोडर का काम करते हैं। खासकर ड्राई सीजन में जब घास की कमी होती है तो ये फीड कॉस्ट को काम करते हैं और लाइफ स्टॉक की स्वास्थ्य और दूध का पैदावार इम्प्रूव करते हैं।
1: अच्छा, तो यहाँ पर आप हमें बताएं कि एक किसान जो है अपने रेगुलर क्रॉप्स के साथ और किस तरह के वृक्ष उत्पादन जो है वो बेच सकता है।
0: किसान जो फसलें बोई गई हैं उसके बेसिस पर, उसके आधार पर वो इन साधनों से फलों, नट्स या मसाले या स्पाइसेस, मेडिसिनल बॉक्स जैसे कानेल बोलते हैं, जलाने वाली लकड़ी चारा और हाई वैल्यू लकड़ी मिलते हैं
1: जी।
0: ये वैरायटी उनके लिए अलग अलग लोकल मार्केट्स और एग्रो प्रोसेसिंग अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलते हैं।
1: तो यहाँ पर क्या आप कह सकते हैं कि एग्रोफॉरेस्ट्री अडॉप्ट करने का ये मतलब है कि किसान को अपने जो करंट फसलें उगाने बंद करने होंगे?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्रोफॉरेस्ट्री पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है
1: जी,
0: मॉडिफाइड कर सकते हैं। अगर आप एक सब्जी वाले किसान हैं तो आप वेजिटेबल्स उगाना बंद नहीं करेंगे, आप बस स्ट्रैटेजिकली बेस्ड रोज में ऐसे वृक्ष लगाना है जो आपकी फसलें को कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
1: अच्छा,
0: ये आपके एग्जिस्टिंग खेत को एनहेंस करते हैं। वो एक एक डिज़ाइन करना पड़ेगा
1: जी,
0: क्योंकि जब अच्छा डिज़ाइन होते हैं सब खराब हो जाते हैं, तो उसे बदलने करने नहीं चाहिए।
1: अच्छा,
0: सिर्फ जैसा है। हाँ
1: जी जी जी जी, तो यहाँ पर एक श्रोता है, उनसे बात करेंगे। हेलो,
2: हाँ नीतिशा जी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी,
2: और भाई को ही मेरा नमन।
0: नमस्ते।
2: हाँ, मेरा ये कहना है नीतिशा जी, जो गाना आपने चलाया भी ना, बर तरे झूला हूँ न पहली हो बाबा
1: जी,
2: उसमें एकदम सच्चाई है, झूठ नहीं है। क्योंकि उस समय में रात्रि को शादी होती थी, तो अब कहाँ, कैसे, पहले तो खेल खिलौने छोड़कर, गुड़ा गुड़िया छोड़कर लड़कियों को शादी करना पड़ता था ना, और बद की वृक्ष की जटाओं को पकड़कर झूलती थी। अब तो वो सब छूट गई है, तो मेरा ये कहना है कि, और सचमुच में वो ससुर जी आते थे अपनी बहू को ले जाने के लिए, और जेठ जी भी आते थे, हाँ तो कहाँ पति आते थे। तो गाना सुनकर, मैं तो सवेरे से नहीं सुन रही हूँ क्योंकि काम काज में उलझी हूँ, अभी आई तो थोड़ा सा सुना, अच्छा लगा, प्रोग्राम अच्छा लगा,
1: बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर
2: अभी की यादें सामने आती है क्योंकि मैंने रात्रि की शादी देखी है ना।
1: अच्छा,
2: इसीलिए उस समय रात्रि में शादी होती थी, ससुर भौसुर आते थे, दो तीन मोटर आती थी तो शादी करके जाती थी लड़की, और बाद में जब विदाई होती थी तो लड़की के पापा नहीं जाते थे लाने, वो
1: जी, जी, जी।
2: लाने जाते थे, लेकिन जब वहाँ से पीहर से लोग आते थे ले जाने के लिए बहू को, तो पति नहीं आते थे उस समय।
1: अच्छा जी, बहुत धन्यवाद श्यामा जी। वैसे आज शादी पर बात नहीं हो रही, आज तो बात हो रही है एग्रोफॉरेस्ट्री पर, लेकिन चलिए, इन गानों के जरिए आपकी यादें वापस आ गई हैं, उभर आई हैं, बस जानकर अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं समय की ओर भी देख रही हूँ, बस हमारी जाने का टाइम आ गया है, लेकिन एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछेंगे, क्योंकि आने वाले जो हफ्ते हैं, अगले हफ्ते वापस आएंगे इसी टॉपिक पर, यानी कि एग्रोफॉरेस्ट्री, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट है विशाल जी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन चलते चलते आप हमें बताएं कि जो वृक्ष की छांव है, जो शेड है, उन फसलों को कैसे अफेक्ट करती है?
0: यही पर क्या बोलते हैं, स्मार्ट डिजाइन काम करते हैं
1: जी।
0: क्या बोलते हैं, रेगुलर प्रूनिंग जब काटते हैं
1: जी,
0: हिंदी में बोलते हैं शतनई।
1: अच्छा,
0: तो बारी बारी जब शतनाई करते हैं तो जैसे ये टेक्निक का यूज करते हैं ताकि कैनोपी ऊपर वाले का हिस्सा जब बोलते थे पहले, वो जब जब मैनेज करते हैं तो ये सनलाइट को नीचे आ सकते हैं
1: जी,
0: इसको बोलते हैं विंडोइंग।
1: अच्छा,
0: यानी कि अंदर का ब्रांच जो बड़ा है वो काट सकते हैं और अंदर से ही सनलाइट आते हैं नीचे। तो इसके अलावा

0: हाई हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कॉफी, कोकोआ, अदरक, हल्दी और कुछ लीफी ग्रीन्स उगाई कर सकते हैं।
1: जी
0: एक्चुअली पार्शियल शेड में ये क्रॉप्स ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करते हैं और फसल की क्वालिटी बेहतर होते हैं,
1: अच्छा
0: क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं डांसिंग शैडो,
1: हाँ
0: यानी कि थोड़ा सा
1: इधर थोड़ा
0: सूरज
1: सा
0: थोड़ा
1: हाँ
0: सा शेड, तो ये प्लांट्स अच्छे लगते हैं जब दोनों का मिक्स
1: मिलते
0: होते
1: हाँ
0: हैं।
1: मिक्स होता है। तो बस ऐसे ही हम लोग मिक्स करते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहिएगा अगले हफ्ते फिर से हम लोग, क्योंकि ये बहुत है, जैसे कि हमने कहा टॉपिक बहुत ही वास्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी श्रोता, जितने भी आप हमारे साथ जुड़े रहे, दर्शकगण जुड़े रहे। हमने बात की एग्रो फॉरेस्ट्री और कैसे जो फार्मिंग जो है कम्युनिटी को एम्पावर कर सकते हैं, इसी विषय को हम अगले हफ्ते जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विशाल भिखारी, आप सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं फागे से। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी, तब तक हमारी पूरी टीम की ओर से आपको धन्यवाद, सबको नमस्ते,
0: शुक्रिया आपको।
1: धन्यवाद।

0: स्टूडियो में आगे अलती उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। इस साल की शुरुआत में 201 बिलियन रुपए का रिकॉर्ड पार करने के बाद अप्रैल 2026 तक हाउस होल्ड ऋण बढ़कर 207.40 बिलियन रुपए तक पहुंच गया। बैंक ऑफ मॉरिशस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें वार्षिक 12.2% की वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस बढ़ोतरी के कारण के कई कारण हैं। परंपरागत रूप से मॉरिशन लोग घर खरीदने या बनवाने के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन हाल ही में अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट की कीमतों में लगभग 30% की वृद्धि ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है। एक और कारण है आम जीवन चलाने और खरीदारियों के लिए क्रेडिट सुविधाओं का सहारा लेना। इसके परिणामों में से एक है परिवारों की खरीद शक्ति और बचत में कमी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार कर्ज चुकाने में अब मॉरिशन परिवारों की आय का लगभग 18% खर्च होता है। मॉरिशस में सभी के लिए सामान्य नागरिक विवाह यानी सिविल मैरिज की मांग वाले पिटीशन को एक हफ्ते से भी कम समय में 13,000 से ज्यादा हस्ताक्षर मिल चुके हैं। आउट मोरिस की निदेशिका सौंद्रीन जुलियन के अनुसार अधिकांश लोग इस मांग का समर्थन करते हैं। इस अभियान का उद्देश्य है देश में ज्यादा समावेशी समाज को बढ़ावा देना और समान अधिकारों की रक्षा करना। ये याचिका 1 जून को प्राइड मंथ के संदर्भ में शुरू की गई थी। ये पिटीशन आउटमोइस की के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं और जून के आखिर तक जनता के लिए खुला है। प्राप्त परिणामों को एक नागरिक घोषणा पत्र में संकलित किया जाएगा और सार्वजनिक किए जाने के बाद इसे अधिकारियों के सुपुर्द किया जाएगा। पिछले कुछ समय से देश में फुट एंड माउथ डिजीज के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके संकेतों में हाथों, पैरों और मुंह में छाले और फोड़े शामिल हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ये वायरल इन्फेक्शन ज्यादा सर्दियों के दौरान होता है और इससे सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। भले ही पिछले कुछ हफ्तों के दौरान इसके काफी मामले सामने आए, फिर भी अभी के लिए स्थिति चिंताजनक नहीं बताई जाती। बच्चों में इसके प्रथम संकेत दिखने पर ही डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पिछले अप्रैल महीने से पहली बार के लिए ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले किए हैं, जिसका इसराइल ने भयानक जवाब देने की चेतावनी दी है। अधिकांश मिसाइलों को मार गिराया गया है और इसराइली सरकार ने लोगों को शेल्टर से निकलने की अनुमति भी दी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से जवाबी हमले न करने और ईरान से ऐसी भड़काने वाली हरकतें न करने की मांग की है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। जगदम्बी रोड गुडलैंड्स में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड जनाब मोहम्मद फैजल गुलाब खां, जो ओंगी नाम से ज्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के दो बजे इनके मकान जगदम्बी रोड गुडलैंड से उठाकर दफनाने के लिए बेलमो गुडलैंड्स का शमशान काकर बसाने जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: दिन के 10:04 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, MBC रेडियो पर आप सबका अभिवादन है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। हम प्रस्तुत कर रहे हैं भक्ति धारा कार्यक्रम और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। जी हाँ श्रोताओं, कहते हैं प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय की गहराई से होती है, और धर्म वो दीपक है जो अंधकार में भी जीवन को रास्ता दिखाता है। भक्ति का रंग एक बार चढ़ जाए तो दुनिया के सब रंग फीके लगने लगते हैं। और ये भी है श्रोताओं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करता है उसका मन कभी गरीब नहीं होता। तो चले लेते हैं गणेश जी का नाम और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।

0: 10:14 हुए हैं दोस्तों, तो चलिए सुनते हैं मानस मंथन कार्यक्रम डॉक्टर विनु अरुण जी के साथ।
1: मानस मंथन प्रस्तुत कर रही है डॉक्टर विनु अरुण।
2: रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में मैं विनु अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ।

तो रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 249 यानी 249 के नीचे की चौपाइयाँ आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रसंग आपको याद है, धनुर्यज्ञ का आयोजन हो रहा है और सभी राजा

रथ में जितने भी नगरवासी हैं, जितने भी आमंत्रित लोग हैं, वे उस आयोजन में सम्मिलित हो चुके हैं। राम जी पधार चुके हैं, सीता जी वरमाला लेकर के उस यज्ञशाला में उपस्थित हो चुकी हैं और अब कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। और उसकी पहली कड़ी है कि जो बंदी जन हैं वे राजा जनक की विरुदावली सबके समक्ष गा रहे हैं, यानी राजा जनक के वंश का कीर्ति गान कर रहे हैं। और साथ ही राजा जनक ने सीता जी के लिए जो प्रण किया था उस प्रण को भी सबके समक्ष दोहरा रहे हैं। आइए देखें क्या कहते हैं। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाँ ही हम भुजा उठाई विशाल। जो भाट हैं, जो बंदी जन हैं, उन्होंने सबके समक्ष जाकर के कहा कि हे श्रेष्ठ राजा लोग, आप बहुत महान हो क्योंकि आप पृथ्वी की रक्षा करते हो, पृथ्वी का पालन करते हो, दूर दूर से आए हो। तो मैं आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जनक जी का विशाल प्रण क्या है। हम दृढ़ता पूर्वक राजा जनक के प्रण को आपके समक्ष दोहरा रहे हैं। क्या है प्रण, आइए अब देखें। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू, रावण बानु महाभट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चलते बने बोल रहे हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, यानी जितने राजा हैं यहाँ पे उनकी भुजाओं का बल, क्योंकि कैसे उठाना है धनुष को, भुजाओं के बल से। बाहुओं में जो बल है, जब बल नहीं होगा तो किसी चीज़ को उठाएंगे कैसे। तो जो राजाओं की भुजाओं का बल है वो मान लो चंद्रमा की तरह है, और शिव जी का धनुष क्या है, वो राहु की तरह है। राहु और चंद्रमा में दुश्मनी है, आपको मालूम है वो कथा, आपको याद होगी कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से विष और अमृत दोनों निकले थे। भगवान विष्णु मोहिनी बन करके अमृत देवताओं को दे रहे थे और उसमें एक राक्षस छुप करके बैठ जाता है, और मोहिनी यानी जो भगवान विष्णु मोहिनी बने हुए हैं, चूँकि वे सबको अमृत बांट रहे थे तो अमृत उन्होंने नहीं देखा कि कोई छल पूर्वक बैठ गया है, उन्होंने उसके भी दोने में या थाली में या कटोरे में वो अमृत के कण डाल दिए। जैसे ही उसने मुंह में लगाया, चंद्रमा ने देख लिया और चंद्रमा ने बता दिया कि ये तो छल पूर्वक यहाँ पर कोई राक्षस बैठा हुआ है, और तुरंत उनका गला काट दिया गया। लेकिन चूँकि अमृत का एक कर्ण यानी अमृत की एक बूंद उसके गले के नीचे उतर चुकी थी, इसलिए वो मरा नहीं और उसका धड़ अलग हो गया, सर अलग हो गया, एक राहु बन गया, एक केतु बन गया। और राहु केतु को ये लगा कि चंद्रमा के कारण हम अमृत नहीं प्राप्त कर सके, चंद्रमा के कारण हमारा गला काट दिया गया, इसलिए वे दोनों चंद्रमा से शत्रुता करते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं कि चंद्रमा की दुश्मनी है राहु और केतु से। तो शिव जी का धनुष राहु है, क्यों, क्योंकि जैसे राहु और चंद्रमा की दुश्मनी है, वैसे ही जो शिव जी का धनुष है उस राहु की तरह है, जिसे राजाओं की भुजाओं का जो बल है वो चंद्रमा की तरह है। ग्रहण किसको लगता है, चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। कब लगता है, जब राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है। तो इस प्रतीक के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से तुलसीदास जी ये बताना चाह रहे हैं कि जो शिव जी का धनुष है उसे उठा पाना किसी भी राजा के भुजाओं के लिए संभव नहीं है, यानी किसी भी राजा की बाहों में इतना पराक्रम नहीं है कि वह शिव जी के धनुष को उठा सके, क्योंकि वह भारी है, कठोर है।

बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपचाप खिसकते बने, यानी उन्होंने प्रयास भी नहीं किया। उस समय के जो सबसे पराक्रमी योद्धा थे, राजा थे, वो थे बाणासुर और रावण। वे भी आए लेकिन वे भी इसे देख के चुपचाप चले गए। देख कर ही समझ गए कि ये इतना भारी धनुष है कि इसे तो हम छू भी नहीं सकते, उठाने की तो बात ही क्या है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिन ही विचार बरही हठते ही। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगे। भाटों को ये दायित्व सौंपा गया था कि वे राजा जनक के प्रण को सबके समक्ष दोहराएं, इसीलिए वे सबके सामने फिर से उस प्रण को रख रहे हैं जो राजा जनक ने किया और जिसके अधीन सीता जी का विवाह है। यानी जो धनुष उठा पाएगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। ये जो राजा का प्रण है उसे ही ये भाट लोग सबके समक्ष दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि शिव जी का धनुष बहुत कठोर है, इसे ऐसा वैसा मत समझिएगा। जब बाणासुर और रावण जैसे राजा भी देख कर ही चले गए, उठाने का उन्होंने दुस्साहस भी नहीं किया, तो आप सब समझ लो कि वो कितना भारी कितना कठोर धनुष है। लेकिन जो भी इस धनुष को इस राज समाज में सबके समक्ष तोड़ देगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही, यानी वो तीनों लोकों को विजय कर लेगा। यानी कहने का अर्थ है कि तीनों लोकों में उसका यश फैल जाएगा और बिना किसी विचार के, बिना किसी संकोच के सीता जी उसे वरमाला पहना देंगी। यानी तुरंत सीता जी का विवाह उस व्यक्ति के साथ हो जाएगा जो इस धनुष को तोड़ देगा। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले ईष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुन करके सभी राजा ललचा उठे कि हम, कितनी अच्छी बात है, केवल धनुष को तोड़ना है और सीता जी को प्राप्त कर लेना है, तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है। क्योंकि देखने में थोड़ी लग रहा था कि वो धनुष इतना कठोर है कि नहीं तोड़ा जा सकता, सबको लगा ये तो बड़ा आसान काम है। और जिनको अपनी वीरता का बहुत अभिमान था, जिन्हें लगता था कि उनके जैसा पराक्रमी तो कोई है ही नहीं, वे तो मन ही मन तमतमाए, यानी बहुत उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि बस हम गए, धनुष उठाया और सीता जी से विवाह हुआ। कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चल दिए। तम कि ता कि तक शिव धनु धरहीं, उठई न कोटि भांति बलु करहीं, जिनके कछु विचार मन माहीं, चाप समीप महीप न जाहीं। बोल रहे हैं वे तमक कर, यानी बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास नहीं जाते। तो मन में तो सबके लड्डू फूट रहे हैं, मन में तो सबके यही अभिलाषा है कि हमारा विवाह सीता जी से हो जाए, लेकिन उसके लिए एक शर्त है और वो है इस धनुष को उठाना। इसलिए वे जाते हैं बहुत उत्साह से, बड़े मन में ऐसा निर्णय करके कि बस हम गए, हमने उठाया धनुष को और सीता जी से विवाह हुआ। तो शिव जी के धनुष के पास पहुंचते हैं, उसे देखते हैं और फिर कोशिश करके उसे पकड़ते हैं और उठाने का तरह तरह से प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनके वश की बात नहीं, धनुष तो टस से मस भी नहीं होता। और फिर वे हार हार कर वापस लौट आते हैं। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी हैं जिनके मन में विवेक है, जो अपनी शक्ति को भली प्रकार जानते हैं, जो उस वास्तविकता को पहचानते हैं। ऐसे राजा धनुष के पास नहीं गए, वे समझ गए कि हम इस धनुष को नहीं उठा पाएंगे, बेकार जा

करके उपहास का पात्र बनना, ये कौन सी समझदारी की बात है। बेहतर है यहीं चुपचाप बैठे रहो और लोगों से अपनी हंसी मत करवाओ। तमक धरहि धनु मूढ़ नृप, उठहि न चलहि ल जाइ, मनहु पाइ भट बाहु बल, अधिक अधिक गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। जो मूर्ख राजा हैं, जिनको अकल ही नहीं है, जो अपने पराक्रम पर झूठा अभिमान करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तविकता नहीं जानते, भ्रम का जीवन जीते हैं, वो अपने बारे में बहुत ऊंची ऊंची राय बना लेते हैं, अपने को बहुत महान समझने लगते हैं। तो ऐसे जो राजा हैं, जो अविवेकी हैं, वे अपने को महान समझते हुए जाते हैं धनुष के पास, उसे पकड़ते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं। जब नहीं उठा पाते हैं तो लज्जित हो करके चले आते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वीर उस धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो धनुष वीरों की वीरता को प्राप्त करके और अधिक भारी होता जाता है। कहने का अर्थ, जैसे जैसे राजा लोग आ रहे हैं, वैसे वैसे उन्हें लगता है कि धनुष और भी भारी होता जा रहा है, इतना कठिन है उस धनुष को उठा पाना। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। तब 10,000 राजा एक ही भार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। यानी अब जब एक एक राजा अकेले अकेले आए और धनुष को टस से मस नहीं कर सके, तो अब अनेक राजा एक साथ मिलकर के आते हैं कि चलो हम कोशिश करते हैं साथ में मिलके, क्या पता हम इस धनुष को उठा लें। लेकिन फिर भी वह सबके प्रयत्न करने पर भी धनुष अपने स्थान से बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, यानी बिल्कुल भी नहीं हिलता। तो शिव जी का वो धनुष कैसे अडिग था, कैसे बिल्कुल जैसे लगता था कि ज़मीन से चिपक गया है, कैसे बिल्कुल स्थिर हो गया है। तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर नीति वचन का प्रयोग करते हुए तुलना की है कि कैसे वो धनुष नहीं हिल रहा है, अपनी जगह से बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा है, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। जो सती स्त्री है, जो जिसे अपने सतीत्व पर विश्वास है, ऐसी स्त्री के समक्ष कोई कामी व्यक्ति कितनी भी बातें कहे, उसे फुसलाने की कोशिश करे, उसे प्रलोभन दे, जैसे सती का मन कभी भी चंचल नहीं होता, वो उसकी बातों से आकर्षित नहीं होती, उसी प्रकार ये जो धनुष है मानो सती की तरह है, और जो राजा लोग हैं मानो कामी पुरुषों की तरह हैं। और ऐसे लोगों के प्रयास से भी वो शिव जी का धनुष बिल्कुल चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर्ब सहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है, कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रोताओं, तुलसीदास जी कि एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने रामचरितमानस में श्री राम की कथा का वर्णन तो किया ही किया है, जिसे हम पढ़ रहे हैं, जिसका आनंद हम ले रहे हैं, जिसे समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो कथा तो चल रही है। लेकिन उस कथा के साथ साथ तुलसीदास जी अन्य बहुत काम कर रहे हैं। एक तो वे कवि हैं, तो पूरी कथा को एक कवि की दृष्टि से उसका वर्णन कर रहे हैं, इसलिए उसमें अलंकार है, उसमें रस है। अभी जैसे वीर रस का वर्णन हो रहा है,

कि कैसे राजा लोग अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वीरता का वर्णन है। जैसे जब राजा लोग हार जाते हैं तो उसमें कैसे हास्य रस है, तो रसों का वर्णन है। अलंकारों का वर्णन हम जगह जगह बता रहे हैं, कहीं उत्प्रेक्षा है, कहीं रूपक है, कहीं उपमा है, कहीं अनुप्रास है, तरह तरह के अलंकारों के माध्यम से वे अपनी कविता को और सुंदर ढंग से हमारे सामने रख रहे हैं, जो हमारे चित्त को आकर्षित करती है। लेकिन इन सब के अतिरिक्त जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि जहाँ भी उनको लगता है, जहाँ भी कोई अवसर मिलता है, तुलसीदास जी नीति वचनों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी का जो प्रयोजन था रामचरितमानस लिखने का, वो कथा राम जी की करना तो था ही, वो तो मुख्य प्रयोजन है, और भक्ति रस का वर्णन करना, सबके मन में श्री राम की भक्ति को प्रतिष्ठित करना, ये तो उनका प्रयोज्य था ही, ये तो उनका उद्देश्य था ही। लेकिन इसके अतिरिक्त वे हमें नैतिक शिक्षा भी देना चाहते थे, और इसीलिए रामचरितमानस नीति वचनों का एक अद्भुत आगार है, एक जैसे कह सकते हैं एक विश्वकोश बन गया है। जीवन में जहाँ भी हमें किसी नीति की आवश्यकता है, जहाँ भी जीवन में हमें जानना है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ रामचरितमानस हमारा पथ प्रदर्शन करता है। अभी तुलसीदास जी ने जब धनुष का वर्णन किया कि धनुष कैसे अनेक राजाओं के उठाने से भी नहीं उठता, तो उन्होंने एक नीति वचन का प्रयोग कर दिया कि जैसे सती स्त्री कामी पुरुष के वचनों से भी विचलित नहीं होती। ये कह के उन्होंने क्या बताना चाहा कि सती स्त्री का चरित्र कितना श्रेष्ठ होता है, उसे अपने ऊपर इतना विश्वास होता है, अपने चरित्र पर इतना विश्वास होता है, अपने ऊपर इतनी दृढ़ता होती है कि कोई कुछ भी कह ले वो स्त्री विचलित नहीं होती। और ये कह करके सती स्त्री के चरित्र का गान करना चाहा है और बताना चाहा है कि जो स्त्रियां हैं वो तभी शोभा पाती हैं यदि वो सतीत्व का निर्वाह करें, यानी उनका चरित्र श्रेष्ठ हो। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि राजा लोग आते हैं, धनुष उठा नहीं पाते, और सब लोग हंसी उड़ाने लगते हैं। जब राजा लोग धनुष उठाने की कोशिश करते हैं, उठा नहीं पाते हैं, तो अन्य लोग जो वहाँ उपस्थित हैं, जो देखने आए हैं वो लोग, या जो अन्य राजा हैं जो विवेकी हैं, जिन्होंने सोच लिया कि हम नहीं जाएंगे उठाने, हम तो आए हैं, हम देखेंगे और फिर सीता जी का विवाह देख कर हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ राजा विवेक का प्रयोग करके आते ही नहीं है कि हमारी हंसी ना कोई उड़ाए, लेकिन जो बहुत ही अहंकारी और अभिमानी राजा हैं वे जब आते हैं और असफल हो जाते हैं तो अन्य लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, हंसने लगते हैं कि देखो आए थे यूँ कि बस उठा ही लेंगे और देखो कुछ नहीं कर सके, तो सब मजाक उड़ाते हैं। तो इस बात को बताने के लिए तुलसीदास जी ने एक सुंदर नीति वचन का प्रयोग किया है, अद्भुत है। वो कहते हैं जैसे बिनु विराग सन्यासी, ये कह के तुलसीदास जी आगे बढ़ सकते थे कि सब निप भय जोग उपहासी, कि सब राजा उपहास के योग्य हो गए, यानी सब राजाओं पर लोग कटाक्ष करने लगे, सब राजाओं पर लोग हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे, बस पर्याप्त था। लेकिन चूंकि तुलसीदास जी कवि भी हैं और तुलसीदास जी हम सबको नीति शिक्षा भी देना चाहते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं, जैसे बिनु विराग सन्यासी। बहुत सुंदर है, जैसे सन्यासी तो कोई बन जाए लेकिन वैराग्य उसके जीवन में नहीं आए। आइए इसे समझें। कोई व्यक्ति सन्यासी बनना चाहता है तो बहुत आसान तरीका है कि मूड़ मुड़ा लो, दाढ़ी बढ़ा लो, ऊपर से अपना जो आकार प्रकार है और ऊपर से जो पहनावा है वो तो बन जाए किसी साधु का, किसी वैरागी का, किसी सन्यासी का, जोगिया वस्त्र धारण कर लिए, हाथ में कमंडल ले लिया, गले में माला पहन ली रुद्राक्ष की, तो लगेगा दूर से देख करके कि तो बहुत बड़ा कोई सन्यासी है,

कोई बहुत बड़ा यति आ रहा है, कोई बहुत बड़ा महात्मा आ रहा है, लेकिन सन्यासी बनने के लिए जो असली शर्त है वो क्या है? वस्त्र तो बाहरी रूप सज्जा है, वो तो केवल दूसरों को दिखाने के लिए है, लेकिन अंदर से जो परिवर्तन आना चाहिए, जिसके कारण कोई सन्यासी बनता है, जिसके कारण कोई बैरागी बनता है, वो क्या है? वो है अंदर से सन्यास आना, सन्यास की भावना अंदर से आना, यानी बैरागी होना, वैराग्य धारण करना। वैराग्य का मतलब संसार के प्रति विरक्ति। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सन्यासी तो बन जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, हाथ में भिक्षा पात्र ले लिया, योगिया वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन अंदर से संसार से आसक्त हैं। तो ऐसे लोग असली सन्यासी नहीं कहे जा सकते। तो कह रहे हैं जैसे यदि वैराग्य जीवन में नहीं आया है और कोई मनुष्य सन्यासी बन जाए तो क्या होता है? उपहास का पात्र बनता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो बना था, दूर से देखने से तो लग रहा है, ऊपर से तो देखने से लग रहा है कि ये सन्यासी है, लेकिन इसका आचरण तो बिल्कुल एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति की तरह है, तो ये लोगों को ठग रहा है। तो जैसे सन्यासी के लिए बहुत आवश्यक है, अनिवार्य शर्त है कि उसके जीवन में वैराग्य आए, और ना आने पर जिस प्रकार वह व्यक्ति उपहास का पात्र बनता है, उसी प्रकार ये राजा भी उपहास के पात्र बने हैं, यानी सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और परिणाम क्या हो रहा? एक तो मजाक उड़ा रहे हैं लोग, उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, और दूसरा कीर्ति, विजय और वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। तुलसीदास जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कितना सुंदर लिखा है कि ये राजा पहले जब आए थे तो कुछ ले के आए थे। क्या ले के आए थे? आशा लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए थे? एक सम्मान लेके आए थे, क्योंकि राजा ने सबका सम्मान किया था, भाई बड़े बड़े राजा आए हैं। तो एक आशा, एक विश्वास और एक मान सम्मान लेकर के आए थे, लेकिन जब जा रहे हैं अब वापस धनुष के पास से, तो क्या लेकर के जा रहे हैं? मानो अपनी कीर्ति भी उन्होंने हार दी, अपनी विजय भी हार दी, अपनी वीरता भी हार दी, सब कुछ हार के जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें वीर कौन कहेगा? एक धनुष नहीं उठा पाए तुम और अपने को पराक्रमी बोलते हो, तो अब तो तुम वीर कहलाने के योग्य नहीं हो। तुम बहुत बड़े, तुमने बड़े बड़े राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, तुम बोलते थे कि मैं तो अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त करके मैं तो एक बहुत बड़ा राजा सम्राट बन गया हूँ, तो आज मानो उस विजय को भी खो दिया। आप कौन आपको विजयी मानेगा? कौन आपको श्रेष्ठ मानेगा? और कीर्ति जो कमाई थी, जो यश कमाया था, वो यश भी आज धूमिल पड़ गया। तो इस तरह वे सब अपनी सारी पूंजी गवा करके जा रहे हैं। और आगे की चौपाइयों को अगले कार्यक्रम में आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। आइए एक भजन सुने और उसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम दें। धन्यवाद, नमस्कार।

10:52 हुए हैं। कहते हैं भोले जी का मार्ग आसान नहीं होता, पर जो उनके चरणों में चल पड़ता है उसका हर अंधेरा रोशनी बन जाता है। और महादेव की भक्ति केवल पूजा नहीं, अपने अंदर के अहंकार को शांत करने का मार्ग है। इसी के साथ श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन।

0: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स के साथ संक्षिप्त समाचार के साथ स्टूडियो में आ गया से मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। हीरामन जवाहिर फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के नए चीफ ऑपरेटिंग अफसर नियुक्त किए गए हैं। वे आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। एफएससी के अनुसार उनका वित्तीय रेगुलेशंस क्षेत्र में 20 सालों से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर अनुभव रहा है। उन्होंने मॉरिशस सहित अमेरिका, यूके, भारत और कैमान द्वीपों में काम किया है। गन्ने की कटनी की शुरुआत के संदर्भ में कल पंजाब के अमातू के कोविल में आयोजित वार्षिक प्रार्थनाओं में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राव

0: गुलाम निभावी राष्ट्रीय बजट की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो उनके अनुसार मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बीच जिम्मेदारी, सॉलिडारिटी और आर्थिक दक्षता पर आधारित रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एकता ही मौजूदा चुनौतियां पार करने और देश को प्रगति की राह पर अग्रसर करने का एकमात्र साधन है। मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा स्वीकृत नई फाइनेंसिंग में भारी गिरावट आई है। एडीबी की 2025 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल पारित किए गए नए वित्त पोषण में मॉरिशस को मात्र 12 मिलियन रुपए से थोड़ा ज्यादा ही प्राप्त हुआ है। ये पिछले कुछ सालों की तुलना में बहुत कम है, जब ये राशि कई बिलियन रुपए तक पहुंची थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज तड़के सुबह दक्षिणी फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.8 अंकों और गहराई 35 किलोमीटर की मापी गई। सुनामी की चेतावनियां जारी की गई हैं। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। जगदम्बी रोड गुडलैंड्स में 53 साल के 53 जनाब मोहम्मद फैजल गुलाब खां, जनाब मोहम्मद फैजल गुलाब खां जो ओंगी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के दो बजे इनके मकान जगदम्बी रोड गुडलैंड से उठाकर दफनाने के लिए बेलमो गुडलैंड्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio, Dot TV, NBC Radio, Dot TV, Radio Mauritius. 800 kHz पर ये है Radio Mauritius.
2: शम्मे फरोजा
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دے اتنی لذت اپنے سجدوں میں اے اللہ دے اتنی لذت اپنے سجدوں میں اے اللہ इस बेवफा दुनिया को याद करने का वक्त ही ना मिले। मौज़ सामेईन, उम्मीद है आप बफ़ज़ले खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस में हर पीर की तरह आप समाअत फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम्द, बयान और नातो सलाम। ताखीर ना करते हुए आइए आगाज करते हैं कलाम इलाही से। आऊज़ बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम।
4: बिस

सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ पाक परवरदिगार, हमें रोज़ाना तिलावत क़ुरान पाक की तौफीक अता फ़रमा, आमीन। सुकून अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। सुकून हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला की अतात करें। जब हमें महसूस हो कि हमें ज़िक्र खुदा से

0: आप जहाँ से भी हमारा साथ दे रहे हैं, हम आप सबका आज की इस मजलिस में दिली खैर मकदम करते हैं। मौजूद सामेईन, अब आप समात फरमाएंगे मुबल्लिगे दावत इस्लामी कारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान। मौजू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औसाफ़। आइए समात फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, मेरा जो उम्मती मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उसके लिए हरम की नेकियों में से 10 नेकियां लिखी जाती हैं। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हरम की नेकियां क्या हैं? फरमाया, हरम में एक नेकी 700 नेकियों के बराबर है। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 120। तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक इब्राहीम तमाम अच्छी खसलतों के मालिक या एक पेशवा, इसके फरमा बरदार, अल्लाह के फरमा बरदार और हर बातिल से जुदा थे और वो मुशरिक ना थे। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अभी हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातु वसलाम की यादों से भरपूर मुकद्दस अय्याम जारी व सारी हैं। हज का महीना है और हज के महीने में काबे शरीफ, मीना, अरफात, सफ़ा मरवा में भी हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातु वसलाम की यादें हैं। काबा शरीफ आपने तामीर फरमाया, सफ़ा मरवा को आपकी जोजा मोहतरमा हज़रत हाजरा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा की निस्बत से बरकत मिली। जमरात, जहां हाजी शैतान को कंकर मारते हैं, ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की सुन्नत है। फिर कुर्बानी के अय्याम, प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, यानी कुर्बानी तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातु सलाम की सुन्नत है। गर्ज़ इन मुबारक और मुकद्दस अय्याम में हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातु सलाम की यादें ही यादें हैं। इसी मुनासिबत से आज हम हज़रत सैयदुना इब्राहीम अलैहि सलातु सलाम का ज़िक्र खैर करने सुनने की सआदत हासिल करेंगे। हमने शुरू में पारा नंबर 14 सूरह नहल की आयत नंबर 120 सुनने की सआदत हासिल की। इस मकाम की 3 आयात हैं। इन तीनों में आप अलैहि सलाम का जिक्र खैर है। इरशाद होता है, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा। तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक इब्राहीम तमाम अच्छी खसलतों के मालिक या एक पेशवा, अल्लाह के फरमा बरदार और हर बातिल से जुदा थे और वो मुशरिक ना थे। इन इसके एहसानात पर शुक्र करने वाले। ये आप अलैहि सलाम के 4 आला औसाफ बयान हुए हैं। इसके बाद आप पर होने वाले इनामात इलाहिया का बयान हुआ। फरमाए, इजतबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम व आतैनाहु फिद दुनिया हसना व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। आयत नंबर सूरह नहल 121 और 122। पहले की जो हमने आयत सुनी वो 120 और 121। तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। अल्लाह ने इसे चुन लिया और इसे सीधी

रास्ते की तरफ हिदायत दी और हमने इसे दुनिया में भलाई दी और बेशक वो आखिरत में क़ुर्ब पाने वाले बंदों में से होगा। इन आयात का ख़ुलासा यह है कि नंबर एक, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख़ुद अपनी ज़ात में एक पूरी उम्मत हैं। नंबर दो, अल्लाह पाक के बहुत फरमाबरदार हैं। नंबर तीन, हर बातिल से जुदा रहने वाले हैं। नंबर चार, नेमतों का खूब शुक्र करने वाले हैं। चूँकि आप ऐसी आला शानों वाले हैं तो अल्लाह पाक ने आपको चुन लिया, अपना मुकर्रब और बरगजीदा बनाया, सीधे रस्ते का निशान और हक का मेयार बनाया, दुनिया में आपको भलाइयाँ अता फरमाई और आखिरत में नेकियों और बुलंद शानों वालों में कर दिया। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन गिराम, इस मकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चार औसाफ इरशाद हुए हैं। आज हमने इन्हीं चार औसाफ को समझना, इनसे सबक सीखना है। पहला वस्फ, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन। तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, बेशक इब्राहीम तमाम अच्छी खसलतों के मालिक हैं। ये बड़ा कमाल का वस्फ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ उम्मा इरशाद हुआ। लुगत के हिसाब से देखें तो लफ्ज़ उम्मत एक शख्स के लिए नहीं बोला जाता। देखिए, मैं एक फ़र्द हूँ तो मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नहीं हूँ बल्कि उम्मती हूँ। पता चला लफ्ज़ उम्मत एक से ज़्यादा अफराद पर बोला जाएगा। सवाल यह है कि यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उम्मत क्यों कहा गया? उलमाए कराम ने इसके दो मतलब बताए। पहला मतलब ये कि यानी आप अलैहिस्सलाम इतने आला औसाफ व कमालात के मालिक हैं कि गोया आप एक फ़र्द यानी एक इंसान नहीं बल्कि अकेले ही हज़ारों अफराद से आला हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ हर बंदे के अंदर हर खूबी हो ऐसा नहीं हो सकता। किसी के पास इल्म होता है, इबादत का ज़ौक़ नहीं होता, कोई इबादत गुजार होता है, साहिब इल्म नहीं होता। किसी के अंदर नरमी तो होती है मगर उसे मिलने जुलने का ढंग नहीं आता। किसी को मिलने जुलने का ढंग आता है मगर हमदर्दी नहीं होती। यूँ हर बंदे की अलग अलग खूबियाँ होती हैं। अगर लाख बंदों की लाखों खूबियों को एक ही बंदे के अंदर जमा कर दिया जाए तो हम कह सकेंगे कि यह अकेला नहीं, ये अकेला ही बंदा लाखों के बराबर है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान व आज़मत को हम देखते हैं तो चूँकि आप अकेले ही लाखों खूबियों के मालिक थे, इल्म में भी आप कामिल व अकमल, इबादत और रियाजत में भी आप कामिल व अकमल, हिल्म आपका बेमिसाल, मोहब्बत इलाही आपकी बेमिसाल, इताअत व फर्मा बरदारी में आप बेमिसाल, यूँ लाखों खूबियाँ आपके अंदर जमा हो गई हैं। लिहाजा फरमाया, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, बेशक इब्राहीम तमाम अच्छी खसलतों के मालिक, अच्छाइयों के जामिए बनी हैं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ से हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि हमें हर तरह की खूबियाँ अपने अंदर उजागर करनी चाहिए। ज़ाहिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम दर्जा तो हम किसी सूरत हो ही नहीं सकते, अलबत्ता आपका फैज़ान पाकर आपकी सीरत पर तो चल सकते हैं। हमारे यहाँ कितने लोग कहते सुनाई देते हैं, मेरी ज़बान थोड़ी कड़वी है मगर दिल का बहुत अच्छा हूँ। अरे भाई, ज़बान क्यों कड़वी रखी हुई है, इसे भी मीठा बना लीजिए। कितने लोग कहते हैं, माफ़ कीजिएगा मैं गुस्से का ज़रा तेज़ हूँ। तो भाई, आप क्यों तेज़ हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल क्यों नहीं करते? कई लोग कहते हैं, बाकी तो सब ठीक है बस मेरे अंदर इस्तिकामत यानी पंक्चुअलिटी नहीं है। तो भाई, इस्तिकामत भी अपना लीजिए। गर्ज़ अच्छाइयों के मामले में ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम अधूरे यानी अनकम्प्लीट ना रहें। हर अच्छाई से कुछ ना कुछ हिस्सा हमें ले ही लेना चाहिए। आपने देखा होगा दुकान जिसको हम लाबुचिक कहते हैं, यहाँ पर उर्दू में परचून की दुकान कहा जाता है, से दो चार ग्राहक खाली वापस चले जाएं। मसलन ग्राहक ने कहा, फला चीज़ दे दीजिए दुकानदार, पर वो चीज़ उसके पास मौजूद ना हो, तो वो दुकानदार जल्दी से अपनी डायरी पर वो चीज़ नोट कर लेता है। क्यों? इसलिए ताकि वो चीज़ मंगवा ले और आइंदा जो ग्राहक आएगा, जो क्लाइंट आएगा, खाली हाथ ना जाए। बल्कि आज कल तो मार्ट सिस्टम है यानी सुपरमार्केट है। मार्ट आम तौर पर आम मार्केट में किरयाने की दुकान अलग होती हैं, कपड़े की अलग होती हैं, क्रॉकरी की अलग होती हैं। जिसने क्रॉकरी का सामान लेना है वो अलग जगह पर जाता है, जिसने कपड़े का सामान लेना है वो अलग जगह पर जाता है, और जिसने जो है वो घर का राशन वगैरह लेना है वो अलग जगह जाता है। लेकिन अब जो है वो एक ही मार्ट में लोगों ने इससे सबक सीखा और मार्ट बना दिए।

चीजें एक ही छत के नीचे रख ली, यानी कि सुपरमार्केट। जिसने जो लेना है इसी एक मार्केट पर आए, सब कुछ मिलेगा। ये इसीलिए है ना कि कोई भी ग्राहक मिस ना हो। तो हम आखिरत के मामले में भी यही अंदाज क्यों ना अपनाएं। आखिरत के दिन ना जाने कौन सा सौदा काम आ जाए। हो सकता है नमाज के सख्त के बख्शिश हो जाए, मुमकिन है रोज़े कबूल हो जाए, हो सकता है तिलावत काम आ जाए, हो सकता है हमदर्दी काम आ जाए। चुनाचे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्हें वलियों के सरदार कहा जाता है, आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके पास नेकियों का कितना ज़खीरा होगा। आपको वफात के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, क्या गुजरी? फरमाया, बाकी सब अपनी जगह, अलबत्ता रात को दो रकत तहज्जुद काम आई, इसके सदक़े बख्शिश हो गई। सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह। देखिए अल्लाह पाक ना जाने किस अमल पर राज़ी हो जाए। हर लिहाजा हर किस्म की नेकियां ही अपने आमाल नामे में जमा कराते रहना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीब ख्वाब। रसूल ज़ीशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा किराम अली मुरिदवान को अपना ख्वाब बयान किया। ये याद रखिए कि अम्बिया किराम अलैहि सलाम के ख्वाब भी वही होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी रअयतुल बारिहता अजबा, रात मैंने अजीब ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? फरमाया, रअयतु रजुलम मिन उम्मती कदह ता वाशतहु मलाइकत फजाअहु वुदूहु फस्तनकज़हु मिन दालिक। मैंने अपना एक उम्मती देखा, अज़ाब के फ़रिश्ते इसे डरा रहे थे, इतने में इसका वुजू आया और इसे फ़रिश्तों से बचा लिया। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। फिर इरशाद फरमाया, वरअयतु रजुलन मिन उम्मती यलहसु अतशम मिनल अतशी फजाअहु सियामु रमदाना फसकाहु। एक उम्मती को देखा प्यास से बिलबिला रहा था, यानी उसको बहुत प्यास लग रही थी, इतने में रमज़ान करीम का रोज़ा आया और उसे पानी पिला दिया। मजीद फरमाया, एक उम्मती को देखा इसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, इतने में इसका हज और उम्रा आया और इसे अंधेरे से निकाल लिया। फिर फरमाया, एक उम्मती को देखा मलकुल मौत अलैहि सलाम इसकी रूह कब्ज़ करने आए हैं, इतने में इसका माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना, नेक सुलूक करना काम आ गया और इसको मौत से बचा लिया, यानी इसकी उम्र लंबी कर दी गई। फिर फरमाया, एक उम्मती को देखा वो अपने हाथों के ज़रिए आग खुद से दूर कर रहा था, इतने में इसका सदका आया और इस पर साया कर लिया, इसे आग से बचा लिया। फिर फरमाया, एक उम्मती को देखा अजाब के फरिश्ते इसके पास आ गए थे, इतने में इसका नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना आया और इसे अजाब से बचा लिया। फिर फरमाया, एक उम्मती को देखा वो जहन्नम में गिरने वाला ही था, इतने में इसके खौफ खुदा से बहने वाले आंसू आए और इसे आग से बचा लिया। एक उम्मती को देखा वह पुलिस सिरात पर घसीट रहा था, कभी पेट के बल गिरता कभी खड़ा हो जाता, इतने में इसका मुझ पर दुरूद पढ़ा हुआ दुरूद आया और इसे सहारा देकर पुलिस सिरात पार करवा दिया। एक उम्मती को देखा वो जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि दरवाजे बंद कर दिए गए, इतने में इसका कलमा तैयबा पढ़ने की नीयत नेकी और इसे आई और इसे हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करा दिया। सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर फरमाइए, किसी को उसकी नमाजों ने बचा लिया, किसी को वुजू ने बचा लिया, किसी को माँ बाप के साथ उसने सलूक करने ने बचा लिया, किसी को सदका खैरात ने निजात दिला दी, किसी को खौफ खुदा से रोना काम आ गया। अब आप सोचिए, अगर हमारे पास ये सारी ही नेकियाँ मौजूद हों, ये सारी ही नेक आमाल के किए हों, कोई ना कोई कबूल हो ही जाएगा, किसी ना किसी नेकी के सबब तो बख्शिश हो ही जाएगी। इसलिए हमें नेकियाँ चाहिए कि हम नेकियाँ जो भी कर सके, हमसे हो सके हम करें, बस आमाल नामे में जमा करते चले जाएं। हदीस पाक में है, किसी नेकी को कम मत समझो। यानी बाज़ लोगों का जहन बनता है कि बल्कि शैतान बना देता है, नमाज पढ़ ली ना काफ़ी है, अब तिलावत ना भी की तो खैर है,
जुम्मा पढ़ लिया ना, आखिर में पढ़े जाने वाले सलातो सलाम में शिरकत ना भी हुई तो

0: खैर है, नमाज रोज़ा तो कर ही लेता हूँ, अब दीनी जमात में शिरकत ना भी हुई तो कोई बात नहीं, खैर है, ख़ुद को नेकियाँ करता ही हूँ, दूसरों को नेकी की दावत ना भी दी तो खैर है। काफ़िले में सफ़र की दावत दी जाए तो बाज़ दफ़ा जवाब मिलता है, बस मौलवी साहब नमाज रोज़ा कर लेते हैं, अल्लाह पाक यही कबूल कर ले तो काफ़ी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नेकी को कम मत समझो, हर तरह की नेकियों से हिस्सा लेते चले जाओ। आगे मिसाल देखिए, कैसी प्यारी फरमाई, ख्वा अपने मुसलमान भाई से खुश मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलना ही हो, यानी अपने मुसलमान भाई से मुस्कुराकर मिलना जैसे अमूमन ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, फरमाए ये भी एक नेकी है, इसे कम मत समझो। हमारे यहाँ अमूमन मस्जिदों में नमाज के बाद लोग वापस में सलाम करते हैं, हाथ मिलाते हैं, खुसूसन इमाम साहब के साथ हाथ मिलाया जाता है, बाज़ लोग जल्दी जल्दी उठकर निकल जाते हैं, मुसलमानों के साथ सलाम नहीं करते। भाईजान मौका जो मिल रहा है क्यों नेकी छोड़ते हो, सलाम कर लीजिए, मुस्कुरा कर मिलिए, ये भी नेकी है, क्या खबर यही नेकी कबूल हो जाए और बख्शिश का ज़रिया बन जाए। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, बेशक इब्राहिम तमाम अच्छी खसलतों के मालिक हैं, आप अलैहिस्सलाम हर अच्छाइयों और ख़ूबियों में कमाल रखते थे, हमें भी चाहिए कि हम हर नेकी हर अच्छाई से अपना हिस्सा लें, आमाल नामे में हर किस्म की नेकियां जमा करते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रोज़े क़यामत काम आएंगी। लफ्ज़ उम्मत का दूसरा माना, साहबी रसूल हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला नो, आपने लफ्ज़ उम्मत का एक और माना बयान फरमाया, फरमाते हैं उम्मा यानी लफ्ज़ उम्मत जब एक शख्स पर बोला जाए तो ऐसे शख्स को कहते हैं जो लोगों को भलाई की बातें सिखाने वाला हो। इस मायने के मुताबिक आयत का मतलब बनेगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नेकी की दावत देने वाले, भलाई की बातें बताने वाले हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला हमें भी खूब खूब नेक आमाल करते रहने की तौफीक अता फरमाए, हमें नेक आमाल करते रहने चाहिए और इन पर अमल भी करते रहें, नेकियां करें, नेकियां फैलाएं, खुद बुराइयों से बचें, दूसरों को बचाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल्ला ना जाने कौन सी नेकी हमारे काम आ जाए क़यामत के दिन और हमारा बेड़ा पार हो जाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबीउल अमीन।
1: अभी आप समाअत फरमा रहे थे मुबल्लिगे दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा सदक़ा अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सदक़ा अफजल तरीन सदक़ा है जो ग़रीब आदमी अपनी कमाई में से करे और पहले उन पर खर्च करे जिसका वो ज़िम्मेदार हो, यानी अपनी बीवी बच्चों पर। बहवाला सुनन अबी दाऊद।

आइए सदक़े की हकीकत के हवाले से एक और हदीस समात फरमाइए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान बंदा कोई दरख्त लगाए या खेती करे तो उस दरख्त या उस खेती में से जो फल या जो दाना कोई इंसान या कोई परिंदा या कोई चौपाया खाएगा, वो उस दरख्त या खेती वाले बंदे के लिए सदक़े और अजर सवाब का जरिया होगा। बहवाला सही बुखारी मुस्लिम शरीफ।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ए पाक परवरदिगार, तू ही हमारा मालिक है, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। ए मालिक, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिसेस अंजू ने टेक्निक में हमारा साथ दिया, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।

0: कदे मिधा ता ता कदे मिधा ता ता कदे मिधा ता किट धा ता ता किट धन धा ता किट धा तेरे किट तक धा ता कदे मिधा ता ता कदे मिधा ता ता कदे मिधा ता किट धा ता ता किट धन धा ता किट धा तेरे किट तक धा ता कदे मिधा ता ता कदे मिधा ता ता कदे मिधा
1: எமது நிகழ்ச்சியில் முதலில் கணபதியை போற்றும் பக்திமிகும் ஒரு பாடலோடு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறது.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: समय से उच्च बपुना पूना भी
2: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

鬼故里又会下客机喜欢视频噶，听众朋友大家好，欢迎收听客家风情话。下面就让我再来开始今日的节目。

好听吗？好听，点赞、评论、关注、收藏、转发、弹幕支持一下，谢谢！别忘了强烈推荐哦！感谢观看，欢迎常来听歌，下个视频再见。

唐志朋友今年的客家风情花就到了同大家告别了，多谢大家的收听，祝大家度过一个愉快一下，下次节目我们再会。

घड़ी मिला लीजिए, समय दिन के ठीक 2:30 बजे है। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम वाट्स 19 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा आज का ये प्रसारण जारी हो रहा है। जहां कहीं से भी आप साथ दे रहे हैं, तहे दिल से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना। आशा करते हैं आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्फूर्ति भरा हो, और बेशक क्यों ना हो, आज का दिन है पहला दिन सप्ताह का, तो मन लगाकर काम करने का दिन, मंडे का दिन। तो चलिए आज के इस दिन में बहुत ही बेहतरीन गीतों के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम सजाएंगे। बिल्कुल 4 बजे तक मैं हूँ रत्ना आपके साथ, और इस कार्यक्रम में अगर आपको मन है किसी गीत के सुनने की, तो ज़रूर आप हमें कॉल कर सकते हैं 402-808-85 पर, 402-808-85। और इसी के साथ मैसेज भी आप हमें भेज सकते हैं 5251705। चलिए इसी के साथ 90s के ज़माने का ये गाना, फिल्म थी दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे, और शाहरुख खान साथ ही साथ काजोल की बहुत ही लाजवाब जोड़ी। और इस गीत में बिल्कुल यूरेल की ट्रिप पर गए हुए ये दो जन कहाँ खो जाते हैं। आइए इसी गीत के साथ एक लाजवाब शुरुआत करते हैं।

आपकी पसंद कार्यक्रम और इसी के साथ चलिए यहाँ पर स्वस्ति जी हमारे साथ काटरबोन से जुड़ चुकी हैं और आज अपने पापा को बहुत ज्यादा मिस कर रही हैं। 15 वर्ष हो चुके हैं, आज उनके पापा की बरसी है। सभी बहादुर परिवार की ओर से हम ये चलाएंगे गाना और इसी गीत की फरमाइश कर रहा है सभी बहादुर परिवार और खासकर स्वर्गीय नरेंद्र सिंह बहादुर की याद में, खासकर उनकी पत्नी की ओर से और उनकी प्यारी बेटी स्वस्ति की ओर से, उनके सभी बेटी बेटे दामाद बहुओं की ओर से, नाती पोतों की ओर से। ये गीत है फिल्म तकदीर से लिया हुआ, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

जब दूर कोई चला जाता है तो बहुत ज़्यादा याद आता है, इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी जब तक है गले लगा लो, प्यार कर लो, माफ़ कर लो, माफ़ी मांग लो। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं इस अगले गीत के साथ। यहाँ पर गीता जी

हमारे साथ जुड़ चुकी है एनुअल फॉन्स से और अगले गीत की फरमाइश कर रही हैं। और ये प्यारा सा गाना आपके नाम हम करते चलेंगे, इस फिल्म में नजर आए थे दिलीप कुमार साहब, और यही गीत उनके प्यारे बेटे शिवाजी, बहू है श्वेता बाई, बेटी सुधा बाई, साथ है बिजवी बाई, दिया बाई और प्यारा सा मल्हार।

0: लीडर का ये गाना 1964 के दौर की ये मूवी रही। दिलीप कुमार साहब और वैजयंती माला इस फिल्म में नजर आए थे। और इसी के साथ चलिए लाजवाब कार्यक्रम आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ सजा रहे हैं हम
1: आपकी पसंद।
0: और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीमान कुलेन जी नुवेल फ्रांस से, और उन्होंने गीत मांगा है फिल्म अनोखी अदा से लिया हुआ गीत। और ये गाना वे करना चाहेंगे उनके सभी दोस्तों के नाम जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और साथ ही साथ उनके सभी परिवार के लिए। तो आइए सुनते हैं ये गीत मुकेश साहब की आवाज़ में, फिल्म अनोखी अदा।

0: आपकी पसंद।
1: झूमते गाते चले चलो, जिंदगी बस यही फसाना है कि हमेशा एक दूसरे का साथ बहुत ही प्यार से निभाना है। गिले शिकवों को दूर कर कर कहते हैं ना कि बहुत ही प्यार से साथ निभाइए। और इसी के साथ आइए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। और ये जो अगला गाना है, श्यामा जी हमेशा बढ़िया बढ़िया गाने सिलेक्ट करके लाती हैं। श्यामा रघुनंदन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गाँव गोब से। उनके सभी परिवार रघुनंदन परिवार के नाम करेंगे ये अगला गाना। और कहती हैं कि भाई सीटी बजाने का भी एक दौर था, पर चलिए ये दौर धीरे धीरे करते हुए ये भी ख़त्म होता जा रहा है। आजकल कोई सीटियां मारता नहीं, पर ये भी गलत आदत है, हम तो यही कहेंगे। पर कुछ भी कह लो, वो ज़माना भी क्या लाजवाब था। चलिए इसी के साथ फिल्म अलविदा का ये गाना आपने चुना है चितलकर और लता जी की प्यारी सी आवाज़ में, और इस फिल्म में नज़र आए थे भगवान दादा। उनका सिग्नेचर स्टाइल हमेशा सभी को याद रह जाता है। और चलिए यही गाना आपकी दो प्यारी सखियां विश्वानी जी और वीना रामफल जी के नाम करेंगे। बहुत ही प्यारा सा गाना आपके प्यारे भैया जयप्रकाश, भाभी है नम्रता, केशव और युधीश साथ जुड़े हुए हैं, और जितने भी सुनने वाले दोस्त हैं साथ ही साथ आप गाना मांगती हैं नंदिनी उकलू के लिए। तो नंदिनी जी बहुत ही प्यार से इस गीत को आप भी इंजॉय कीजिए।

लाजवाब गीतों का ये कारवां आगे बढ़ाते हैं और ये गाना है फिल्म संगम से लिया हुआ बोल राधा बोल। ये गाना मांगती हैं मीराबाई दमिया मोडाल बिया से और उनके पति उनकी बेटी और दामाद के लिए और सभी पादिया परिवार और दमिया परिवार के नाम करते हैं ये गीत। वैसे आपको याद दिला दें यही गाना हमें जोड़ेगा सपहर के 3 बजे के समाचारों के साथ। बस जुड़े रहें, 3 बजे के समाचारों के बाद इस कार्यक्रम को ज़रूर जारी रखा जाएगा।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुपहर के ठीक 3 बज रहे हैं। आइए जुड़ते हैं 3 बजे के समाचारों के साथ।

0: नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। गंगा तालाब एक पवित्र स्थल है, आध्यात्म का प्रतीक। प्रतिदिन हजारों की संख्या में रोगी स्थल का दौरा करते हैं, लेकिन हाल में पेश आई कई घटनाओं के बाद अधिकारी अब इस प्रतीकात्मक स्थल पर दौरे के लिए संबंधित कदम उठाना चाहते हैं। इस तरह आज कला एवं संस्कृति मंत्री के नेतृत्व में स्थल का दौरा किया गया और उठाए जाने वाले कदमों पर बातचीत की गई। स्थलों के संरक्षण के लिए गाइडलाइंस दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। अभी ब्लू इकोनॉमी पर एक नया कानून तैयार किया जा रहा है और मॉरिशनों को महासागर की टिकाऊ संचालन के हक में अतिरिक्त रूप से समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल करने के वास्ते उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बात की घोषणा ब्लू इकोनॉमी मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल ने की। वे आज मॉरिशस ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट की ओर से इंस्टीट्यूट फ्रांसे दे मॉरिस के सहयोग से आयोजित विश्व महासागर दिवस से संबंधित गतिविधियों में भाग ले रहे थे। बैथॉन लाजेस के खिलाफ औपचारिक रूप से नए आरोप लगाए गए हैं। इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एजेंसी के इस निदेशक को सेल्वी थर्मल स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 2020 में डेनमार्क की एक कंपनी BMSC में एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। पूर्व आईका के महानिदेशक की ओर से इंटरमीडिएट अदालत के सामने दर्ज मामले को रद्द कर दिया गया और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन DPP के सुझावों के अंतर्गत एक नया मामला दर्ज किया जाएगा। विदेशी समाचारों की ओर बढ़ते हैं। फिलीपींस में आए भूकंप में मृतकों की संख्या कम से कम 32 तक पहुंच गई है। कई इमारतें ढह गईं और सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। 200 से अधिक लोग घायल बताए जाते हैं। इसके अलावा भूकंप के बाद दक्षिणी फिलीपींस में सरांगानी प्रदेश में भूस्खलन भी हुआ और भूटान में कल रात 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके सिलीगुड़ी समेत उत्तर बंगाल और कोलकाता में महसूस किए गए। झटकों से लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि देर रात तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं थी। और पैट्रिक ब्रियर नामक गायक एवं कलाकार को बलात्कार करने की कोशिश और यौन दुराचार के एक मामले के सिलसिले में आज पुलिस हिरासत में रखा गया है। कलाकार ने इन सभी का खंडन किया। 67 वर्षीय कलाकार को आज सुबह पेरिस में हिरासत में रखा गया। कुल 30 से अधिक महिलाओं ने पैट्रिक ब्रियर पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। कम से कम 12 शिकायत दर्ज की गई है। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में एक शोक समाचार। रॉयल रोड शमे ग्रेन्ये में 77 साल के 77 years old की बीबी फरीदा भातू, पैदाशी नाम फादौ, जो फरीदा नाम से भी जानी जाती थी, का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज रात सवा आठ बजे उनके बेटे जनाब रियाद भातू के घर रॉयल रोड शमे ग्रेन्ये से उठाकर दफनाने के लिए कौशालो शमे ग्रेन्ये का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8:15 PM। शोक में डूबे परिवार के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आपकी पसंद।
3: स्टूडियो की घड़ी में समय 3:03 हो चुके हैं। पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिश

की लहरों पर आपकी पसंद कार्यक्रम में और इस अभी से लेकर बिल्कुल 4 बजे तक हम हैं तैनात आप ही का साथ देने के लिए, आप ही के पसंदीदा गीतों को चलाने की पूरी कोशिश में हम लग चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप भी प्यार से हमारा साथ निभा ही रहे हैं और यहाँ पर हमारे इतने प्यारे प्यारे श्रोता प्यार भरे मैसेजेस भेज रहे हैं 5251-7005 और फ़ोन कॉल्स आते रहे हैं 4028085 तक। तो बस दिल थाम के बैठिए, ज़रूर आपकी फरमाइश को हम पूरा करेंगे। और आज की इस अगली फरमाइश को हम लेते हैं, मैं हूँ रत्ना बिल्कुल साथ दे रही हूँ आपका। चलिए यहाँ पर अगली फरमाइश जो है रेहाना की ओर से आई है और फिनिक्स से वे साथ दे रही हैं। तो लता मंगेशकर की आवाज़ में रखा हुआ ये गीत है 1964 के दौर का, तलत महमूद और लता जी की आवाज़ में।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए, ज्योति ही ज्योति है हमारे इस कार्यक्रम में आपकी वजह से। यहाँ पर ज्योति जी यूनियन पार्क से जुड़ी हुई हैं प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और अनुष्ठा के साथ। और यहाँ एक और हमारी प्यारी ज्योति जी हमेशा शातो बनागस से मैसेज फॉरवर्ड करती हैं, कहती हैं आशनी, रेखा, सुरेखा और सभी माधव परिवार के नाम ज़रूर चला दें हमारे लिए गाना। क्यों ना हो, आप दिलचस्पी से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो हम भी दिल लगा कर आपके लिए गाने बस ज़रूर बजवाते हैं यहाँ पर। चलिए, अगला जो गीत है आज उविशा जन्मदिन मना रही है 18।

वर्ष की हो चुकी है उविशा, और बहुत ही प्यारा सा अनोखा सा नाम है उविशा। पापा संजीव, मामा प्रीति, भाई है तनवीश और साथ है जेविन, अनुषा, जेनिष्ठा, चाचा है सुनील, चाचा सुदेश, चाचा संजय और चाची देविना और चाची रानी की ओर से और सभी तुलसी और दौराज परिवार की ओर से आपको बहुत सारा प्यार उविशा। चलिए, हमारी टीम की ओर से भी आपको ढेर सारी खुशियाँ और बस आगे आप बढ़ती रहें, जीवन में माता पिता का नाम रोशन करें और आगे बढ़ने के लिए ईश्वर आपकी सदा सहायता करे। इसी के साथ यहाँ पर गीता जी भी हमारे साथ पोफेया से जुड़ी हुई हैं और उनके प्यारे पति रोहित भी साथ है। आज बेहद खुश है क्योंकि आज बेटा राजीव अपना जन्मदिन मना रहा है अपनी पत्नी के साथ, और साथ है प्यारा सा तनीश, उनका प्यारा बेटा। दो भाई हैं विमल और कमल, दो नेफ्यू आदित्य, आरव, दो भाभियां और साथ ही साथ परी जानवी की ओर से ढेर सारा प्यार, और गीता जी की प्यारी बहन मीला जी भी न्यू ग्रोव से हमेशा साथ देती है। तो चलिए, हमारे पूरी टीम की ओर से आपको बहुत सारी बधाइयां, ढेर सारी खुशियां और बस आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपनों का प्यार पाएं। और इसी के साथ इस अगले गीत को हम करते हैं दिल से आपके नाम।

बस प्यार के दीपक हमेशा जलते रहें और यूं ही जीवन उजागर होता रहे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम में। समय बिल्कुल 3:15 बज चुके हैं और अगले गीत की फरमाइश आई है संगीता जी की ओर से। कात कुकु से वे हमारा साथ दे रही हैं और गंगा यमुना सरस्वती फिल्म का ये गीत उन्होंने मांगा है अपने पति विजय, बेटा है यशवीर, बेटी बड़ी बेटी काजल, दामाद है मिथुन, साथ है उनकी दो नातियां आरुषि और आरोही, छोटी बेटी है श्नीशा। सभी पातो परिवार एनएस फ्लोगों से और गीगा परिवार कात कुकु से।

आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, और इसी के साथ लाजवाब गीतों का ये सिलसिला हम जारी रखते हैं। यहाँ पर विश्वानी दुमन हमेशा की तरह साथ दे रही हैं वाकवा से, उनकी प्यारी बहनें इंदिरा और शारदा, नीला और प्रतिभा उनकी सखियाँ, और साथ है शोभा जी और गीता गजाधर के नाम करती हैं वे अगला गीत। और ये गाना है फिल्म दो खिलाड़ी से लिया गया, और इस प्यारे से गीत में नजर आए थे विनोद मेहरा साहब। तो आइए इस गीत को सुनते हैं।

बस ऐसे ठंड के मौसम में ऐसे प्यारे प्यारे गाने चलते रहे और दिलचस्प तरानों के साथ हम भी झूमते रहे, गाते रहे और यहाँ पर चलिए खुशियाँ मनाते हैं साथ मिलकर। आपकी पसंद कार्यक्रम में हमारी कोशिश जारी है आपके पसंदीदा गीत को ढूंढ ढूंढ कर लाने की और बस आपका दिल खुश करने की। तो चलिए यहाँ पर अगला गाना जो है हम चलाएंगे, ये है विश्नी का जन्मदिन। जी हाँ, विश्नी मना रही हैं अपना जन्मदिन अपनी मम्मी प्रीति, पापा है पापा कृष, बहन है उर्वशी, जीजू है विनेश और साथ है उनका प्यारा नेफ्यू केयान, नानी है गीता जी जो हैं क्योंकि फरसाइट और भाई आकाश चेतन। सभी मनसुख परिवार की ओर से उन्होंने मांगा है ये गाना। तो चलिए विश्नी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।

भाई लव स्टोरी कहो या लाइफ स्टोरी, प्यार होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। और चलिए इसी के साथ 3:30 बज चुके हैं, 4 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम जारी है। और सबसे ज्यादा प्यार करने वाला अगर कोई इंसान है तो वो है हमारी प्यारी माँ। और चलिए फिल्म माँ का ये गाना हम चलाने जा रहे हैं अनीता जी की पसंद पर। अनीता जी फ्लिक ऑफ लाक से इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं और ये है 1976 के दौर का गीत। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी इस फिल्म में नजर आए थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की।

इसी के साथ अगला गाना है विद्या जी की पसंद पर। विद्या जी इस वक्त यूनियन पार्क से हमारा साथ दे रही है और चाची कुमारी, बहन सती, साथ है सुरेखा जी और प्यारी बबीता जी, उनके नाम गाना उन्होंने मांगा है। फिल्म है मेरा नाम जोकर और इस फिल्म में नजर आए थे राज कपूर साहब। मुकेश साहब की आवाज़ में रखा हुआ ये प्यारा सा गाना उनके नाम करते हैं।

0: की पसंद।
1: जी हाँ, फोन करने के लिए नंबर है 4028085 और मैसेज करने के लिए नंबर है 5251705। पर कुछ लोग, कुछ हमारे लिसनर्स हैं, वो इतने उत्सुक हो जाते हैं कि मैसेज वाले नंबर पर आप कॉल करना शुरू कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम आपके कॉल्स अटेंड नहीं कर पाते हैं, उस पर आप प्लीज़ मैसेज भेज सकते हैं। और चलिए इसी के साथ सुनीता जी हमेशा की तरह घोंघोप से साथ दे रही हैं, और विमला जी, अमृता और वीना, उनकी तीन प्यारी बहन ने हरियाली और रास्ता गाना का ये जो टाइटल ट्रैक है ये सुनना चाहती हैं, तो बेशक आपका, आपकी ख्वाहिश को भी हम पूरा करेंगे। लता जी की प्यारी सी आवाज और फिल्म है ये हरियाली और रास्ता।

चलिए यही गाने के साथ हम नाम जोड़ना चाहेंगे नलिनी जोखन का, जो इस वक्त वाकवा से साथ दे रही हैं और आज जन्मदिन मना रही हैं। प्यारी गीता जी, बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयां आपको आपकी प्यारी बहन संगीता जी की ओर से, जो लाफलोगा से आपका नाम जोड़ रही हैं।

है भाई भाई, और इस गीत की फरमाइश करती हैं शकुंतला जी मोताइलोंग से अपनी प्यारी ननंद गायत्री के नाम नोवेल फॉन्स से साथ दे रही हैं, उनके बेटे हैं अजय, और ये फिल्म है भाई भाई। गीता दत्त की प्यारी सी मधोश सी आवाज़।

चलिए 3:50 और अगला गीत हम लेते हैं जल्दी जल्दी। ये है दिलीप जी की पसंद पर कुंगुमा से साथ दे रहे हैं संगीता, योगेश, कविता, कृष्णवी, मनीषा, लक्ष्य, आरव, इंदिरा और दानन के नाम। आवाज है किशोर कुमार साहब की मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

फिल्म है हीर रांझा और इस गीत की फरमाइश की है श्रद्धानंद जी ने और साथ है श्यामा जी फिल्म हीर रांझा का गीत लता जी की प्यारी सी आवाज़ में।

0: मिलो ना तुम।
1: चलिए इसी गीत में हम नाम जोड़ेंगे माया जी का, जो इस वक्त मोताय ब्लॉन्च से साथ दे रही हैं, साधना जी जो हैं गिव्या दे खयोल से।
0: हमें क्या
1: सभी जीवन परिवार के नाम जो है गिव्या दे खयोल और मोदाल बेया यूनियन पार्क से, और लागोजा साथ ही साथ दुबई के जीवन परिवार के नाम। इसी के साथ काटुबोन से सरिता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत बहुत प्यार आपको भी। और यहाँ बंधु परिवार भी हमारा साथ दे रहे हैं त्रियोले से।

0: तो श्रोताओ, इसी के साथ आखिरी गाना होगा सुदेवी जी के लिए, जो वाकवा से साथ दे रही हैं और त्रियोले के ललिता कुशल परिवार के नाम आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, मलेगा से है अनुषा, किरण, खेशनी, कृषय, प्रनीता और सभी राम रतन परिवार के नाम जोड़ेंगे। ये आखिरी गाना ये है फिल्म तेरी बाहों में, किशोर कुमार की प्यारी सी आवाज। और इसी गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर फुल स्टॉप लगाएंगे। वैसे आपको याद दिला दे, ठीक 4 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम प्रकाश, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण की जाएगी अंजू गर्बरन द्वारा। तो चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, आपसे फिर मुलाकात करेंगे शाम के 5:30 बजे बचपन ऐसा कार्यक्रम में।
1: कितनी मीठी है धुन,
0: तो बस साथ देते रहिएगा। शुभ संध्या आप सभी को।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: माथे की बिंदी विश्व भाषा बनी हमारी हिंदी। सुनिए पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश, प्रस्तुति श्रीमती अंजू गर्बरन की।
3: पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश में आप सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एक नहीं, दो अतिथि जुड़े हैं, ये सौभाग्य की बात है। हमारे साथ अर्नेस्ट फ्लोरेंस सरकारी पाठशाला की डेप्यूटी हेड टीचर हैं, श्री आराधना देवी राजवंती, जिन्हें बहन जी वंदना के नाम से बहुत से लोग जानते हैं, और जो छात्रा हैं उनकी, वे हैं सुश्री श्रेया चतुर्वेदी जी। तो आप दोनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के प्रकाश कार्यक्रम में। आपका हिंदी की ओर लगाव, जो आपसे बातचीत में हमने जाना कि आपके पिताजी भी डेप्यूटी हेड टीचर थे, और मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि ये दीमलाला मोहित जी की बिटिया हैं, और इनकी माँ भी बहन जी का कार्य करती रहीं, बैठकाओं में वे शिक्षण देती रहीं हिंदी से, इसीलिए इनका इतना लगाव हुआ। बहन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप बैठका में पढ़ती भी रहीं, पढ़ाती भी रहीं, पिताजी भी बहुत अच्छे अध्यापक रहे, फिर डेप्यूटी हेड टीचर बने, आप भी अब डेप्यूटी हेड टीचर हैं, कैसे आप बच्चों को कहानियों से प्रभावित कर सकते हैं? तो कहानी आपके लिए क्या है, ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि साहित्य में कहानी का बहुत बड़ा भाग रहता है, एक सुंदर विधा है, इस पर आपका क्या विचार है?
4: वैसे तो कहानी बच्चों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। दादा दादी, नाना नानी के मुंह से कहानी सुनने का अनुभव बच्चों के लिए सबसे अनोखा और अनमोल होता है
3: जी। बिल्कुल,
4: हाँ, यहाँ एक बहुत पुरानी प्रथा है। आज के डिजिटल युग और एकल परिवार के दौर में कहानी सुनना या सुनाना बहुत कम हो रहा है। आजकल कहानी की पुस्तक के बजाय हाथ में मोबाइल होता है
3: जी। बिल्कुल,
4: हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि कहानी के माध्यम से बच्चों को हिंदी पढ़ाना पसंद करवाऊं। तो इसीलिए कभी कभी कक्षा में बच्चों को कहानी सुनाती हूँ और बच्चों से भी कहानी सुनवाती हूँ।
3: तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक सुंदर विधा को लेकर हिंदी की ओर उनका आकर्षण बढ़ा रही हैं, और भाषा को प्रभावपूर्ण भी बनाया जा सकता है, क्योंकि कहानियाँ सुनने से बच्चों में, छात्रों में शब्दकोश का भंडार जो होता है वो बढ़ता है, और शब्दों का भंडार ना हो तो संवाद नहीं हो सकता,
4: हाँ,
3: है, और संवाद ना हो तो भाषा का प्रवाह नहीं बनता है। चलिए हम आपकी छात्रा से पूछते हैं कि आपको हिंदी पढ़ना कैसा लगता है?
5: बहुत अच्छा।
3: बहुत अच्छा, तो आपकी बहन जी ने जो कहानी आपको सुनाई थी वे हमें सुनाएं, और हमारे श्रोताओं के लिए भी वही कहानी प्रस्तुत करें।
5: आप सभी को मेरा नमन, मैं श्रेया चतुर्वेदी एनएस फ्लोरेंस सरकारी पाठशाला से आई हूँ। मैं छठी कक्षा में हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है

0: मेरा जीवन एवं मेरी हिंदी भाषा। आओ सुनिए यह कहानी, नाही राजा नाही रानी। मेरी कहानी है, छोटी सी थी, बहुत प्यारी थी, सबकी दुलारी थी। अगर माँ व्यस्त होती तो पिताजी खाना खिला देते, पिताजी दफ्तर में होते तो दादा दादी की गोद में मस्त चाव से भोजन का आनंद और चैन की नींद। दिनों के साथ साथ साल गुजरते गए, ना ही मोबाइल का जमाना, ना ही फेसबुक व्हाट्सएप का बोलबाला और ना ही गूगल मामू की उपस्थिति, बस पढ़ाई लिखाई में मस्त। वंदना आराधना करना, परमात्मा के प्रति अमर प्रेम, वही बोल गूंजते चारों ओर, प्राण जाए पर वचन न जाए। जीवन यात्रा की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मनचाहा स्वप्न पूरा हुआ, बन गई मैं हिंदी अध्यापिका। हिंदी शान मेरी, हिंदी जान मेरी। स्कूल का पहला दिन था, मैं चली सर धज कर। आंगन में प्रवेश करते ही मैंने सोचा कि कोने कोने से आवाज़ आएगी, नमस्ते बहन जी, नमस्ते अध्यापिका जी। पर अफसोस, कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरी नज़र चारों ओर दौड़ी, कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गई। छात्र छात्राएं सभी ओर हैं, हाँ पाठशाला ही तो है, नया जमाना है। चलो मैं ही पहले नमस्ते बोल देती हूँ। नमस्ते, नमस्ते बच्चों। अब जाकर उत्तर मिला, नमस्ते अध्यापिका जी। वह झलक सामने आ गई, जब हम छात्र थे अध्यापक को देखकर दौड़े दौड़े आना, हाथ जोड़कर प्रणाम बोलना, उनका बस्ता लेकर कक्षा में छोड़ने जाना। कितना बदल गया हालात। आगे बढ़ी सुंदर कक्षा। कक्षा में 25 बच्चे, पहला दिन टेढ़ी खीर था। धीरे धीरे दिन बीतता गया, 25 बच्चे मानो 25 अलग अलग दुनिया। घर पर हम दो, हमारे दो सास ससुर की सेवा, क्या मैं इतनी जिम्मेदारियां एक साथ संभाल पाऊंगी। तभी स्वर्गीय पिताजी के बोल याद आ गए, अगर तुम जैसी बेटी हो तो हर घर बिना दीपक के भी रोशन होगा। मुस्कुराते हुए खुद से बोली, चल हट पगली, पापा की परी हूँ मैं, उनका विश्वास सदा अमर रखूंगी। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। कक्षा में विनय से बोली, लिखो बेटा, काम पूरा करना है। उत्तर मिला, मुझे नहीं लिखना। आगे बढ़ी, सुनो बच्चों, अब मैं गृह कार्य देखूंगी, किसने पूरा नहीं किया जरा हाथ उठाओ तो। बिना डर कुछ बच्चों के हाथ ऊपर दिखे। पूछने पर जवाब आया, मैं मैथ्स ट्यूशन के लिए गया था, इसीलिए समय नहीं मिला। और तुम?
1: मुझे अंग्रेजी कार्य करना था।
0: बहन जी, मोबाचे ऑफिस है देवो माँ।
1: और हे माँ तुम?
2: अध्यापिका जी, हमर माँ बोलन, आयो देर हो गलबा, हिंदी होला छोड़ दे।
0: भोजपुरी सुनकर कुछ बच्चे हंसने लगे, यहाँ तक कि कुछ बच्चे शर्माने लगे। दैया रे दैया, कैसी दशा हो गई है आज, हिंदी भाषा पर हंसे, भोजपुरी भाषा पर शर्माना, क्या हिंदी भाषा इतना पीछे छूट रही है।
1: सावधान, अगर भाषा गई तो संस्कृति भी गई।
0: भले ही भूल होना प्रकृति है, लेकिन मान लेना संस्कृति है, और सुधार लेना प्रगति है, स्थिति सुधारना है। आजकल के बच्चों में हिंदी और भोजपुरी का उठान करना ही होगा, हिंदी और भोजपुरी का झंडा लहराना ही होगा। कक्षा में तो पूरा नमूना है, अलग अलग नमूनों के लिए अलग अलग तकनीक अपनाना, कभी अध्यापिका तो कभी माँ बनकर ममता की भावना जगाना, कभी डांट कर तो कभी प्रेम से समझाना, कड़ी मेहनत तथा अनेक गतिविधियों का प्रयोग। साल के अंत तक आते आते सभी के पैरों तले सफलता चूम ही गई। एक दूजे के प्रति आदर के भावना, बड़ों के प्रति सम्मान, हिंदी भोजपुरी अपनाना और पढ़ाई लिखाई में रुचि जागृत हुई। सच में जब कुछ ठान लेती हैं तो जीत हो ही जाती है, अंत भला तो सब भला। कहानी से यह सीख मिलती है, हिंदी भोजपुरी सी

0: सिखाना एवं प्रचार प्रसार करते रहना। प्राचीन युग, आधुनिक युग या भविष्य युग, जय हिंदी, जय भोजपुरी।
1: बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी। हमारी बच्चों का ये प्रवाह हमें बताता है कि उनकी हिंदी में कितनी अच्छी रुचि है, और प्रभावपूर्ण बोलना ही भाषा को समृद्ध करना है, और उसमें सांस्कृतिक भाग भी जुड़ जाता है। बहुत अच्छा लगा बहन जी, आपने ये तैयारी करवाई, इसके लिए आपको आभार कि छात्र को आपने इतनी अच्छी तरह से कहानी को समझाया ताकि वे प्रभावपूर्ण बोल पाए। बहुत अच्छा लगता है। पर कुछ छात्र होते हैं जो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, पर जो अन्य छात्र हैं जो आपके साथ नहीं जुड़ पाते हैं, जिनकी रुचि नहीं होती है भाषा में, उनके लिए आप क्या प्रयास करती हैं?
2: हाँ, कक्षा में तो अनेक प्रकार के बच्चे हैं, जैसे हम लोगों ने कहानी में कहा, तो जो कमपर बच्चे हैं उनके लिए कुछ अलग से तैयारियाँ करती हूँ। ये जो फ्लाइंग पेपर, हाँ, जैसे कि ये फ्लाइंग पेपर्स हैं, उनमें उनको लिखवाती हूँ। किसी को अक्षर ही नहीं लिखना आता तो अक्षर लिखते हैं चित्र देखकर। अंग्रेजी, कभी कभी अंग्रेजी का शब्द प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि लड़का, कभी किसी को लड़का अच्छी तरह से लिखना नहीं आता है, जब बॉय लिखते हैं तब उसे मालूम होता है हाँ बॉय को लड़का बोलते हैं। तो ऐसे चित्र के माध्यम से और कक्षा में अनेक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को हिंदी में रुचि जगाती,
1: वो रुचि जगाना आवश्यक हो जाता
2: है, बहुत आवश्यक है
1: भाषा। हाँ। क्योंकि देखिए, आपने हिंदी, छात्र ने हिंदी की बात की, हाँ। भोजपुरी की बात की, हमारे लिए सभी भाषाएं सम्मानजनक हैं।
2: हाँ।
1: हमारे अंग्रेजी बोलना भी एक सम्मान है, हिंदी बोलना, क्योंकि क्यों आवश्यक है, क्योंकि वे हमारी भाषा है।
2: हाँ।
1: भोजपुरी हमारी दादी नानी बोलती हैं, इसलिए वो हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपनी मातृभाषा से जुड़ें। मातृभाषा हमारी अंग्रेजी नहीं हो सकती है, क्योंकि मातृभाषा वो होती है जिसमें हम पूजा करते हैं, जिसमें हम सोचते हैं, जिसमें हम अपनी संस्कृति का भाव पाते हैं। क्योंकि हम जब भी भाषा को बोलते हैं तो प्रभु से संपर्क करते हाँ। हैं, वो भी अपनी भाषा में संपर्क होता है, क्योंकि हम कभी भी सुबह उठ के हे भगवान की जगह ओ गॉड बोल ही नहीं सक हाँ। पाते हैं। हम किसी भी भाषा का अपमान नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे मन का भाव है वो हमारी भाषा में उभरता है, हम सोच पाते हैं, हम स्वप्न भी उसी भाषा में देखते हैं, क्योंकि वे हमारे जीने की भाषा है। तो आपका इस पर क्या विचार है?
2: हाँ, मैं कहूँगी अगर हिंदी भाषा का ज्ञान न हो तो संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा,
1: हम जुड़ नहीं पाएंगे,
2: हम जुड़ नहीं पाएंगे। अगर भाषा गई तो संस्कृति गई, ये आप जरूर मानेंगे।
1: बिल्कुल, तो हाँ। हमारी संस्कृति को पोषित करने वाली हमारी भाषा संस्कृत, भोजपुरी, हिंदी को पढ़ना भी आवश्यक है, जैसे कि आप प्रयास कर रही हैं, अपनी भाषा में कहानियां बच्चों को संजो रही हैं। माँ लोरी भी सुनाती है तो वो अपनी भाषा में ही सुनाती हाँ। है, क्योंकि लोरी, बेड टाइम स्टोरीज जो होती हैं, आजकल बड़ा फैशन बना हुआ है कि चलिए अब रात को बच्चे को सुलाना है तो एक बेड टाइम स्टोरी होनी चाहिए। तो वो स्टोरी हमारी जो है, कहानी जो है, वो रामायण का भी एक अंश हो सकता है, वो हमारी गीता से भी कोई प्रेरक प्रसंग हो सकता है, वो हमारी बहुत सारी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं, जिनसे हम बच्चों में संस्कार तो पिरोएंगे ही, साथ ही साथ उन्हें अपनी भाषा से जोड़े रखेंगे।
2: हाँ, और
1: आपका क्या विचार है?
2: और जुड़ना रखना चाहिए, हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए, नहीं तो बाद में हिंदी, जैसे अभी स्थिति हो रही है, बच्चे कम हिंदी कर रहे हैं।
1: क्यों
2: क्यों हिंदी कम कर रहे हैं? कि जैसे कहानी में सुनाया गया कि जब बच्चों से बोलते हैं क्यों तुमने काम नहीं किया, तो परिवार ही जो है, जो माता पिता हैं, वे ज़्यादा बल अंग्रेजी फ्रेंच को देख। लेकिन अच्छी बात है, जैसे आपने कहा कि हम किसी भाषा के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हिंदी, जो हिंदू के परिवार हैं उन्हें जानना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को हिंदी ज़रूर सिखाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: और कक्षा में भी हिंदी करना चाहिए, सभी पाठशालाओं में हिंदी की कक्षा होती है और हिंदी पढ़ना चाहिए।
1: चलिए, अब आपकी छात्रा से पूछते हैं, आपको हिंदी भाषा अच्छी लगती है, क्यों?
0: क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा सा आसान है और बोलना भी बहुत आसान है।
1: माता पिता भी घर पर हिंदी ही बोलते हैं।
0: हाँ, ये भी।
1: इसीलिए आप मंदिर भी जाती हैं,

0: तो अपने भगवान से इसी भाषा में बात करती है ना, के क्रियोल में बोलती है?
1: नहीं,
0: मोजे मनफिनी विंद मंदिर नहीं। तो यही मेरा बताने का प्रयास था कि जिस भाषा में हम संपर्क करते हैं भगवान से, अपनी माँ से, अपने प्रिय से, वो भाषा ही आपको समृद्ध करती है, आपको संस्कृति से जोड़ती है और आपको भाषा के प्रवाह के साथ आपका निर्माण भी करती है।
2: हाँ।
0: क्योंकि चरित्र निर्माण में सबसे अच्छा सहायक जो है संस्कृति है, और संस्कृति के साथ तो भाषा जुड़ती ही है। बहन जी, आज बच्चे दूर हो रहे हैं भाषा से, हिंदी भाषा पढ़ने के लिए बच्चों की संख्या कम हो रही है, इस पर आपका क्या विचार है? समय बहुत कम है, हम जानना चाहेंगे आपसे।
2: हाँ, जैसे मैंने कहा कि इसमें परिवार का भी दोष होता है।
0: जी,
2: परिवार लोगों का सहयोग चाहिए, माता पिता का सहयोग चाहिए, ताकि वे भी हाथ बटा सके और बच्चे हिंदी पढ़ना पसंद करें। अगर किसी को हिंदी से प्रेम नहीं है तो वो हिंदी पढ़ना नहीं चाहेगा। जितना हम कक्षा में करते हैं
0: जी
2: उतना काफ़ी नहीं होता है। हम लोग ज़्यादा अपना बल देते हैं, लेकिन बच्चे बोलते हैं घर पर कोई हिंदी नहीं बोलता है, घर पर कोई उसे प्रोत्साहित न करता है हिंदी करने के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं सभी परिवारों से, माता पिताओं से यह मांग करूँगी कि भले ही हिंदी उन्हें कम आती होगी, लेकिन अपने बच्चों को हिंदी ज़रूर पढ़ाना।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार आपने दिया आज की छात्रों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए और अभिभावकों के लिए।
2: हाँ।
0: जो माता पिता हैं उनको हिंदी भाषा से जुड़े रहना चाहिए, तभी उनके बच्चे जुड़ पाएंगे। आप हिंदी सिनेमा तो खूब देखते हैं, धुरंधर देखने के लिए बुकिंग करते हैं, पर हिंदी भाषा की अच्छाइयों को अपनाएं, बुराइयों को छोड़ते हुए आप आगे बढ़ पाएंगे तो अपनी भाषा और संस्कृति को संजो पाएंगे। बहन जी, आप समय निकाल के हमारे कार्यक्रम में आई, क्योंकि आप डेप्यूटी हेड टीचर हैं, आपका समय बहुत बहुमूल्य है, आप यहाँ पर आई, इसके लिए हम आपको आभार प्रकट करते हैं। आज बहुत प्यारी सी एक बिटिया भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी है, आपने उससे कहानी सुनी, उसको भी हम धन्यवाद देंगे। और भाई शिव ने इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाया, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। प्रकाश कार्यक्रम में ऐसे ही छात्रों के साथ जोड़ने का हमारा प्रयास रहता है कि जो हमारे श्रोता हैं, जो सुनते हैं, वो आज की पीढ़ी को भी सुने, क्योंकि हम भाषा को लेके निराश नहीं हैं, हम खाली चिंतन की आवश्यकता करते हैं कि आप भी इस पर चिंता ना करें, चिंतन की आवश्यकता है, भाषा जिंदा ही रहेगी। हिंदी भाषा के लिए हम कार्य करते रहें, ऐसा ही हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे डेप्यूटी हेड टीचर्स छात्रों को लेकर इस मंच तक पहुँचे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ संध्या।
3: अभी आप सुन रहे थे पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश श्रीमती अंजू गर्बरन की प्रस्तुति में।
4: This is Radio Voices.
5: निहाओ, अस्सलामुअलैकुम,
6: किम चू मॉरिशियस,
7: नमस्कार, श्रोतृंदरिकी हृदय पूर्वक नमस्कारम,
8: उंगल अनेवरुक्कुम वणक्कम।
9: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।
10: तेलुगु सन्निधि सांस्कृताध्यात्मिक पिन्निधि तेलुगु सन्निधि तेलुगु सन्निधि तेलुगु सन्निधि 819 కిలోహెర్ట్జ్ రేడియో మారిషస్ ఛానల్ మీద సాంస్కృతాధ్యాత్మిక పెన్నిధి తెలుగు సన్నిధి తెలుగు సన్నిధి తెలుగు సన్నిధి।
7: మా తెలుగు తల్లికి మంగళం, మా కల్పవల్లికి మంగళం, కొలుచుమా ఎదనెలుచుమా రాజ్యమాతల్లికి మంగళం। శ్రోతలకు హృదయపూర్వక నమస్కారం। మన తెలుగు సన్నిధి కార్యక్రమంలో వందనాలు స్వీకరించుకోండి। మన ఈనాటి కార్యక్రమం యొక్క విశేషమైన భాగం ఇక్కడ ఈ సమయం ప్రతి వారం మొదలవుతుంది, అంటే 4:30 నుంచి 5:30 గంటల వరకు 75 నిమిషాల తెలుగు కార్యక్రమం।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। एमबीसी रेडियो आपके साथ।

इस समय बिल्कुल 5:30 बज चुके हैं और ये रेडियो मॉरिशस का प्रसारण है मीडियम 19 किलोहर्ट्ज़ पर। बचपन ऐसा कार्यक्रम को

लेकर हम पुनः उपस्थित हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रत्ना और आपका साथ देने आ पहुंची हूँ। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो बिल्कुल आज के इस सफर में कुछ लाजवाब बातों के साथ बढ़िया बढ़िया गाने आपके लिए हम जरूर चलाएंगे। और बेशक हम भी चाहेंगे आपकी बातों को सुनना, तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो हम जरूर कोशिश करेंगे आपके साथ लाइव बातें करने की। जरूर 402-8085 पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, आप हमसे बातें कर सकते हैं। और लाजवाब गीतों के इस सफर में हम भी आपका साथ देंगे। भाई, एक दौर था, एक समय था जब जादू हुआ करते थे और जादू देखने के लिए हम कितने उतावले होते थे। सच में पहले एक समय था जब हमारे गांव में जादूगर आया करता था और पता नहीं उनकी काली वाली टोपी में से वो कहां से कबूतर निकालते थे। जेब में पता नहीं रंग बिरंगे कपड़ों की ये जो लंबी लाइन निकालते थे और हाथ में से बस यूं घुमाकर गुलदस्ता। कभी कभी तो वो जेब में से कबूतर निकालते थे, फिर ऐसा लगता था आए हाय ये जादूगर जादू दिखाता कैसे है, बस ये आंखों का खेल। पर कुछ भी कह लो, जादूगर जब भी जादू दिखाता था मन कितना ज्यादा खुशी से झूम उठता था। ना पढ़ाई की टेंशन होती थी, ना कहीं जाने का कोई जल्दी। जादूगर जब भी जादू दिखाता बहुत ही मजा आता और कुछ देर तक तो हम यही सोचते रहते कि उन्होंने ये किया कैसे। आपने देखा होगा कई बार ऐसा भी होता था कि जादूगर एक कबर्ड में लड़की को डालता और लड़की गायब। आए हाय, कोई ऐसा लाजवाब किस्सा अगर आपको भी याद आता है तो हमें जरूर बताइएगा, हम आपके कॉल के इंतजार में हैं। 402-8085। बिल्कुल, ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ये हमें बचपन की यादें ताज़ा करने वाली बातें हैं। और सच में लाजवाब किस्सों और कहानियों से भरपूर ये सेगमेंट हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो हम भी चाहेंगे हमारे जो नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, चाहे वो यंग एडल्ट्स हो, कोई बात नहीं, आप डेफिनेटली हमारे इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं 402-8085 पर, और अपने दिलचस्प किस्सों को आप हमारे इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। तो चलिए, जादू की बात छेड़ी है तो जादू वाला ये गाना आपके नाम करते हैं।

0: भाई जादू की बातें कह के यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं एक श्रोता, आइए उनसे बातें करते हैं और इस गीत को हम अभी थोड़ी ही देर में जारी रखेंगे। बहुत बहुत ध्यान से, बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा गीत है, तो आइए जुड़ते हैं आज के हमारे पहले कॉलर के साथ। आइए जानते हैं वे कौन है। हेलो,
1: नमस्ते रत्ना जी।
0: नमस्ते उदय जी,
1: और
0: कैसे हैं?
1: सभी बच्चों जो सुन रहे हैं,
0: हाँ जी,
1: ये प्रोग्राम,
0: हाँ जी,
1: हम भी ये मिस नहीं करते, क्योंकि हम अब हमारे हम नाना बन गए, दादा बन गए।
0: जी जी जी,
1: तो हम बच्चे के साथ जीते हैं।
0: बिल्कुल, मैं समझती हूँ बच्चों के साथ कई बार हमें बच्चा बन जाना पड़ता है ना?
1: हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और कैसे बोलते हैं, हम थोड़ा अमेरिका खेलते हैं लगभग 30 साल से।
0: हाँ हाँ
1: मैंने बच्चों के लिए कितने म्यूजिक निकाले। हम एक टैक्सी ड्राइवर थे,
0: हाँ जी हाँ
1: तो
0: जी,
1: कभी बच्चे रोते थे गाड़ी में,
0: हाँ
1: सफर करती थी तब।
0: जी जी,
1: तो मैं एक अमोनिका से कभी धुन निकालता था, वो बच्चे चुप हो जाते थे।
0: अरे वाह। और सच में देखा जाए तो बच्चों को ये सारी चीजें बहुत आकर्षित करती हैं, और आज हमने रखा है एक शीर्षक जादू। आपके बचपन के समय में आपने कभी कोई जादू देखा जो आपको याद रह गया हो, या ऐसा कोई समा जो आपको आज भी बहुत याद आता है?
1: एक बार छोटे थे, याद नहीं, मुझे याद नहीं कितने साल का थे, लेकिन सर्कस आए थे मॉरीशस, एक
0: जी
1: ग्रुप।
0: जी
1: हाँ, तो हम पिताजी हम दोस्तों के साथ अपने बच्चे के लिए को लेकर
0: हाँ
1: वो सर्कस देखे, मालूम नहीं कहाँ पर, लेकिन मॉरीशस में मैं सर्कस देखा है। एक बार एक ग्रुप आया था
0: जी जी
1: वो ये याद है।
0: ये याद है। आपने आपने कभी बचपन में
1: और
0: कोई
1: जादू भी
0: जादू?
1: देखा है, जादू भी देखा है,
0: हाँ
1: कभी
0: जी
1: कभी शो थे
0: हाँ
1: तो कैसे हो जाते हैं।
0: हाँ हाँ
1: हाँ
0: तो
1: देखा
0: आपने,
1: मैं,
0: आपको कोई
1: लाइव।
0: ऐसा स्पेसिफिक जादू याद है उदय जी?
1: कैसे कहते हैं वो, चाय बॉल हो जाता है,
0: हाँ हाँ
1: एक बुलवा में डालते हैं ना,
0: हाँ
1: पेपर डालते हैं उसमें जलाकर,
0: हाँ
1: फिर कप में वो चाय कैसे मुझे उछलती है,
0: हाँ मतलब पता नहीं कहाँ से चाय निकली, उसमें
1: नहीं
0: पानी।
1: चाय निकलता है और गरम भी, धुआं भी
0: ओहो
1: निकलता है उसमें।
0: ओहो, मतलब उसमें वो पहले खोल के दिखाते हैं कि उसमें
1: हाँ,
0: कुछ भी
1: पहले
0: नहीं
1: खोल
0: है।
1: के ऐसे घुमाते हैं, कुछ
0: हाँ
1: नहीं है।
0: हाँ
1: हाँ,
0: और फिर लगता है अरे चाय कहाँ से निकली, मतलब कुछ भी
1: चाय
0: तो
1: कहाँ।
0: नहीं था उसमें। बिल्कुल सही। और एक जगह पर हमने देखा था, एक जादू ऐसा हमने देखा था कि एक बोतल में उन्होंने पानी सारा निकाल दिया, और फिर
1: हाँ
0: पता नहीं कहाँ से वो बोतल को उल्टा किया तो उनमें से पानी निकला, और थोड़ी देर के बाद वो पानी सारा फेंक दिया और फिर उल्टा किया तो मतलब वो पानी बंद ही नहीं हो रहा था। तो कभी कभी दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, ऐसा लगता है कहाँ
1: तो
0: से।
1: मैं रत्ना जी, मैं एक
0: हाँ
1: कहानी बोलना चाहता हूँ,
0: भी जी
1: सुनाना
0: जी
1: चाहता
0: हाँ
1: हूँ
0: जी हाँ जी
1: बच्चों
0: बताए।
1: पर। जो
0: हाँ
1: एक छोटा बच्चे जाते स्कूल,
0: हाँ जी
1: तो टीचर बोलते हैं बच्चे लोग आप हाथ धोकर खाना चाहिए,
0: हाँ
1: और खाने के बाद दांत ब्रश करना चाहिए। तो
0: बिल्कुल
1: एक बच्चा ने कहा, तो वो जो लायन है ना, वो अपने हाथ नहीं धोते, मुंह नहीं धोते।
0: हाँ
1: तो प्रोफेसर ने कहा, तो लायन तो कपड़ा नहीं डालते, आप भी नहीं डालिए।
0: मतलब बिना कपड़ों के घूमिए, जैसे जैसे
1: हाँ
0: शेर घूमता है वैसे ही। तो
1: हाँ
0: बहुत ही तगड़ा जवाब। कई बार होता है ना कि बच्चों का जो सवाल होता है ना, वो हमें सच में कई बार अगर आपको जवाब देना ना आए तो बहुत ही बड़ी मुश्किल में आपको डाल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी।
1: एक और 1 मिनट आपके लिए, आपके साथ।
0: हाँ जी
1: हमने कई बार कोशिश की, आप जब ये प्रोग्राम चलता है
0: हाँ जी
1: तो ऐसे मौके, थैंक यू।
0: थैंक यू सो
1: और
0: मच।
1: मैं एक छोटा सा धुन सभी बच्चों के लिए मैं निकालूंगा,
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल
1: ओके,
0: हाँ जी जरूर
1: अमेरिका पर।
0: हाँ जी हाँ जी

0: ओहो,
1: ओके,
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार। मतलब वो बचपन की यादें फिर ताजा हो
1: कितने
0: गई।
1: दून है इसे बच्चों के
0: बिल्कुल,
1: लिए। हम
0: चलिए, बहुत अच्छा
1: भी
0: लगा उदय जी, हमारे प्रोग्राम में भाग लेते रहिए, बहुत ही अच्छा लगा।
1: बच्चे हैं,
0: हाँ
1: हम
0: जी,
1: भी छोटे हो गए। थैंक
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और आपको कहेंगे
1: यू।
0: शुभ संध्या, और एंजॉय कीजिए हमारे गीतों को भी। यहाँ पर जादू का
1: ओके
0: गाना
1: अच्छा
0: जारी रखते हैं। तो ये थे उदय जी, और बहुत ही लाजवाब हार्मोनिका उन्होंने बजाया। भाई, कौन कहता है कि हम बूढ़े हो गए हैं, बचपना अब भी दिल में यूं ही बसता है।

0: आज बिल्कुल 6 बजे तक हम हैं आपका साथ देने के लिए बचपन ऐसा कार्यक्रम में। और सच में देखा जाए तो बच्चों के साथ बच्चा बनने की जो मजा है वो तो भाई नाना नानी दादा दादी पूरी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि घर में जब बच्चों को डांट पड़ती है तो पहले उन्हें रोकने वाले होते हैं नाना नानी दादा दादी। पर सच में देखा जाए तो बच्चों पर कभी कभी हम बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं, और बच्चों के मन में ऐसा आता है कि मम्मी पापा तो हमारी जिंदगी के सबसे बड़े हिटलर हैं, हमें कुछ करने ही नहीं देते। पर देखा जाए तो भाई ये कायदा कानून भी कुछ चीज होती है। लाइफ में अगर कायदे कानून ना हो तो लाइफ डामाडोल हो जाती है, और बच्चों को ये कायदे सिखाना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि सोसाइटी के यानी समाज के जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है वो सीखना भी तो भाई बनता है। इसीलिए मम्मी पापा जो कहते हैं भाई हम समझते हैं कि बहुत सख्ती होती है, पर इसी के साथ नाना नानी दादा दादी जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो बच्चों के साथ कभी कभी बच्चा बन जाते हैं। और चलिए बच्चा बनने में जो मज़ा है वो बड़े समझदार बनने में कहाँ भाई। और इसी के साथ एक गाना मेरे मन में बिल्कुल तब से घूम रहा था, तो हमने सोचा कि ये गाना हम आज के प्लेलिस्ट में ज़रूर शामिल करें। और भाई आपको भी हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमारे साथ हमारी प्यारी प्रीति जी जुड़ चुकी हैं और कहती है लाजवाब कार्यक्रम चल रहा है। और बिल्कुल ये महीना बहुत ही मज़ेदार महीना है, क्योंकि 21 जून को हम मनाते हैं म्यूजिक डे। ओहो, इसी के साथ मेरी पेन गिर पड़ी मेरे हाथ से। चलिए, म्यूजिक डे है और साथ ही साथ उसी दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड योगा डे, यानी संगीत सुनिए, स्वस्थ रहिए और लाइफ में क्या चाहिए, बिल्कुल कायदा कानून चाहिए। और कायदा कानून कभी कभार हम तोड़ सकते हैं, पर तोड़ना नहीं है, लेकिन सपने तो जरूर देख सकते हैं।
1: कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता।

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

भाई कायदा कायदा कायदा, इतना सारा कायदा, फायदा किसका हुआ? भाई फायदे नुकसान की ही हम बातें करते रहते हैं और उसमें हमारी जिंदगी यूं ही आगे निकल जाती है। भाई किसी ने क्या लाजवाब लिखा है कि पढ़ लिख कर मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना था, लेकिन फिर याद आया बचपन और लगा कि बड़े होने से तो अच्छा है आइसक्रीम खाओ, मजे करो। पर सच कहे तो अभी ठंड की सीजन है, इसीलिए मम्मी पापा की बातें मानना, गरम दूध पीना सोने से पहले, आइसक्रीम वाइसक्रीम खा के गला खराब मत करना। चलिए जाते जाते आपको सुनाते हैं एक मजेदार चुटकुला और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को एंड करेंगे इस पैरोडी सॉन्ग के साथ। भाई टीचर ने पप्पू से पूछा कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो पप्पू ने कहा सर मेरी मम्मी पप्पा की बड़ी लड़ाई हो रही थी। तो टीचर ने कहा तो इसमें तुम क्यों स्कूल नहीं आए भाई? पप्पू ने कहा सर एक जूता मम्मी ने पकड़ा हुआ था, एक जूता पप्पा ने पकड़ा हुआ था, अब हम आए तो कैसे आए। भाई बच्चे भी बड़े लाजवाब होते हैं, उनके पास हर प्रॉब्लम्स के लिए एक्सक्यूजेस होती हैं, पर टीचर्स भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए टीचर्स के साथ तो मस्ती ना करो बेटा, पकड़े जाओगे। चलिए इसी के साथ एक मजेदार गाना छोड़े जाते हैं आप सभी के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी बचपने से भरी हुई है और हर बार बचपना करते रहिए, पर जरूरत से ज्यादा बचपना भी कई बार मुश्किल में डाल सकता है आपको। जीवन में जिम्मेदार बनना भी बहुत जरूरी है, पर ये जिम्मेदारी और समझदारी की जिंदगी के बीच में कहीं वो बचपना खो ना जाए, इसका ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले सोमवार को एक मजेदार कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: शाम की ठीक 6 बज चुके हैं। सोमवार 8 जून 2026 सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। सुर्खियां इस प्रकार हैं। इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने डॉक्टर नवीन राम गुलाम के खिलाफ 22 आरोपों वाले मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस जांच में गंभीर खामियां पाई हैं और कहा कि मुकदमे को आगे बढ़ाना न्याय हित में नहीं होगा। डीपीपी कार्यालय ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने का संकेत दिया। एज रेटिंग्स अफ्रीका की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस के सार्वजनिक वित्त में सुधार के संकेत मिले हैं, हालांकि ऊंचे कर्ज और वैश्विक अनिश्चितताएं अब भी चुनौती बनी हुई हैं, लेकिन सार्वजनिक खर्च पर बेहतर नियंत्रण से वित्तीय अनुशासन मजबूत हुआ है। मॉरिशस दुनिया का पहला ऐसा गन्ना उत्पादक देश बनने की ओर बढ़ रहा है जिसकी सभी चीनी कारखानों को बोंसिको सर्टिफिकेशन प्राप्त होगा। ये प्रमाणन पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ उत्पादन की गारंटी देता है। हाल ही में बोंसिको इंस्पायर अवार्ड्स 2026 में मॉरिशस सुगर सिंडिकेट को उसकी उल्लेखनीय पहलों के लिए सम्मानित किया गया। विदेश में दक्षिणी फिलीपींस में मिंडानाओ द्वीप के तट पर आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद कम से कम 32 लोगों की मौत, कई प्रांतों में 100 से अधिक लोग घायल, लगभग 2 दर्जन लोग लापता और सुरक्षा के तौर पर 10,000 निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और अब पेश है समाचार विस्तार से। इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने डॉक्टर नवीन राम गुलाम के खिलाफ चल रहे मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। उन पर 5 लाख रुपए की सीमा से अधिक नकद भुगतान स्वीकार करने के मामले में 22 आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा था, लेकिन अदालत का मानना है कि पुलिस जांच में गंभीर कमियों के कारण इस मुकदमे को आगे बढ़ाना न्याय की भावना के खिलाफ होगा। डीपीपी कार्यालय ने संकेत दिया है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। बेथॉन लाशेस के खिलाफ नए औपचारिक आरोप दर्ज किए गए हैं। इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एजेंसी के इस महानिदेशक को सेल्वी थर्मल पावर स्टेशन के पुनर्विकास के लिए डेनमार्क की कंपनी BWSC को ठेका देने की जांच के सिलसिले में 2020 में गिरफ्तार किया गया था। अब बंद हो चुकी आईकाक के महानिदेशक द्वारा इंटरमीडिएट कोर्ट में दायर पिछला मामला खारिज कर दिया गया है और डीपीपी के कार्यालय की सिफारिशों के बाद एक नया मामला शुरू किया जाएगा। ताविन तापेसो की रिपोर्ट पर विवरण आस्था गोविंद चितावन।
2: 6 सितंबर 2020 को इंजीनियरिंग परामर्श कंपनी के निदेशक बेथॉन लाशेस को आईकाक ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने डेनमार्क की कंपनी बर्मिस्टर और वेन स्कैंडिनेवियन कॉन्ट्रैक्टर यानी BWSC से लगभग 42 मिलियन रुपए प्राप्त किए ताकि 4.3 बिलियन रुपए की सेल्वी बिजली उत्पादन केंद्र पुनर्विकास परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट BWSC को मिल सके। इसके लिए मॉरिशस के अधिकारियों के समक्ष अपने प्रस्ताव का इस्तेमाल कर सके। इस मामले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 66 आरोपों के साथ प्रभाव के दुरुपयोग का एक आरोप भी दर्ज किया गया था। ये मामला पोर्टली इंटरमीडिएट अदालत की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन में दायर किया गया था। उस समय आईकाक को बेथॉन लाशेस के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए डीपीपी की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये अधिकार सीधे संस्था के महानिदेशक के पास था। इसके बाद 2025 में FCC ने आईकाक का स्थान लिया और करप्शन तथा वित्तीय अपराधों से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी संभाली। उसी वर्ष फरवरी में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट में संशोधन किया गया जिसके तहत धोखाधड़ी और करप्शन से जुड़े मामलों में डीपीपी के अधिकारों को फिर से बहाल किया गया। इसी संदर्भ में गत 5 जून को पोर्टली इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष FCC ने बेथॉन लाशेस के खिलाफ चल रहे मामले को वापस लेने की अर्जी दाखिल की। FCC के अनुसार इससे पहले डीपीपी कार्यालय आरोपी के खिलाफ

0: नए और औपचारिक आरोप दर्ज कर चुका था। डीपीपी दफ्तर का मानना है कि पहले दायर किया गया मामला असंवैधानिक था, क्योंकि उस समय लागू कानून के तहत संस्था के महानिदेशक को डीपीपी की सहमति के बिना ही मामला अदालत में ले जाने का अधिकार प्राप्त था। डीपीपी के अनुसार इस आधार पर बचाव पक्ष भविष्य में मामले को चुनौती दे सकता था, इसी कारण पुराने मामले को वापस लेकर नए सिरे से मुकदमा दायर करने का निर्णय लिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को पोर्टली इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन में होगी।
1: केएच रेटिंग्स अफ्रीका द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस का सार्वजनिक वित्त मजबूती की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उच्च कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताएं अभी भी बजटीय संभावनाओं पर दबाव बनाए हुए हैं। हालांकि एजेंसी ने सार्वजनिक खर्चों पर बेहतर नियंत्रण के चलते वित्तीय अनुशासन में सुधार दर्ज किया है। मॉरिशस दुनिया का पहला ऐसा गन्ना उत्पादक देश बनने की राह पर है जिसके पास अपनी सभी कारखानों के लिए बोंसिको सर्टिफिकेशन होगा। ये आधिकारिक प्रमाण पत्र स्थिरता की गारंटी है जो इस बात की पुष्टि करता है कि इसकी पूरी उत्पादन श्रृंखला पर्यावरण के अनुकूल है। स्थानीय स्तर पर की गई पहलों के रंग लाने का प्रमाण ये है कि पिछले सप्ताह बोंसिको इंस्पायर अवार्ड 2026 में चीनी सिंडिकेट की जमकर सराहना की गई। मिगान पुनापा नायकन, आस्था गोविंद तमन।
0: पिछले 5 वर्षों से अल्तियो की चीनी मिल और उसके प्रबंधन के तहत आने वाली लगभग 3000 हेक्टर गन्ना खेत बोंसिको सर्टिफिकेशन के दायरे में है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन टिकाऊ, जिम्मेदार और पर्यावरण के अनुकूल चीनी उत्पादन की मान्यता देता है। वर्ष 2024 के अंत तक कंपनी के सभी गन्ना खेतों को ये प्रमाणन प्राप्त हो चुका था। अल्तियो के अनुसार ये प्रमाणन इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी की चीनी उत्पादन प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। साथ ही ये पर्यावरण संरक्षण, सुशासन, जिम्मेदार कार्य प्रणालियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अच्छी कृषि पद्धतियों की ये गारंटी चीनी खरीदने वाली कंपनियों के बीच काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ओमनिकेन मॉरिशस ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की पहली चीनी मिल थी जिससे ये प्रमाणन प्राप्त हुआ था। कंपनी के अनुसार ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल थी। इस प्रमाणन ने जल प्रबंधन, गन्ना खेती और उत्पादकता के सेक्टर में बेहतर कार्य प्रणालियों को बढ़ावा दिया है। साथ ही इसने मॉरिशस की चीनी को वैश्विक बाजार में एक अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा प्रदान की है। सीमित उत्पादन क्षमता के बावजूद ये प्रमाणन मॉरिशस को उच्च किस्म वाली और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरने वाली चीनी के विश्वसनीय उत्पादक के रूप में स्थापित करने में मदद कर रहा है। मॉरिशस में हर वर्ष लगभग 2,20,000 टन चीनी का उत्पादन होता है, जिसमें से करीब 70,000 टन चीनी वर्तमान में बोंसिको प्रमाणित है। ये आंकड़ा आने वाले समय में और बढ़ सकता है क्योंकि तेगा इस वर्ष अपने अंतिम ऑडिट की तैयारी कर रहा है ताकि उसे भी ये प्रमाणन प्राप्त हो सके। मॉरिशस शुगर सिंडिकेट का कहना है कि हाल ही में बोंसिको अवार्ड्स में प्राप्त बेस्ट वैल्यू चेन इनिशिएटिव अवार्ड ने देश और उसके चीनी उद्योग की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है। आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में खरीदार किस्म, खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ उत्पादन से जुड़े सर्टिफिकेशन को पहले से कहीं अधिक महत्व दे रहे
2: हैं।
0: वर्तमान में दुनिया के 125 चीनी उत्पादक देशों में लगभग 50 देशों की कंपनियां और चीनी मिलें बोंसिको प्रमाणन प्राप्त कर चुकी हैं। मॉरिशस का लक्ष्य है कि वर्ष 2026 के अंत तक देश के कुल चीनी उत्पादन का 50% हिस्सा बोंसिको प्रमाणित हो जाए।
1: एक पवित्र स्थान जो आध्यात्मिकता और ध्यान प्रार्थना का प्रतीक है, गंगा तालाब हर दिन हजारों आगंतुकों का स्वागत करता है, लेकिन हाल ही में हुई कई घटनाओं के बाद अधिकारी अब इस प्रतिष्ठित स्थल पर आने वाले लोगों को बेहतर ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रस्तावित उपायों की समीक्षा करने के लिए कला और संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में आज इस स्थल का दौरा भी किया गया। इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विशेष रूप से जेरियाट्रिक्स के क्षेत्र में, पिछले मार्च महीने में SSRN अस्पताल में बुजुर्गों के लिए विशेष वार्ड्स के उद्घाटन के बाद वहां के दैनिक

0: कामकाज का जायजा लिया गया। इन एक्यूट केयर ऑफ एल्डरली वार्ड्स को खोलने का उद्देश्य हमारे बुजुर्गों को विशेष उपकरणों के साथ बेहतर देखभाल प्रदान करना है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए चिकित्सा कर्मियों को लगातार दी जाने वाली ट्रेनिंग पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है। नीले अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी पर एक नया कानून फिलहाल तैयार किया जा रहा है और मॉरिशस के नागरिकों को समुद्र के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के साथ साथ मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों के समुद्री संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस तरह ब्लू इकोनॉमी मंत्री ने ये घोषणा की। डॉक्टर अरविंद बुलेल आज 8 जून को मॉरिशस ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूट द्वारा इंस्टीट्यूट फ्रांसे दे मॉरिस के सहयोग से आयोजित विश्व महासागर दिवस के उत्सव में भाग ले रहे थे। बढ़ते हैं विदेश समाचारों की ओर। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी हैं, जो 2 महीने पहले शुरू हुए युद्ध विराम के बाद से अब तक का सबसे गंभीर तनाव है। विदिमा सिबुरन।
1: इसराइल ने पश्चिमी और मध्य ईरान में हवाई हमले किए हैं। इससे पहले ईरान ने उत्तरी इसराइल पर मिसाइलें दागी थीं। 2 महीने पहले युद्धविराम लागू होने के बाद ये पहली बार है जब ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के क्षेत्र पर हमले किए हैं। तेहरान में नए धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इससे पहले इसराइल ने कहा था कि उसके दर्जनों लड़ाकू विमानों ने ईरानी रक्षा प्रणालियों पर हमले पूरे कर लिए हैं। ये हमले ईरान पर इसराइली हमलों के बाद हुए हैं, जिसमें तेहरान, तबरीज और इस्फहान में धमाकों की खबरें मिली हैं। ये तनाव तब और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला किया, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। इसराइली सेना ने कहा कि शहर के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्ला के ठिकानों पर किए गए वे हमले हिजबुल्ला द्वारा इसराइल पर रॉकेट दागे जाने के जवाब में थे।
0: फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आने से 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि 200 से अधिक अन्य लोग घायल हुए हैं। एक बार फिर से विदिमा सिबुरन का विवरण पेश है।
1: इस भूकंप के कारण इंडोनेशिया और फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई और लोगों से देश के सुरक्षित स्थानों की ओर जाने या ऊंचाई वाले इलाकों में जाने के लिए कहा गया। मिंडानाओ देश के सबसे दक्षिणी द्वीपों में से एक है और ये भूकंप इसके दक्षिणी छोर पर जनरल सांतोस से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में आया। जनरल सांतोस 7 लाख से अधिक आबादी वाला शहर है, जहां कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 130 अन्य लोग घायल हो गए। जनरल सांतोस में फिल्माए गए एक वीडियो में एक छोटी इमारत को ढहते हुए देखा गया और वहां के अधिकारियों ने बताया कि वे नुकसान और घायलों की रिपोर्ट का आकलन कर रहे हैं। वे एक ढहे हुए स्कूल में कुछ छात्रों के फंसे होने की खबरों की भी जांच कर रहे हैं। अन्य मौतें मलबे गिरने, एक मस्जिद को नुकसान पहुंचने और सारंगानी, दक्षिण कोटाबातो और दावो ऑक्सीडेंटल के दक्षिणी प्रांतों तथा बालूत द्वीप पर हुए भूस्खलन के कारण हुई।
0: दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में जो आग लगी थी, उसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। उधर केरल के उत्तरी जिलों में भारी वर्षा से तबाही मची हुई है। 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन पर तथा कुछ अन्य खबरों पर पेश है ये रिपोर्ट।
1: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलिदिमिर जेलेंस्की द्वारा लंदन में यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद रूस और यूक्रेन ने घातक हवाई हमले किए हैं। सोमवार तड़के यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी ज़ापोरिज़्या क्षेत्र में एक रूसी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास खर्च हो चुके परमाणु ईंधन के एक भंडारण केंद्र को जानबूझकर निशाना बनाया। इस हमले से ईंधन प्राप्ति इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार शाम को न्यूयॉर्क के पेन स्टेशन के अंदर चाकूबाजी की घटना में 6 लोग घायल हो गए। हमले के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने रविवार को पुष्टि की कि मालवीय नगर के एक होटल में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जब एक और विदेशी नागरिक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। केरल विशेषकर उत्तरी इलाकों में शनिवार को भारी बारिश के कारण हुए हादसों, जमीन धंसने और इमारतें गिरने से 3 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग द्वारा और गंभीर मौसम की चेतावनी के बाद प्रभावित इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों में छुट्टियां घोषित

0: निश्चित कर दी गई हैं, यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। बर्लिन के हिंदू समुदाय ने श्री गणेश मंदिर के भव्य उद्घाटन के साथ एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। इस अवसर का जश्न मनाने के लिए भक्त प्रार्थनाओं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ एकत्रित हुए। उम्मीद है कि ये मंदिर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो सामुदायिक संबंधों को मजबूत करेगा और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देगा।
1: और अब पेश है मौसम संबंधी जानकारियां, जो इस प्रकार हैं। मस्कारेंस के दक्षिण में एक काफ़ी ज़ोरदार आंटी साइक्लोन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर मामूल हवा की लहर चल रही है। कमज़ोर दबाव वाली हवा के साथ जो बादल जुड़े हुए हैं, वे रह कर हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करते रहेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात और कल सुबह के दौरान आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और रह कर बारिश भी हो सकती है, मुख्य रूप से ऊँचाइयों पर। दोपहर बाद में मौसम सुहाना रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पूर्वी एवं दक्षिणी लगून में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 14 और 16 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 21 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 26 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:37 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:40 पर सूर्योदय।

0: और इससे पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि एक पवित्र स्थान जो आध्यात्मिकता और ध्यान प्रार्थना का प्रतीक है, गंगा तालाब हर दिन हजारों आगंतुकों का स्वागत करता है, लेकिन हाल ही में हुई कई घटनाओं के बाद अधिकारी अब इस प्रतिष्ठित स्थल पर आने वाले लोगों को बेहतर ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रस्तावित उपायों की समीक्षा करने के लिए कला और संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में आज इस स्थल का एक दौरा भी किया गया। इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। अनाबेल वुल्बे की रिपोर्ट पर पेश है विवरण आस्था गोविंद चितामन के साथ।
1: हर दिन गंगा तालाब हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मॉरिशस के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी इस आध्यात्मिक तीर्थ स्थल की दिव्यता और धार्मिक महत्व को अनुभव करने यहाँ पर आते हैं। लगभग 300 मंदिरों और करीब 50 धार्मिक संगठनों से जुड़ा ये स्थल देश के सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है, लेकिन हाल में यहाँ हुई कुछ घटनाओं ने इस पावन स्थल की मर्यादा, पर्यटकों के आचरण और धार्मिक स्थलों के प्रति सम्मान को लेकर चिंताओं को फिर से जन्म दिया है।
2: Maurice n'est un pays multiculturel, nous n'a beaucoup lieu de culte comme ça, on dit pas c'est ça grand bassin mais il porte dans le pays contenu pour besoin un minimum de respect. Et aussi dit pas ce respect touriste besoin respecter ces bandes mauriciens eux-mêmes qui besoin respecter que ce soit vestimentaire, tu dis pas besoin manger une veg ici.
1: इस स्थिति को देखते हुए नेशनल हेरिटेज फंड ने आगंतुकों के लिए दिशा निर्देशों की एक श्रृंखला तैयार की है, जिसका उद्देश्य दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाना और गंगा तालाब की पवित्रता को अक्षुण बनाए रखना है। इन प्रस्तावों को हाल ही में संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और इनके जल्द लागू होने की संभावना है।
3: Sa place là, parmi les autres bandes représentations, c'est qu'ils ont un trust. Et nous avons envie de faire un trust qui est sérieux. Nous pouvons ensemble nous donner un coup de main, mais un trust là pour gérer par PMO.
1: Ce prestav, शीघ्र ही मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाएगा, ताकि ये पवित्र तीर्थस्थल आगे भी अपनी परंपराओं, मूल्यों और श्रद्धा के वातावरण के साथ आगंतुकों का स्वागत करता रहे।
0: ब्लू इकोनॉमी पर एक नया कानून फिलहाल तैयार किया जा रहा है और मॉरिशस के नागरिकों को समुद्र के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के साथ साथ मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों के समुद्री संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ब्लू इकोनॉमी मंत्री ने ये घोषणा की। डॉक्टर अरविंद बुलेल आज 8 जून को मॉरिशस ओसियानोग्राफिक इंस्टीट्यूट द्वारा लिंस्टिट्यूट फ्रांसे दु मॉरिस के सहयोग से आयोजित विश्व महासागर दिवस के उत्सव में भाग ले रहे थे। Christelle

0: बास करुणा लालू।
1: धरती का नीला फेफड़ा कहा जाने वाला महासागर हमें पोषित करता है, हमारी रक्षा करता है और हमारी जीवन का आधार है। 8 जून को EFM में एक फिल्म के प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों को समुद्री जंतुओं और व्यापक रूप से महासागर की सुरक्षा के प्रति

0: de la plage, de la mer, l'environnement tropical, mais sans les poissons. C'est difficile de vendre un produit comme ça, surtout si c'est à l'international.
1: Il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas par rapport à l'océan et les importances, la valeur de l'océan, surtout pour notre petite île.
2: Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y avait des problèmes dans l'océan et aussi qu'on va prendre des mesures et mettre des règles importantes pour préserver l'océan et nos poissons.
3: C'est nous là, la future génération, et la mer surtout va nous aider, va beaucoup nous aider. Ça crée beaucoup de travail.
4: विश्व महासागर दिवस के मौके पर मॉरिशस ओशानोग्राफी इंस्टीट्यूट ने समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समुद्री संसाधनों का एक मानचित्र तैयार करने की घोषणा की। एमओआई के निदेशक डॉक्टर डैनियल माही ने कहा, बहुत खोज करते हैं जो संरक्षण से संबंधित हैं, काफ़ी समय लगता है और संसाधन भी लगते हैं, खासकर फंड। एएफएम के निदेशक ने कहा, इस तरह की गतिविधियों से महासागर के महत्व को दर्शाते हैं। हमारे लगून में मछलियों की घटती संख्या को देखते हुए अधिकारियों का मानना है कि टिकाऊ समाधान खोजना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। ब्लू इकोनॉमी मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने कहा, 14 बिलियन रुपए की लागत के चूना का निर्यात करते हैं, यानी कि हमारे कुल निर्यात के 20% हम लगून से बाहर एक्वाकल्चर करने पर काम कर रहे हैं, जो रुचि रखता है औद्योगिक मछलीमार के लिए, वो लाइसेंस लेकर आगे आ सकता है। गहरे समुद्र में मछलियां हैं। मंत्रालय इस रणनीतिक क्षेत्र के विकास को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पर भी काम कर रहा है। ये दिन जागरूकता और ठोस कार्रवाई के तहत मनाया गया।
5: और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विशेष रूप से जेरियाट्रिक के क्षेत्र में, पिछले मार्च महीने में एसएसआरएन अस्पताल में बुजुर्गों के लिए विशेष वार्ड्स के उद्घाटन के बाद हमारी एक टीम ने वहां एक दैनिक कामकाज का जायजा लिया। इन अक्यूट केयर ऑफ एल्डरली वार्ड्स को खोलने का उद्देश्य हमारे बुजुर्गों को विशेष उपकरणों के साथ बेहतर देखभाल प्रदान करना है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए चिकित्सा कर्मियों को लगातार दी जाने वाली ट्रेनिंग पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है। रिया रामभोजन की रिपोर्ट पर विवरण करुणा लालू।
1: डायबिटीज के इलाज के लिए भर्ती की गई 67 वर्षीय ये मरीज आज अपने घर लौट रही हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिन इस खास इकाई में बिताए।
6: सुबह नर्स, एफएमए, डॉक्टर, मेल, टू बियन जांची, इन बियन फॉर्मा को, देवी मन विनी बनान बिया गेट मां।
1: 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के उन मरीजों की देखभाल के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है, अधिक ध्यान और कभी कभी अधिक धैर्य की भी जरूरत। नर्स प्रिसिला चिनापियल ने कहा, ज्यादातर मरीज बिस्तर पर रहते हैं, उनकी देखभाल, उनसे बातचीत, हंसी मजाक भी करते हैं। वार्ड मैनेजर लेखनाथ लंगर ने कहा, उन्हें स्नान कराते हैं, उन्हें आराम दिलाते हैं। इन मरीजों की देखभाल के लिए नर्सों की टीम के अलावा विभिन्न विशेषज्ञों की एक टीम भी है। इसमें जेरियाट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट और फिजियोथेरापी विशेषज्ञ भी शामिल हैं। दूसरों की सेवा, खासकर बुजुर्गों की देखभाल, एक ऐसा पेशा है जो लगातार विकसित हो रहा है। इसी कारण चिकित्सा कर्मियों को निरंतर प्रशिक्षण दिया जाता है। हर सप्ताह इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर शिव सिगोबी ने कहा,
7: नो सलमान pour donner les soins médicaux, mais pour faire ça avec beaucoup d'empathie. Nous mettons beaucoup l'accent sur la communication.
1: सबसे पहले मानव पहलू हैं, स्टाफ प्रशिक्षित हैं, हम संवाद और करुणा भाव पर बल देते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि पूरी टीम को प्रति सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल ज्ञान प्राप्त हो। बढ़ती वृद्ध जनसंख्या को देखते हुए जेरियाट्रिक सेवाएं पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। पॉम्पलेमस के एसएसआरएन अस्पताल और फ्लाक के साज अस्पताल के बाद जल्द ही देश के अन्य 3 इलाकाई अस्पतालों में भी इसी प्रकार के विशेष वार्ड स्थापित किए जाएंगे।
5: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद कहेंगे अपने तकनीकी सहयोगियों लुदोविक और

0: दिशा को। कुछ ही समय में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: रॉयल रोड शो में ग्रन्य में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड की बीबी फरीदा भातू, बीबी फरीदा भातू पैदाशी नाम फादा जो फरीदा नाम से भी जानी जाती थी का अंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज रात सवा आठ बजे उनके बेटे जनाब रियाद भातू के मकान रॉयल रोड शो में ग्रन्य से उठाकर दफनाने के लिए कौशालो शो में ग्रन्य का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फनरल टुडे एट 8:15 PM। क्लेफो नंबर तीन वाकवा में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री कृष्णा लक्ष्मणन जो मैन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थे कल सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर क्लेफो नंबर तीन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। बैनिकाले नंबर दो ग्लेनपॉक वाकवा में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमित्राबाई भाऊ पैदाशी नाम लक्ष्मो जो मानती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी अगले मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर बैनिकाले नंबर दो ग्लेनपॉक वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन वेंसडे एट 9:30 AM। नंबर 60 कैल्डरन रोड रेटनस्टोन ईस्ट लंदन इंग्लैंड में बहत्तर साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र रुचाया जो रॉय नाम से भी जाने जाते थे और पहले टैगोर रोड फुंजुसाक रहते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी उनका अंतिम संस्कार अगले बुधवार 10 जून को दिन के 1:30 बजे ईस्ट लंदन इंग्लैंड में ही किया जाएगा। शोकग्रस्त परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।

0: நமஸ்காரம்.
1: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
2: ரேடியோ மொரிஷஸ் பர் தில் சே ஸ்வாகத் ஹை ஆப் சபி கா.
3: பஜலி பிரபு கா நாம் ரேடியோ மொரிஷஸ் கே லேரோ பர். समस्त सुनने वालों का एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं. हमारा कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम. हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें. तो चलिए, हमेशा हमारे साथ निभाने के लिए धन्यवाद. तो चलिए प्यारे श्रोताओं, कार्यक्रम का शुभारंभ हम करने वाले हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर. वैसे हर सुबह हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि एक नया दिन भी उनकी अनमोल देन होता है. तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान गणेश जी का नाम लेकर करेंगे.
4: वक्रतुंड महाकाय

श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम जारी है आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। कहते हैं कि भगवान का प्रेम वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को भी संभाल लेती है। जब कोई साथ न दे तब भगवान का हाथ हमेशा हमारे साथ हो।

श्रोताओं, भगवान वह दिव्य शक्ति है जो उस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। वे हर जीव के हृदय में प्रेम, करुणा और आशा का प्रकाश जगाते हैं। भगवान का स्मरण हमें कठिन समय में साहस देता है और जीवन की सही राह भी दिखाता है।

भजे प्रभु का नाम आपके लिए आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे श्रोता हो, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। वैसे भगवान किसी एक रूप या नाम तक सीमित नहीं है, वे प्रेम में है, भक्ति में है, सत्य में है और हर उस अच्छे कर्म में है जो मानवता के कल्याण के लिए किया जाता है। जब मन श्रद्धा से भर जाता है तब हर जगह भगवान की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है।

तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। और वैसे सोमवार का दिन है, सोमवार का दिन हम जो है भगवान शिव की महिमा का गुणगान हम करते ही है। वैसे जिसके सिर पर शिव का हाथ हो उसे किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। हमारे तकनीकी सहायक अंजू को हम धन्यवाद देंगे। आप सभी को हम कहेंगे शुभ रात्रि।

तहज्जुद की फ़ज़ीलत हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हमारा रब हर रात जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और ऐलान करता है कोई मुझसे दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, है कोई मुझसे मदद मांगने वाला कि मैं उसे अता करूँ, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ। बहावाला सही बुखारी शरीफ।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस अख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, हमें वो सब्र अता कर जिसके बाद कभी हौसला ना टूटे, और वो रहमत अता कर जो हमेशा जारी रहे, और वो रास्ता दिखा कि जो सिर्फ़ तेरी तरफ जाता हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिसेस अंजू ने टेक्निक में हमारा साथ दिया, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: तू सुनते हो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन
1: 819 किलोहर्ट्ज़। दिस इज रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: कंटिन्यूअस म्यूजिक RM3
3: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
0: सब संगतियालो के अजय प्रताप सिंह सितालू की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन साथ में तू हमने की दिखा था रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर। तो सब संगतियालो के स्वागत बा भोजपुरी तड़का अभी से लेके रात के 11 बजे ले जलसा ही जलसा गमत ही गमत हंगामा ही हंगामा। जी हाँ थोड़ा बन करता को भी भोजपुरी गीत से लेकर नंबर वन घुमैया या फिर हमने के टिकटॉक पेज पर अपन मिसाज विदा करिया। प्रोग्राम गीत मांगी के इधर उधर की बात ना करिया। अरबी ढेर को हमने के टिकटॉक पर देखा था माधवी डुमा फिर शेला रामदीन अक्षय दर्शनी विमला मुतु और मिली दजिता को भी हमने के देखा था रेडियो टिकटॉक पेज पर। पहल का गाना तो लोग खातिर मार ताली मार ताली मार हमर संगे मार ताली मार ताली मार बहुत ही प्यारा सन गाना कुणाल हिरीलाल की आवाज़ में और कामिनी बगुड़ी है गीत होरो खाती नरुका है गीत होरो नाम रेशमी हंग है गीत होरो नाम विश्वानी देसाई है गीत हर खातिर फिर गोपी भी बाहमनी के संगे संगे और लीना मिस स्वामी वो भी हमने के साथ देवा था उमा बाचू भी हमने के साथ देवा था उमा जी नमस्ते और अनिता पैतब जी हाँ अगला गीत और खातिर और साथ में अनिता के नाम जो नहलन फ्लिकों फ्लाक आरती भी हमने के साथ देवा था देवी बेबी भी हमने के साथ देवा था जितना कोई हमने के साथ देवा था इस समय हमने के टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस पर और रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस उनकी सुनते होते गीत लोग के नाम मार ताली मार ताली मार

और आज लेंदी 8 जून की फिलीपींस में को बहुत बड़ा दुर्घटना हो बात जो है मिंदानो द्वीप के पास समुंदर में सरंगनी प्रोविंस के तट पर एगो बहुत ज़बरदस्त भूकंप पेश आलबा और ये भूकंप रिश्टर स्केल पर मापल गया 7.8 degrees और ये तीव्रता से वहाँ पर ही सब इमारत धेमना इमारत बिल्डिंग ढह गल बा 100 लोगन के मृत्यु हो गल बा 250 लोग घायल बा और ढेर कोई लापता हुआ सा और हई भूकंप के बाद वहाँ पर ही सुनामी के अलर्ट भी जारी करल गल पर बाद में सुनामी के अलर्ट के निकाल देवल गल बा और दिन दहाड़े जोन भूकंप आल बा ये ढेर कोई के जान नहीं लग बा तो हमने अपन सहानुभूति प्रकट करत है सब फिलीपींस के जनता के प्रति कि देखा मृत्यु कैसन दर्दनाक और भयानक रहेगा और हई दृश्य हमने देख रही सा यूट्यूब पर और गूगल पर कौन प्रकार से 2-3 सेकंड में हई जोन भूकंप आल और कितना लोगन की जान चल ढेर कोई मलबा तले फसल हो पर अभी राहत कार्य चलता तो जिकर भी परिवार गुजर बा हई भूकंप में हमने अपन सहानुभूति प्रकट करते ही सा और भगवान से प्रार्थना कर सकी जोन व्यक्ति के मृत्यु होल बा लोग के आत्मा के शांति मिली तो कबू सोची रहा सर जीवन आसान नहीं है काल सब कुछ ठीक ठाक रहल और आज दिखाए काय कैसे वहाँ पर ही माटी थोंबले होल भूकंप आल और उतना लोगन के जान चल गल बा तो कासा कब्जा बोले कैसे जैसी हमने अपन सहानुभूति प्रकट करते सर एगो प्राकृतिक प्रकोप है कोई नहीं सकेला रोके थोमल देती है बोल कौन सब कोई नहीं सकेला रोके पर जब हमने देख रहे तो हमने की आत्मा थोड़ा सुन हिल गल कि कबो भी कुछ भी सकेला हो जाए देख रहा कि एकाएक ही भूकंप में कितना लोगन की जान चल गल तो चला भी को गीत सुन अब अंशु के आवाज़ में सोचे के परेरा जिंदगी के बारे में कबो कबो की चोरा के को ठिकान नहीं बा

रात की 9:15 हुआ था। तुम किसने तो रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर हमने की दिखा था वजह टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस की। और संगत या लोग फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो 11 जून के, यानी कि आज 8, 9, 10, 11 है जे जी बिफे के 11 जून की शुरुआत है फीफा वर्ल्ड कप 2026 और ये जारी रही 19 जुलाई 2026 ले। और मेज़बान देश हो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको। और पहली बार 48 टीम भाग लेवा था और कुल 104 मैच खेल जाए। और उद्घाटन मैच मेक्सिको सिटी में हुई और फाइनल 19 जुलाई 2026 के हुई। और पिछला विजेता जो वर्ल्ड कप रहा तकल में विजेता रहा अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल टीम। और है बरिस जो है शकीरा और बेनाबोय ऑफिशियल गीत गेंद से डाई डाई। तो जितना कोई खुशा फुटबॉल देखे के तो बेसब्री से हमने इंतज़ार करते ही सर। और जरा बोला था तोहर लेकिन तू कौन पे ही के बोते कर बा कौन पे ही से खेला निकाली फीफा वर्ल्ड कप 2026। अपन कमेंट भी जा करिए जा हमने के टिकटॉक पेज पर बेशक। और एगो प्यारा सन गीत आवा था कैसे बेलो ना, बहुत ही प्यारा सन गाना। और है गीत हुआ जो हाँ हमने चलावत इस चाची पर भावती का जो नहलन नोबेल फ्रांस चाचा आत्माराम श्रीमती का सुयाक रहेलन मोहिस परिवार खातिर। और विशाल विशेषर जो हमने की कैंटीन में काम करें उन्हें गीत और खातिर तोहर पत्नी प्रहेल लाफलोगा। और कल तोहर बेटा भावेश विशेषर के जन्मदिन बा तो बोले तो ऐसा हैप्पी बर्थडे भावेश, धे बना प्यार और आशीर्वाद तोहर पापा विशाल तोहर मामा तोहर सब विशेषर परिवार की ओर से। तो चलो एक साथ सुने है गीत कैसे भी लूना। और है गीत चलाओ जिससे माधवी दुमार खातिर मैं

लाशों बाद सब बगल झगड़ा होता तो इस सब के असर पर रहता। और ये महंगाई की ज़माना में अगर सब पैसा बचा के रखे तो पैसा बचा के रखिए भैया। सब पैसा दिपोस नहीं कर दिया, कहे कि बुरा का बुरा समय में पैसा ही काम आवेगा। न बाप बड़ा, न भैया, न बीबी, न मैया, द होल थिंग इज

आप हवन माद विदुमा गीत मंगलेवन कियान सियान प्रियंका रखीर खतेर है गीत चलावत इस थयोरे की सब परिवार के नाम जिराखंड परिवार हरकू परिवार करकतिया परिवार और चाची ललिता कुशल के नाम है गीत चलाव से आरती की ओर से संजना मनोज और सब बुजू और देवकी परिवार के नाम की भी है गीत और नाम तानिया सिवालक गीत और खतीर शबनीज तू छुट्टी में आलो घूमे तह गीत और खतीर हैप्पी हॉलीडेज तानिया सिवालक गीत और नाम और सुमन जीवन के साथ देवतावन जरूर अगला गीत और खतीर विश्वानी चमन तो चल अभी एगो प्यारा संगीत सुनब जा हाँ बहुत ही प्यारा संगीत है सुमन राम तोहर जलसा ग्रुप की ओर से बहुत ही प्यारा सा गाना

0: कुछ एगो बचन दबाई बता सब कुछ और मिल जाए। देखा रेडियो में बात करते ही सर, पर तू हमने की सकता हुआ देखे भी और सुने भी प्यार से, हाँ कि नहीं। तो टेक्नोलॉजी के ज़माना बा भैया, टेक्नोलॉजी के साथ चलना चले के आजकल इंटरनेट बा, कंप्यूटर बा, लैपटॉप बा, यूट्यूब बा, गूगल बा, चैट जीपीटी बा, जेमिनी बा, सब कुछ ऑनलाइन। जैसे एगो क्लिक कर बा माउस दबाइला कि सब चीज तोरा मिल जाला। होम डिलीवरी पिज्जा के मन तोरा मन करता पिज्जा खाए के, मीन खाए के, कि कोच खाए के, तो बात है मैंने आपसे जो ऑनलाइन डिलीवरी होम डिलीवरी करे नंबर वा डाल दे बा तो घर आके छोड़ दे तब सकबा पिए करे। वाह भाई वाह, क्या ज़माना आ गया, एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना बा। अभी कुछ संग जब लाइन पे कर से मिलब जा। हेलो हेलो जी, नमस्ते।
1: हेलो, कैसे हो?
0: हम ठीक है। तो शुभ नाम?
1: हम विकास बोला है रोस्टर से।
0: हाँ तो स्वागत बा भाई विकास बोला।
1: धन्यवाद। अभी को गीत मांगब। एगो गीत है लेकिन भोजपुरी और गीत वा वो फिल्म के गीत है।
0: एगो फिल्म के गीत है भोजपुरी में?
1: हाँ, हाँ मैं गोविंदा बा। अंगना में बाबा दुआरे में माँ कैसी आप गोरी चोले घर में।
0: अंगना में,
1: अंगना में बाबा दुआरे में माँ।
0: फिल्म के नाम जाने रहा?
1: आंखें।
0: फिल्म के नाम है आंखें।
1: अंगना में बाबा दुआरे में।
0: हाई दिशा देवा दिशा हमने के आजों में खेल लग बा।
1: नहीं जाए ना, लेकिन एक वो हिट गाना है।
0: फिल्म के नाम आंखें बोला तो ना आले भी खोजब सब भैया, फिकर ना करिया। और एक तो केकर खातिर बोला था
1: सब लोग के नाम और जो लोग सुनता और जो लोग काम करता रात के।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हमने की फोन कर ले जा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। और लोगों संगतिया वाला लाइन पे शोभा पॉम्पले मुझसे, कैसे शोभा?
2: अच्छा भाई प्रताप जी, कैसे हो? अच्छा हुआ ना।
0: हाँ, हमने की देखा था टिकटॉक पर। हाँ, दिनू वीर माला देवी। हाँ बा, कहे दिलवा लग गई थी। बा बा बा, चलो अब से क्या कर खाते हैं?
2: सब संगत यालो खाते हैं। आप जितना कोई सब कोई सुना था तो हर खाते हैं।
0: ओके,
2: दिल नहीं लगे या दूसरा संगे?
0: हाँ, दिल नहीं लगाई कि खतरनाक।
2: अपन दिलवा लग गई है
0: अपन
2: पत्नी संगे।
0: दांव से गई,
2: दांव से गई, दिलवा लग गई अपन पत्नी रानी संगे।
0: और आज के दिन कैसे बीता?
2: बहुत अच्छा। हाँ, मैं दिन मन में चलेला।
0: तो हमेशा गमत में रहेगा?
2: हाँ, गमत में रहेगा।
0: अच्छा बात, ऐसे भी हैप्पी हैप्पी रहे चिराई लिखा, ठीक बा। आले नमस्ते रहल शोभा जी मामले मुझसे। और है कि चाहते से कविता खूब लोल के नाम दुष 2024। और बेशक जितना कोई अभी उनके लिखा था टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस के, जितना कोई सुना था रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर गीत तो रो नाम है कि चाहते से निशान सिंह चुबा के नाम, कर पत्नी, कर बेटा, बेटी दामाद और सब परिवार। और उमा जगनायक लू रहे निष्कालिए, कर बेटी दृष्टि, दामाद बहादुर और सब परिवार के नाम, सब बहादुर और जगनायक लू परिवार के लिए। तो चल एक साथ सुनब जाएगी तो कहे दिलवा लग गई रे।

दिलवा लगाईदा मोरे सैया संगे, बहुत ही प्यारा संगीत रहा। लाशा कहते गीत तो थोड़ा पसीना लो यार। अब थोड़ा सुन आगे के जमाना के बारे में बताए आपसे। आगे पहले सब कोई नदी जाता हल लुगा धोए, बड़का बड़का बाके किवेत लेके कपार के ऊपर जातरी से लुगा धोए, और नदी में लुगा धोआता हल, नदी में चिंगरी मारतरी से लड़का लोग नाजे करे वहाँ पर ही। और आगे का जमाना तो कुछ और रहा है, और सब कोई नदी जाता है। आजकल कहाँ कोई नदी जा रहा, कोई जा रहा काज सीमा बाकी नहीं नदी दी जाए कि। पर पहले के ज़माना में लाफोतैन भी रहल, और सब कोई उनके बाता चिलो कपार में लंबा लंबा गमेल लेके जाता रहन सर, पानी भर के आना तरन सर, पानी से भात पके नितवायास हो और वही पानी से सब कोई नहाई धोवाई। तो अब सब कुछ बदल गल बा, आगे लिखा नहीं बा है भी सब कुछ सफा से जीते बा। तो अभी सब कुछ बदल गल बा है, पर आगे का ज़माना कुछ और रहा। सब कोई संगे संगे जाते जी सर, माँ बाप लड़का फैका सब कोई जाए थे नदी में है? एक बगल पिताजी जो ना चिंगड़ी मारा था, माता जी लुगा तो होता, लड़का लोग नासी कर रहता। पर आजकल सब बदल गल बा।

T'as vu au guide synopsa La Fontaine, grand que La Fontaine noire, et guide tu la vois tu ça Rita Sitalu qui nom guide Saïdish, Anushka, Rani, Pari, all side and khater guide tu les bord bord pyar ke saath hai guide tu la vois tu ça Vikash bhai khater fir Sridevi Tiroki guide horo khater aur Taksh hai guide horo naam Karuna Durga Amrit hai guide tu horo khater भाई विकास बोलता है आजकल मासी नावे बा अब धोआ जरा लुगा हारी से पर मासी नावे में और हाथ में लुगा धो के एक दूसर है अपन हाथ से लुगा लगर लगर के धोआ तोवा के दलग घमा में तो दूसर है भाई मासी नावे में जा दे रहता हाँ हम नहीं बोलते नहीं खुशी रही रह सर पर आगे की जो रहल तो वो एक एक सावे रहल और जॉर्डन हमके साथ होता है हाय जॉर्डन सेंटो वेस एस एस हेलो आई एम फाइन एंड यू जॉर्डन हाउ आर यू होप यू एंजॉयिंग द म्यूजिक आशा करते हैं तू हाय लाइव देखते हुआ और हमने के म्यूजिक पसंद करते हुआ तो अगला गीत और खातिर जॉर्डन बहुत बहुत प्यार के साथ और देव जीवन भी हमने के देखा था तो चलो सब से गाँव के ला फोंटेन की कहानी राजकमल राजकमल चिंतामणि की आवाज़ में

ई रहल गांव के लाफोंटेन के कहानी। और अब हमनी बात करब ऐसन एगो सब्जी के जो खूब प्रयोग होला मॉरिशस में दुनिया भर में, वह आलू पोटेटो। एक आलू के ढेर मना व्यंजन बनेला, जैसे कि चिप्स, आलू टिक्की, तरह तारल आलू, आलू मसाला में, आलू बैगन में, आलू मुर्गी की तरकारी में, और आलू से ढेर मना व्यंजन बनेला। और आलू के प्रयोग होला है जैसे घोपा के गुलादुप करत हव, या आलू के बुआ बनेला, आलू के सलाद बनेला भी है। आलू के बुई करके जोरी से इसको के काट देब, गोल गोल ओकर में बेथाव डाल देब, पीमा प्याज डाल देब, तो आलू के सलाद बन जा रहा, हाँ कि नहीं। तो आलू जो है ओकर प्रयोग करल जला है ढेर मना व्यंजन में, ढेर मना प्लाम के तैयार करेला से गातोपोम देते है। तारल आलू बेसन में डाल के वह बनेला, और आलू की चटनी बहुत ही लज्जतदार, बहुत ही मज़ेदार है आलू है। और आलू के कोनो भी मसाला में डलब, रोगाए में डलब, चिप्स बनेब या कुछ भी, तो बड़ी अच्छा लगेगा खाए के, हाँ कि नहीं। पीमा फौसी भी बोला था, आलू और पीमा फौसी, हाँ तो हयो सकबा करे विकास। आलू के जोड़ी से डाल देब, तार देब जोड़ी से, निमन आलू चाहना है। और जो आगे के आलू जो रहल तब नहीं मिलेगा है, अभी एगो बालू आलू मिले था, बालू बालू रहेगा ओकर आपुआ में काज निकाहे। पर आगे जब आलू छिलत रह से तार से, तो अलुआ लाल हो जाता है। अब अलुआ के ढेर तरब अभी के आलू के तब जल जला काज निकाहे से आलू बा। तो चल अगला गीत, दादा के कहानी सुन, दादी के कहानी है। गीत उदय दलनी राम जी के नाम, रहे किशन गुड़िया, केशव अबिलक, प्रीतम राज मिला, और साथ में अश्विन बच्चन, बच्चन ओकर बड़ा भाई, ओकर सब परिवार के नाम। बालदेव जी उनकी दिखा था वन टिकटॉक पेज पर, बालदेव जी गीत और खातिर माहिर इमानुएल ऑक्चिल से होन जा हमने के दिखा था वन और सुना था वन, तोहर खातिर भी विश्वानी जमन अगला गीत और खातिर। और गीत आश खातिर भी चलाते सर, बालदेव जी खातिर, आश खातिर भी, और है गीत चली वीरेन के नाम भी, जन बहुत प्यार से हमने के सुना वन और दिखा था वन। लीना और आरती है गीत, हो नाम, दादा की कहानी सुना, दादी की कहानी।

0: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा।
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। गमच धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: Continuous music. RM3. 7 days a week. 24 hours a day.

0: This is Radio Marches.
1: ये वक्त हम की लाइव प्रसारण चला था एमबीसी मोका से रात के 9:53 हुआ था और एमबीसी रेडियो के दुगो चैनल पर चला था प्रोग्राम एगो है रेडियो मनोरंजन दूसर का है रेडियो मॉरिशस प्रोग्राम है एकदम चकाचक तलो के पसंदीदा भोज हुई तरका तो संगतिया जय प्रताप सिंह सीतालू के साथ और हमने तो नचते गए थे आवा थे ऐसा और नचते गए थे जब से यहाँ से बचा बोल सुना नयन की गीत चली पर गीतवा से पहले हम थोड़ा सुनावा बबी महाभारत के कहानी तो आगे को टीवी सीरियल आवतर हमने के एमबीसी टीवी पर बी आर चोपड़ा द्वारा ओका नाम रहल महाभारत तो महाभारत कौन सी है एगो महाकाव्य है और एकर में ज्ञान या ज्ञान योग बा कर्म योग बा भक्ति योग बा और कहानी के आरंभ हस्तिनापुर राज्य में दुगो कुल रहल एगो पांडव और एगो कौरव पांडव में रहल पांच पांडव युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव और कौरव में रहल दुर्योधन और ओकर सबगो भाई तो दोनों राज परिवार के सदस्य जो रहल वो लोग में उतना नहीं बनता है दुगो कुजे हैं वन से पांडव और कौरव तो एक दिन वो लोग एगो खेल कर रन था और वो खेल में पांडव हरा गल तो पांडवों के परल वनवास जाए के और कौरव लोग छल से जुआ खेलन सा और छल से पांडव के हरा दिलन सा और वहाँ पर ही होला द्रौपदी वस्त्र हरण है बदमाश दुशासन जो है द्रौपदी की भरी सभा में खोचेरा कर वस्त्र हरण करेगी तभी द्रौपदी कृष्ण भगवान के याद करेला और बढ़िया से जब भगवान के याद करब तब भगवान कोनो न कोनो रूप में आवेला तब भगवान आशीर्वाद देवेला और द्रौपदी के वस्त्र हरण से हो से बचावेला और बेशक है जो महाभारत की जो कहानी है वो कुरुक्षेत्र मैदान में होला और श्री कृष्ण भगवान जो है वो एगो गुरु के रूप में आवेला और अर्जुन एगो स्टूडेंट के रूप में और है जो युद्ध है ये 18 दिनों तक चलेला और अर्जुन युद्ध भूमि में जो है कृष्ण भगवान से ढेर मना ढेर कुछ सीखेला अर्जुन ढेर मना सवाल पूछेला कृष्णा से कृष्ण भगवान जवाब देवेला और युद्ध में बहुत बड़ा योद्धा लोग लड़ाई कर लेते जैसे भीष्म पितामह कर्ण द्रोणाचार्य अर्जुन अंत में पांडव विजयी होला लेकिन दोनों पक्ष के बहुत हानि होला महाभारत के संदेश ये है कि सत्य और धर्म के पालन चेहरा करे के और तोहरा चेहरा तोहर हर इंसान के चेहरा अपन हक खातिर लड़े के एगो कुरुक्षेत्र ही जीवन तोहरा चेहरा लड़े के अपन राइट्स खातिर हों कि नहीं और अहंकार के परिणाम का होला ये देखी सही महाभारत कहानी में और महाभारत के कहानी के लेके ढेर मना टीवी सीरियल बनल बा कार्टून बनल बा ढेर मना भाषा में कर अनुवाद होल बा और फिल्म भी बनल बा पर अभी मॉडर्न जमाना में जिससे भी एगो मॉडर्न रामायण के फिल्म बनता अभी वो रामायण फिल्म बनता बॉलीवुड में आशा करते हैं कि लैंड के जो चाहते लोग वो लोग महाभारत पर भी एगो फिल्म बनाई अंजा तब बड़ी रोचक कहानी है महाभारत एक में ढेर चीज हमने की सीखे की जैसे कि कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग हाँ कि नहीं तो अगला गाना बच्चा बोल सुन की गावल है गीत अनायत खतीर फिर है गीत चली लक्ष्य खतीर ये सेलो लक्ष्य और है गीत शमीला खतीर विद्यानी सी चयन खतीर भी और जितना कोई हमने के देखा था टिकटॉक पेज पर है गीत और खतीर जितना कोई रेडियो पर हमने के सुना था तो गीत लोग के नाम बजा बोल सुरन की आवाज़ में और हे गीत चलावप से हमने बहुत बहुत प्यार के साथ संदेश और लता खातिर और अंजलि और शिवानी खातिर प्रीतम की ओर से पत्नी ज्योति बेटी प्रियंका पूजा दामाद राविश सिंह और है गीत चली सब लोगों के नाम जो नबी हमने की सुना था रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर जो कि हमने देखा था टिकटॉक पर गीतरो नाम बजा बोल

धेर कोई सोचे रहन सा कि हमने के जो गृहिणी है लोग के काम नहीं रह रहा ना, घर में धीरे मना काम रह रहा। अब फजर के उठ के पकावा लड़का लोग खातिर, पति देव खातिर, जब पति देव काम में चल गए, लड़का लोग काम, लड़का लोग लेकर चल गए, सब बर्तन नमाज की धोवा, घर के साफ सुथरा रखा, दिन की खाना तैयार करा। अब सांझ के जब लड़का लोग और पति परमेश्वर काम में से आए तो लोग के चाय दे के गरम गरम तो नहीं बुझा कि जो मैडम घर में रह रहा लोग के काम नहीं रह रहा ना, ये लोग के ढेर काम रह रहा हो कमा को कि पे करके करेबा तो कैंस में अमीर हो जाए भैया। तो गृहिणी लोग के अंडर एस्टिमेट नहीं करिए हमने कि जो माँ बहन लोग घर ही रह रहा, हाउस वाइफ लोग के ढेर काम रह रहा, वो लोग के हमने ग्रांड सैल्यूट कर दे सर। जितना माँ बहन लोग घर में रह रहे सर, अपन घर संभाल रहे सर, और जितना कोई काम करे जा रहा वो माँ बहनों के भी हमने की ग्रांड सैल्यूट है। अगला गीत जो है मंगा द मंगा द 9 लाख के हरवा, और रहेगी तो अपनी चलावत ईसा गौरंगा की ओर से, कर सासू माँ शिमला, कर ससुर जीतन इंद्र मत्तु सिंह है गीत, और खातिर है गीत रविश मंडू की ओर से, और माता पिता, कर भाई भौजी और सब मंडू परिवार के नाम। मणिप्रिया है गीत तोरों खातिर, मनु चंद गीत तोहर नाम चलावत ईसा, और शमीरा तो गीत मतलब गोरकी सवर की गीतों की बात छदी, ओके ठीक बा। और जितना कोई अभी हमने की सुना था रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर, जितना कोई हमने देखा था, हमने की देखा था टिकटॉक पेज पर गीत लोग के नाम मंगा द मंगा द।

9 लाख के हरुआ, हम अपन हार सरियावत ही भैया। 9 लाख के तो नहीं है पर है गुहार। 9 लाख के हरुआ मंगा दे, देखिए कंजूस नहीं कर दिया जब तुहर तो पत्नी भौजी तौर से बोली हमके 9 लाख के हरवान कर द, तब चेहरा देख के अरे भाई शाहजहां तो जो है मुमताज खाती ताजमहल बना दे लगते वो 9 लाख के हरवा भौजी नहीं सकते दे, का हो ऐसी कंजूस ऐसा कंजूस बोलते।

मंगा दे हमर 9 लाख के हरवा, 9 लाख के हरवा भौजी के दिया। भौजी तोरा बड़ी खुशी रही, भौजी तो से कबू झगड़ा नहीं करी, 9 लाख के हरवा दे दिया हो। और अपनी बात करब सबनी के MBC रेडियो के बारे में। जी हाँ, जब भी तोरा मन करी तब अपन रेडियो ऑन करिया और अच्छा अच्छा प्रोग्राम सुनिया, अच्छा अच्छा गीत सुनिया। फजीर से लेके रात ले, रात से लेके फजीर ले, 24 घंटे सातों दिन MBC रेडियो पर हमने आनी रह सत लोग खातिर दिलचस्प कार्यक्रम, जबरदस्त म्यूजिक और तो लोग पसंदीदा गाना। तो आशा कही रह सकी जब भी थोड़ा मन करी, जब भी मन

उदास हो या जब कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता तब अपन रेडियो ऑन करिए और बेशक हमने के साथ दिया, ठीक बा। अगला गीत चली सह तो मैं SSS के सब स्टाफ लोग के नाम, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, हमने के रेक्टर निकतेर यूनिवर्सिटी मॉरिशस के मतलब सब स्टूडेंट्स लोग के नाम, जो बी फ्रेंच ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री में हुआ, एम ए फ्रेंच ईयर वन ईयर टू और जो PhD फ्रेंच कोर्स में हुआ, समझ सब स्टूडेंट्स लोग के बोला पोंकवाश, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करिए और अपन डिग्री में नंबर वन से पास हो जा। और अगला गीत जो है गुर की सवर की है, गीत चरावती प्रवीण गर्ती मगर के नाम, आप नेपाल से हवन और अभी मॉरिशस में हवन जा, शमिला गीत है थोरो खातिर, इंदिरा मत सिंह है गीत थोरो नाम, चरावती ईसा और शमिला को जालो गेसन मोरलक बा, बाप रे बाप हमने सब अभी ऑन एयर पर ही 9 लाख हर वहाँ नहीं दिलक भैया देख लो ना पाफे नौ नौ लाख के हार नहीं दिलक था कोनो कादू तो देवी रहना, हाँ तो कोई बात नहीं है। और चलो अभी गीत सुने गोर की सवर की और गीत चलाओ जैसे सब लोगों के नाम जो हमने के साथ जुड़ल हवन चाह

0: हमनी के मजदूर भाई बहन लोग कड़ी मेहनत करन सब दिन के देखी रहा जब कॉलेज जाए रहा था देखी रहा सर ऐसे कारों में काम करते रहन सब फजर के बोंजरी 5 बजे चल जा रहन सर कारों में काम करे और दिन भर कारों में काम करे रहन सर तो आसान काम नहीं है। तो हमनी के जितना मजदूर भाई बहन लोग खेतीवार लोग हमनी के सुना था तो लोग के ग्रांड सैल्यूट करते है तो लोग के नमस्ते बोलते है तो लोग के योगदान से हमनी के झुरी झुरी और स्वादिष्ट लगी मिलेगा खाई के। तो अगला गीत विक्की गोपाला के नाम अगला गीत है जलसा लालबा गीत तो विक्की गोपाला खातिर सब परिवार फिर निधि त्रियोले से गीत नरेश प्रतिमा और इशिका सुकारी के नाम और मिकराज बालदुआ भी हमने के दिखाता हुआ अन्य टिकटॉक पेज पर है गीत थोरो नाम और किशोर तुरी है गीत थोरो खातिर चली और मसूद भाई खातिर भी और है गीत तो हमने चलावा थी स्वीति और स्विनी के नाम और वाक वाक शोभा खातिर रणवी को संगत है लाइन पे ओकरा से मिलब जा और ध्यान रखे जब टेलीफोन ही करब तब बतिया टेलीफोन वा करके कटिया नहीं ये खातिर हम नहीं खुशी दे रहा जब टेलीफोन ही करब तो चाहे ना बतिया कि नहीं कि टेलीफोन उठा से टेलीफोन काट देवे रहे सर वेरी बैड हैबिट का जगह दे वि जगह विद से पर लाइन खुलल बा नहीं बल कि लाइन नहीं देवते लाइन देवते भैया तब बात करिए जा और गीत के बीच में टेलीफोन नहीं करिए गीत के बीच हमने कॉल नहीं दी वापस कहे कि गीतवा चला पूरा चलाए कि गीतवा पूरा चल जाए तब सुने करिए तब से कब से तो लोग के फ़ोन कॉल्स लगी अभी दिखाता है ये टेलीफोन वा बजे था और देखिए सर व्यक्ति फोन वाले बोला कि नहीं हेलो थोड़ा क्या बोली हेलो हेलो जी नमस्ते
1: नमस्ते जी
0: तोहर शुभ नाम तोहर शुभ नाम
1: श्रीमती
0: कहाँ से
1: हो
0: तो स्वागत बा चाची बोला
1: हाँ आई गोगी दादा हमर पोसल चिड़ैया
0: हाँ
1: जला परदेसी के अंगना
0: हमर पोसल चिड़ैया कि दादा के पोसल चिड़ैया
1: दादा के पोसल चिड़ैया
0: ए दादा के ऐसा जोली जोली चिड़ै बागे मामा
1: हाँ उड़ जला परदेसी
0: देखा तो ना दादा के पोसल चिड़ैया चल जाता

0: Hey. हेलो
1: टीचर गीत हो
0: है वो गीत अभी
1: चली
0: दादा के पोसल पासल ललका चिड़िया सुनने वो गीत हुआ।
1: हाँ सुनने
0: हाँ और बोला कैसे बात समाचार।
1: हाँ समाचार अच्छा ठीक बटे देखो है ये गीत चले बाबी।
0: नहीं कौन गीत सुन बतू तोहरा कौन गीत मान बात सुने की बोला।
1: माँ हो पर के वो
0: गीत माँ पर अरे कौन गीत है बोला था एक जोली गीत माँ पर भोजपुरी के।
1: हाँ माँ बोले ना जे किसी नाम हो
0: भात पानी थोड़ा दिन दाल खाके थोड़ा दिन पानी पी के औसे नहीं शुरू होला कोनो दिन दाल खाके कोनो दिन भाजी खाके ना।
1: हाँ
0: हाँ नहीं आवत पाफ नहीं आले गीत के कर खातिर।
1: हाँ
0: हाँ बोला
1: तीन गो बहन खातिर।
0: हाँ
1: और भाई राजन खातिर वहाँ अच्छी रहना लाख लोग।
0: ओके
1: उनकर बहन भी मानती और उनकर पत्नी उनकर दो बेटी।
0: अरे चला दियो अब सर ठीक बा।
1: बहुत धन्यवाद शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि और कॉल बा। हेलो हेलो
2: हेलो
0: नमस्ते
2: नमस्ते हो
0: के हवजा
2: शांता सुकारी।
0: हाँ चाची शांता कैसे समाचार।
2: अच्छा बस सब समाचार तो रहे हाथ में बस सुना था कब से टेलीफोन कर रहा था का नहीं एम्बेसडर का बोला था वो टिकटॉक में।
0: हाँ टिकटॉक में सकबा जा देखे और सुने भी हम टिकटॉक पर
2: कैसे टिकटॉक में हम नहीं जानी ला।
0: ए दादी को की बोलिए अब थोड़ा बता दे के लड़का लोग बता दे।
2: अब लड़का लोग सुतल बा इतना बखत लोग नहीं लियन सा हम। ए
0: बाबा देखिए अभी की
2: अभी सुनियन सब बोली ता हम भी ले सुतल नहीं है।
0: कुछ बात दादी के मन बा गीत सुने के बोला दादी कौन गीत सुन बा।
2: हाँ चाची हाँ गीत मांगत है हो हमरा लड़का लोग बोल दिले बाबू ने रे अल्लाह निवेश है हमारे बेटा के।
0: कौन गीत
2: सोना एथी के हो बस हम चुप बोल के
0: हैप्पी बर्थडे
2: निवेश है कि
0: हाँ हाँ बा बा गीत हो बा बा दादी बोला।
2: सुना ओकर चार गो भाई बा अशोक के बा
0: अशोक के जन्मदिन बा जन्मदिन मुबारक
2: चार रविनन। हाँ रविन्द ओकर भाई है ओके शुभकामना देवता रविन सुदेश सुजीत ये सब के शुभकामना और हमू सब परिवार सुकारी और एगो भगीना रहेला एगो भगीना रहेला रोजबेल ओके नाम बा संजय एच एन
0: ढेर मना प्यार आशीर्वाद।
2: अब आ रहा हमारा बोल उल के सब चल गए बाकी बड़ी देरी अब कहीं सुनी की नहीं सुनी
0: पाप नहीं तो अपन दिवा करते तू गीत मांगते सुन।
2: हाँ दादा था बेटा शर्मा तू टका जनी मासिन लावे के हाल बोलत हवा पकाए के हाल बोलत
0: तो सब चेहरा जाने के न चाची देख जन लड़का लोग न जानी माँ चेहरा लड़का लोग
2: अभी के कहाँ जाने लन सब उस सब हो जे
0: नहीं तो हाँ तो हमने की दिवो है बताए के
2: हाँ उस सब बताए के देखा तो आजकल का हुआ था
0: का देख बाबू चाची का दुनिया में उल्टा
2: बा जवान जवान छोकरा छोकरी खुशी होके मरत
0: जवान का बोल बा चाची का बोल बा। अरे चाची बहुत धन्यवाद टेलीफोन कर ला।
2: हाँ बोल दा हमार गीतवा डाल दो
0: आले डाल दो अभी। हाँ
2: बस अच्छे से आले नमस्ते तोरे
0: आले नमस्ते शुभ रात्रि। और अगला गीत जो है चली सुदेवी जो हवन वाकवा से गीत प्रोग्राम बड़ी एंजॉय करत हवन दादी ललिता कुशल परिवार खातिर आत्माराम भैया मालंगा की केशनी कृषय कृषिका लक्षिका सब राम रतन परिवार के नाम वंडरफुल नाइट गुड नाइट गॉड ब्लेस यू। ओके सुदेवी और वाकवात गीत तोर खातिर चली जलसा लालबा वेदिनो है गीत तोर खातिर लव बॉय और तमंग और जितना कोई अभी उनके साथ होता है गीत तो लोग के नाम भी बहुत बहुत प्यार के साथ जलसा लालबा चल एक साथ सुने।

0: भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
1: Continuous music. RM3
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का। भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
4: संगतियों लोग आजकल देखी जा सके ढेर कोई ढेर गुस्सा कर रहा था बात बात पे गुस्सा खिस कर रहा। और ये गुस्सा जो है ये इंसान के सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्सा नहीं करिया है, गुस्सा से तुम्हारा BP हाई होला तो तोशों से की मोती हो जाए। तह गुस्सा जो है ये तुम्हारा सब प्रकार की बीमारी देवेला। का जी निका हमने देखी रहा सा आजकल ढेर कुछ छोटा छोटा बात में गुस्सा कर रहा। तो अपन गुस्सा पर काबू करिया है बहादुर इंसान वह जो अपन गुस्सा पे काबू कर रहा है। गुस्सा में कोनो काम कर दे बा कोनो बुरा काम तो बाद में पड़ेगा पछताए के। तई गुस्सा जो है एक ही कंट्रोले कैसे कब से कंट्रोले करे सकब से जब मेडिटेशन करब से योगा करब से पूजा प्रार्थना करब से सत्संग में जाब से अच्छा लोगों की संगति करब से तब हमने सकब से अपन गुस्सा के काबू में रखे। गुस्सा के कारण ढेर घर टूटा था आजकल। छोटा छोटा बात में पति पत्नी में कि एक दो को बात हो जाला पति नाराज़ होगा या पत्नी नाराज़ होगा तब पत्नी बोले हम जाते हैं हमारे माँ लगे। यही सबसे बड़ी बात हम जाए हमारे माँ लगे और घर छोड़ के चल जा रहे सर। तो एक गुस्सा पर चहला काबू रखे के गुस्सा हमने के समाज के बर्बाद कर रहता है ठीक बा। और अब एगो गीत चल अब सर गीतवा संगे संगे गाओब सर नाचब सभी जोड़ी छोकरी से प्यार करीरा। और गीतवा भाई कुणाल हीरा गैले रहन जब सामधी की गरली सब ब्लूबे फन बीच फैमिली फन बीच मॉडल्स डे स्पेशल में तो कुणाल हीरालाल गीतवा गैले रहन जितना कोई आरल हमने के देखे तो सबको की वजह से बहुत बहुत धन्यवाद। याद बा ना सामधी के ब्लूबे में आरल जहाँ हमने से मिले रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती की टीम सब वहाँ पर रहल और खूब नची से गई सब भाई कुणाल हीरालाल संगे। तो गीतवा जोड़ी छोकरी चलावत इस राज मन्ना खातिर और सब परिवार जिमी दुखिया सावन दुखिया सुदेश जसवा कर्मा राजकुमारी चिबुक लोंग राजा श्री माना नानो खातिर संजय हरिचंद के परिवार के नाम कुणाल हीराल के परिवार के नाम और पूर्णिमा फोकीरा के नाम और हई गीता चराब सर मासूद साहिब के नाम समद भाई के नाम भी और राधा वन वेलफॉर्म से राधा से मेरी भेजा। हेलो राधा।
5: हेलो भाई साहब।
4: राधा जी नमस्ते कैसे समाचार।
5: बोला से नमस्ते
4: कैसे
5: बा ठीक बा।
4: हाँ
5: कैसे हुआ
4: चलो तो
5: गमा जालुक डाल देता
4: हैं
5: जालुक डाल देता खूब जालुक डालत हुआ।
4: हाँ तो जालुक जालुक डाल सकते अपने सबको हमने की सुनी।
5: हाँ आलू की चटनी दाल पकल बा कुछ पकाया आज बोला था कुछ पकाया बिजीता है ना
4: हमने यहाँ कौन सी पकल का आज भुला गई थी कुछ पकल है
5: आवो खा लेता
4: है कुछ का पकाए दे बोले
5: का पकाए ना है घोगाम चोले
4: चोले
5: ठीक पकाए ना पास तो सारे वेजिटा ये
4: आले आले अभी प्रोग्राम फिर तो आवो थोड़ा लगे भोजन करे ठीक बा।
5: हाँ आके खा ले
4: आले बोला
5: गोगी डाल दिया मैं खाके थी कौन फुलवा फुलेला तो हर अंगनवा में
4: ठसुन गा दे
5: जितना भाई बहन बा।

जोली छोकरी से प्यार करीला जेकर खातिर हम रोज जी कैसे बदला बोके कैसे समझा बोके बताई दे हमको से प्यार करीला जेकर खातिर हम रोज जीला बाबू के कैसे सम

राम साहब हमनी के संगे जुड़ल बा। राम जी गीत तोहर खातिर तू भी जोरी छोकरी से प्यार करिया। हेलो बिग जो, हेलो मिस्टर इकबाल। फजीर फजीर जब मुखराज दिखेला कैसे बतावा याद में चलेला। फजीर फजीर जब मुखराज दिखेला

आंटी रोमिला जोली छोकरी से प्यार करीला जेकर खातिर हम रोज जीला कैसे समझाबो के कोई ना कोई बताई दे हमको से प्यार करीला जेकर खातिर हम रोज जीला कैसे बतलाबो के समझाए हमको तोहर से मिला निकली ना कहीं तोहरा बतावा कैसे जी हली तोहर से मिला निकली ना कहीं अच्छा कैसे जी हली।

कैसे बदला हम रुके, कैसे समझा बुके, कोई ना कोई बताए दे हमको, छोकरे से प्यार करीला जेकर खातिर हम रोज जी, कैसे बदला बुके, कैसे समझा बुके, कोई ना कोई बताए दे हमको, छोकरे से प्यार करीला जेकर खातिर हम रोज जी, कैसे बदला बुके, कैसे समझा बुके, कोई ना कोई बताए दे हमके, प्यार करीला जेकर खातिर हम रोज जीला, कैसे समझा बुके, कैसे बदला बुके।

गीतों के बाद एक अंतिम गीत सुन बजा उमेश दोहू की आवाज में जिले जिले जिले जिले। अभी गीतों के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम समाप्त हो जाए। रात के 11 बजे सुन बजा अगला प्रोग्राम सुनहरे पर, रात के 12 बजे से कल फजीत के 5 बजे सुन बजा नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने के तलों की मुलाकात हो बुधवार की रात के 9 से 11 बजे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में रेडियो मॉन्स्टर्स रेडियो मनोरंजन टिकटॉक पेज पर। तो रात के 9 बजे से 11 बजे ले हमने के सुना जा, हमने के SMS कर ला, हमने के टेलीफोनिंग कर ला, टिकटॉक पेज पर हमने के देख ला। बहुत बहुत धन्यवाद और एक मुलाकात तक हमने के इजाजत दे। और जय प्रताप सिंह से तालुक की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल नमस्ते।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल फिर से आ गए हैं गिनीश का साथ देने के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम। वैसे दोस्तों, पुराने गीत एक खजाना है जो जितना सुनाए जाए उतना ही दिल को सुकून देता है। आज हम इसी खजाने के मोती चुन चुन कर आप तक पहुँचाएंगे। बस साथ बनाए रखे और संगीत की इस खूबसूरत दुनिया में खो जाइए। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

जिंदगी की भाग दौड़ में अगर कुछ पल सुकून के मिल जाएं, तो दिल वाकई में खुश हो जाता है मेरी जान। आज सुनहरे पल में हम आपके लिए लाए हैं ऐसे ही सुकून भरे गीत, जो आपकी शाम को और भी हसीन बना देगा, हम आपसे वादा करते हैं। तो चलिए आराम से बैठ जाइए, अगला नगमा खासकर आपके नाम।

अब वो जमाना याद है आपको जब रेडियो के आसपास पूरा परिवार बैठकर गीत सुना करते थे। बिल्कुल जी, आज हम फिर से वही माहौल लेकर आए हैं। तो अपनी यादों की किताब खोलिए और हमारे साथ इस सफर में जुड़ जाइए। मैं हूँ गिनिशा, जो साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल, और ऑफ कोर्स इस पल को हम खास बनाएंगे इस गीत के साथ।

पुराने बॉलीवुड गीतों में एक अलग ही मिठास होती है। उनके बोल दिल को छू जाते हैं और उनकी धुन रूह तक पहुंच जाते हैं। आज की महफिल उन्हीं अमर गीतों के नाम, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं उन कलाकारों की आवाजें जिन्होंने बॉलीवुड संगीत को अमर बना दिया। उनके गीत आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने सालों पहले लगते थे। सुनहरे पल में ऐसे गिने चुने नगमे हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, हम तो कहेंगे आराम से गाड़ी चलाना जी, लेकिन अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगला नगमा सीधे आपके दिल तक पहुंचने वाले हैं।

0: तुम आई हो।
1: वैसे देखा जाए कुछ गीत ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ और भी गहरे हो जाते हैं। उन्हें सुनते ही पुरानी यादें, पुराने दोस्त, पुराने पुराने दिन याद आ जाते हैं। आज हम उन्हीं गीतों को आप तक लेकर आए हैं आपके ही मनपसंद शो के साथ। जी हाँ, आपका सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हम वापस आएंगे एक और खूबसूरत से शो के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर शुभ रात्रि, शब बखैर।

You're listening RM Free Radio.

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्ही ने बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्ही से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगे। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई,

देखो वो आ गया।

जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। आ

लाइफ, मिजरेबल थी उनकी लाइफ, ड्रंकड हस्बैंड, फाइटर वाइफ, बीवी बिगड़े, शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े, अरे झगड़े लफड़े।

चिकन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई, पीना छूट गया पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले हे, फिर दोनों ऐसे मिले प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार, जहां चारिया

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? हैं? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।